अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियाँ बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है, लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं, उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो एक महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है, सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से। लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है, वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवा रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 की लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है। शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में
मदद कर

आता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें। ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारी पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुने योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें।
ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिए। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्निक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो, लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठकर के सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो की उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: is not your home.
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
0: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: से हमारा रिश्ता खत्म और चलो एक दूसरे के सारे गिफ्ट वापस करते हैं।
1: तो ठीक है, शुरुआत रिचार्ज से करते हैं।
0: अरे जानू, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: क्या बात है, हैंगओवर तो भाई चढ़ जाता है जैसे ही सुबह होती है, और हैंगओवर तो कई सारी चीजों का होता है, इवन आपको कई चीजों का इंतजार भी होता है। सो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, इंतजार भी खत्म हो जाता है जब आप हैंगओवर में आ जाते हैं। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो चलिए भाई, बहुत सारी बातचीत तो अभी हम आज करते रहने वाले, क्योंकि आज है ट्यूसडे मॉर्निंग, और ट्यूसडे को तो काफ़ी कुछ होता है आपस में बतियाने को। सो हम बतियाते रहेंगे, यानी हम कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे, और साथ ही साथ आज सिटी अपडेट की तरफ भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, और बताते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, और आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहना चाह रहा है हमसे मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि हमने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो आज ये थॉट क्या लेकर आया है जो आज आप तक पहुंचना चाहता, और इसमें क्या कुछ है जो हम महसूस करने वाले हैं, हम एक दूसरे से कहने वाले हैं और समझने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

यूं तो थॉट बहुत छोटा है, लेकिन इसके मायने बहुत अलग है। दरअसल आज का थॉट कहता है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है लगातार कोशिश करते रहना। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है लगातार कोशिश करते रहना। बिल्कुल। जो आप काम कर रहे हैं उस काम को लगातार आप अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक मुकाम ज़रूर अचीव करते हैं। लेकिन गलती यहाँ पे क्या होती है? गलती होती ये है कि हम जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके को बार बार बार बार, हाँ कुछ चीज़ों में तो हो सकता है कि वो ही तरीका हो, लेकिन हर बार वो तरीका नहीं होता है। तरीके चेंज होते हैं और इन्हीं चेंज होते तरीकों में ही हम अपनी चीज़ों को देख पाते हैं, कर पाते हैं। यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि लगातार की गई कोशिश जो है वो आपको आपके मकाम तक पहुंचा ही देती है। लगातार कोशिश करते रहने से आपके नज़र की जो सफलता है वो आखिर आपको मिल ही जाती है। एंड आई होप कि ये थॉट ऑफ द डे आपको समझ भी ज़रूर आया होगा, क्योंकि ये थॉट ऑफ द डे हमने कहा था कि बहुत छोटा है लेकिन इसके मायने बड़े अलग हैं और बड़े ऊंचे हैं। यूं बस कह देना कि कोशिश करते रहना, और बल्कि आज की ही स्टेट में जिस काम को आप कोशिश करते करते थक रहे थे और इस थॉट के आने के बाद एक बार वापस से वो जोश आया है कि नहीं, लगातार कोशिश ही तो ज़िंदगी है। इसके लिए शायद ये थॉट काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आज का ये थॉट आपको रिमाइंडर देने आया है कि नहीं, थकना नहीं है दोस्त। जिस तरह से आप कोशिश कर रहे थे, कोशिश लगातार जारी रखनी है। हाँ, ये ज़रूर देखना है कि ये कोशिश जो है क्या इसमें कुछ अलग बदलाव करना है, क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है या नहीं। बदलाव की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश की ही ज़रूरत है। तो बस वही करते करते हमको हर वो चीज़ मिल जाने वाली है जो हम डिज़र्व करते हैं और जो हमारे लिए है और जिसका हम ख्वाब देखते हैं। चलिए, ये बड़ा ही खूबसूरत सा एक समा बन गया है ऐसी बात का कि भाई कहीं ना कहीं इस बात को हम समझ रहे हैं कि लगातार कोशिश ही हमको आगे लेकर जाने वाली है। इसी कड़ी में आइए, ये खूबसूरत सा नगमा आप तक पहुंचा देते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और आज है ट्यूसडे मॉर्निंग 23rd ऑफ जून।

0: भाई साहब, अगर ट्यूसडे में इतने प्यारी प्यारी सॉन्ग्स प्ले होंगे तो फिर आपके काम कैसे होंगे? वैसे डोंट वरी, काम तो होता ही रहेगा। कैसे? साथ में, यानी पैरेलल में हम काम भी अपने करते रहेंगे ताकि हमारा काम भी होता रहे और हम अपना मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गुंडा भी सुनते रहे। सो चलिए, फिलहाल वक्त है आपके भेजे गए मैसेजेस की तरफ चलने का। हम आप सभी का वेलकम करते हैं जो जुड़े हुए हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। साथ ही इसी एप्लीकेशन पर कुछ हमारे श्रोताओं के मैसेजेस भी आए हैं, क्योंकि यहां आप जो मैसेजेस भेजते हैं एप्लीकेशन की चैट पर, वो गोंडा एफएम के आरजेस तक सीधे पहुँचते हैं उनके लाइव शोज़ में। सो फिलहाल कुछ मैसेजेस आए हैं, क्या है आइए पढ़कर हम बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सबसे पहले तो प्रीति जी बहराइच से लिखती हैं, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। गीता श्रीवास्तव जी हैं, गुड मॉर्निंग आरजी सर, गुड मॉर्निंग टू यू। और आज की प्लेलिस्ट रियली ब्लॉकबस्टर, क्या बात है, यानी आपने पूरे गाने सुने और आपको ज़बरदस्त लगी आज की मॉर्निंग की प्लेलिस्ट, थैंक यू सो मच टू यू। वैसे क्रेडिट गोज़ टू मी, क्योंकि मैंने ही कल इसको लगाया था। इसके बाद आशु मिश्र जी हैं फ्रॉम लखनऊ, आपने लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। सविता दुबे जी हैं हरखापुर गोंडा से, सुप्रभात सुप्रभात, आपको भी आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। इम्तियाज़ अहमद मौजूद हैं। एंड आशु जी लिखती हैं, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, लक्ष्य बड़ा रखो क्योंकि सोच से ही शुरुआत होती है, मेहनत पर भरोसा रखो क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देती है, हार से मत डरिए क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है, खुद पर विश्वास रखो, दुनिया आपकी सफलता की गवाह बनेगी, उठो जागो और जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। वेरी नाइस थॉट्स सर जी, थैंक यू सो मच। वैसे ये थॉट्स जो मुझे बचपन से सुनने को मिले हैं, तो इनसे एक अलग ही प्रकार के अटैचमेंट्स हैं, एंड थैंक यू सो मच इन सभी को कोट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्रीति जी ने कहा है, अति प्रेरणादायक थॉट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लगातार परिश्रम करने से कभी ना कभी मंजिल मिल ही जाती है। सो वैसे भी लाइफ जो है वो कोशिश करते रहने का ही नाम है। अगर आप पूरी लाइफ को एक बार में उठा के देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि लाइफ जो है वो तो कोशिशों का ही नाम है, लेकिन लगातार कोशिश किसी एक चीज़ को लेकर के डेफिनेटली उसको अचीव करा ही देती है। एंड दूसरी बात, बस ये देखना होता है कि कोशिशों में जो तरीका है, क्या वो हर बार एक ही करना है या समय के साथ बदलते हुए वक्त के साथ कोई बदलाव की ज़रूरत उसमें आती है, तो क्या हम बदल के करते हैं और उसके बाद वो चीज़ें हमारी अपनी हो जाती हैं, है ना, बड़ी खूबसूरत बात है। एंड सच में ये कोशिश यार सुनने में ही इतना प्यारा नाम है। अब ज़रा सोचिए, जो लोग करते हैं और जो इनको फील करते हैं वो कितना अच्छा महसूस करते होंगे। फिलहाल आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आने के बाद बताते हैं आपको सिटी अपडेट, सो गोंडा में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ बता रहे हैं बस इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, सो इसलिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: नो इट्स टाइम टू गोंडा अपडेट। सो अब चलते हैं भाई सिटी अपडेट की तरफ और जानते हैं कि सिटी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

हाँ जी, तो आपको बता दें सबसे पहले कि फोर लेन को बनाने में जो पैसे लगने वाले हैं उसमें कुछ और आ गए हैं, 9 करोड़ 15 लाख। यानी अब फोर लेन जो बनाई जा रही है बहराइच रोड से सर्किट हाउस और मंडलीय कारागार को जोड़ने वाली फोर लेन सड़क, अब इसका निर्माण 32 करोड़ 54 लाख रुपए में होगा और पिछले फिनेंशियल ईयर में इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 23 करोड़ 29 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने टेंडर समेत बाकी ज़रूरी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी कर ली है और एक हफ्ते के अंदर निर्माण शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों के हिसाब से बहराइच रोड से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल होते हुए 3 किलोमीटर 200 मीटर फोरलेन के निर्माण से महादेवा क्रॉसिंग, कचहरी स्टेशन, अम्बेडकर चौराहा, कलेक्ट्रेट, मंडलीय कारागार, विकास भवन, मेडिकल कॉलेज और सर्किट हाउस तक पहुंचने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिलने की बात कही गई है। सो रास्ते में यातायात का दबाव कम होगा और आवागमन सुगम बनेगा। शासन लेवल से इस परियोजना के लिए पुनरीक्षित बजट जो है वो जारी किया गया है और पिछले वित्तीय वर्ष में सड़क के चौड़ीकरण के लिए 23 करोड़ 29 लाख रुपये मिले थे, जिसे अब बढ़ाकर 32 करोड़ 54 लाख रुपये कर दिया गया है। सो पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए बिजली के खंभों को शिफ्ट किया जाएगा, साथ ही पानी की पाइपलाइन को हटाने के साथ ही पेड़ों की कटान होगी। इसके अलावा अतिक्रमण भी हटाया जाना है और इन सब के अलावा जो भी बाकी के काम हैं उसको शासन स्तर से पुनरीक्षित बजट में 9 करोड़ 15 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कार्यदायी संस्था के साथ में अग्रीमेंट भी कर लिया गया है, विभाग ने एक सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य भी तय किया है। सो ये रही फोर लेन सड़क जो बन रही है बहराइच रोड से सर्किट हाउस और मंडलीय कारागार को जोड़ने वाली रोड, इसके फोर लेन बनने के संबंध में। इसके अलावा आपको बता दें कि विद्युत उपकेंद्र की अब बढ़ने वाली है क्षमता, जिससे उम्मीद है कि विद्युत आपूर्ति जो है इसमें सुधार होगा। सो जन सहयोग कार्यालय में शनिवार को आयोजित बैठक में तरबगंज विधायक ने बताया कि क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र ढोंढेपर और शुक्लगंज की क्षमता 5 MVA से बढ़ा करके 10 MVA करने की शासन से स्वीकृति मिलने के साथ ही टेंडर हो गया है। और मनकापुर विधायक ने बताया है कि कार्यदायी संस्था क्षमता वृद्धि के काम को जल्द ही पूरा करें, जिससे कि लो वोल्टेज और विद्युत कटौती की जो समस्या है उससे जनता को राहत मिले। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली जो अपडेट हो रही है वो आ रही है ऑफ कोर्स बिजली से ही जुड़ी हुई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लो वोल्टेज की प्रॉब्लम सुनने को मिल रही है लगातार। और इसी तरह से ये जो ज़बरदस्त गर्मी है इसी में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की प्रॉब्लम अच्छे खासे लोग जो हैं वो झेल रहे हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें अगली अपडेट। सो कहीं ना कहीं इन अपडेट्स के बीच में अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेले का जो आयोजन हुआ है उसको लेकर के। सो जन आरोग्य मेले में लापरवाही का मामला भी सामने आया और कल संडे को परसों PHC भौरीगंज में दोपहर 1:37 पे जो है वो कर्मचारी नदारद मिले और उनकी ड्यूटी चूँकि जन आरोग्य मेले में लगाई गई थी और वक्त से पहले हॉस्पिटल छोड़कर चली गईं। सो उनकी जगह फार्मासिस्ट OPD में मरीजों को देखते हुए मिले और इस तरह से ये कमी पाई गई। एंड इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो निगरानी के बीच में ही 3738 स्टूडेंट्स ने जो है वो नीट की परीक्षा दी थी, जो कि अभी दे चुके हैं। और इसी तरह से ऑफ कोर्स नीट की जो री एग्ज़ाम हुआ था उसकी परीक्षा संपन्न हुई। 9 केंद्रों पर 4013 कैंडिडेट्स को देनी थी परीक्षा और बायोमेट्रिक
सत्यापन के बाद केंद्र में मिल गया था उनको प्रवेश। इसके अलावा आपको बता दें कि किसान के जो बेटे हैं परमानंद, ये बनेंगे SDM। सो मेहनत से अपने और लगातार कोशिश के दम पर इन्होंने ये सफलता हासिल करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सो एटिया थोक के फरेंदा कानूनगो के रहने वाले ऑफकोर्स रामचरित्र मिश्र के बेटे परमानंद मिश्र का चयन जो है बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के एग्ज़ाम में 61वीं रैंक के साथ उप जिलाधिकारी SDM के पद पर हुआ है। सो परमानंद की इस अचीवमेंट से परिवार के साथ साथ पूरे एरिया में खुशी का माहौल है। इनके फादर रामचरित्र मिश्र ने बताया कि परमानंद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा चिन्मय ग्रामोदय विद्या मंदिर से इंटर कॉलेज से जयप्रभा ग्राम से प्राप्त की थी। इसके बाद MLKPG कॉलेज बलरामपुर से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और इस तरह से फ़िलहाल ये जो हैं अभी सेवा देने के लिए ऑफ कोर्स रेडी हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि गोमती नगर गोरखपुर गोंडा रूट की 15 ट्रेनें जो है वो जुलाई में निरस्त होने वाली हैं, जिनको हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं, क्योंकि लखनऊ के यात्री गोंडा से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, गोरखपुर के रूट पर हम काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। सो 5 किलोमीटर लंबी की जो तीसरी रेल लाइन है इसको शुरू करने के लिए प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना है। गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को चालू करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे अगले महीने प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम करेगा। इसके चलते 7 से 11 जुलाई के बीच गोंडा रूट की कई ट्रेनें जो हैं निरस्त रहेंगी, जबकि कई ट्रेन का संचालन अयोध्या के रास्ते किया जाएगा। पूर्व उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 6, 7 और 10 जुलाई को 1509 छपरा मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं जाएगी। इसके अलावा 22921 बांद्रा बलरामपुर एक्सप्रेस 5 जुलाई 2292 बांद्रा बलरामपुर एक्सप्रेस 7 जुलाई और 1581 गोरखपुर गोमती नगर एक्सप्रेस 6 से 10 जुलाई 1582 गोमती नगर गोरखपुर एक्सप्रेस 7 से 11 जुलाई 1533 छपरा आनंद विहार एक्सप्रेस 6 जुलाई 1534 आनंद विहार छपरा एक्सप्रेस 8 को और 1531 गोरखपुर लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस और 1532 लखनऊ जंक्शन गोरखपुर एक्सप्रेस 8 और 9 जुलाई को 1570 ऐशबाग गोरखपुर एक्सप्रेस यानी इंटरसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं 7 से 10 जुलाई तक और 1569 गोरखपुर ऐशबाग एक्सप्रेस 8 से 11 जुलाई तक और 22199 ग्वालियर बलरामपुर सुशासन एक्सप्रेस 8 जुलाई को 22200 बलरामपुर ग्वालियर एक्सप्रेस 1529 गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस 9 जुलाई और 1530 पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस 11 जुलाई को जो है निरस्त रहेंगी। अयोध्या के रास्ते जो है वो लॉन्ग रूट की ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम गोरखपुर एक्सप्रेस, ओखा एक्सप्रेस, यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस, आनंद विहार छपरा एक्सप्रेस, साबरमती थावे एक्सप्रेस, यशवंतपुर गोरखपुर सुपरफास्ट, मदार जंक्शन दरभंगा, अमृत भारत एनारकुलम बरौनी एक्सप्रेस, गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस, गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस, गोरखपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस, बिहार जनसंपर्क क्रांति एक्सप्रेस, गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस, पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस, आनंद विहार गोरखपुर एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस, जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस, आनंद विहार गोरखपुर एक्सप्रेस, गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस, बरौनी जम्मू तवी एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस, गोरखपुर LTT कुशीनगर एक्सप्रेस, LTT गोरखपुर एक्सप्रेस और शहीद एक्सप्रेस अलग अलग तारीखों में अयोध्या के रास्ते फ़िलहाल के लिए चलाई जाएंगी। सो 15 इस रूट की जो ट्रेनें हैं वो जुलाई में निरस्त रहेंगी। इसके अलावा जिन ट्रेनों का भी हमने नाम बताया इनको अयोध्या के रास्ते चलाया जाएगा। आई होप कि आपको ये जानकारी मिल गई है और ऑफ कोर्स ये जानकारी आपके काफ़ी काम की। अगर इस बीच आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं तो ये जो डाइवर्ट रूट है इसको ध्यान में रखते हुए इसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपना आगे का प्लान बनाना है। सो चलिए इन सारी बातों के बीच में अब आपको ले चलते हैं
अगले सॉन्ग की तरफ। और जब वापस से आएंगे तो आने के बाद बहुत सारी अपडेट्स हैं, लेकिन एक अपडेट जो आधार को लेकर के है वो आपके लिए जाननी ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई से ही ये नया नियम लागू होने वाला है। सो क्या है आधार को लेकर के अपडेट, वो बने रहिए, हम आपको बताते हैं। फिलहाल सुनिए इस खूबसूरत से गाने को, एंजॉय करिए सुबह हमारे साथ, यानी गुड मॉर्निंग गुना में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
8: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
9: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
8: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

सो फिलहाल कल की जो अपडेट दिया है आश मिश्र जी ने बिल्कुल सही कहा है, और कल जो अग्निकांड हुआ है वो सच में बहुत अफसोसजनक है। जिस तरह से 15 स्टूडेंट्स की जान गई है कल अलीगंज लखनऊ में एक गेमिंग जोन कोचिंग में, सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है फायर सेफ्टी को लेकर के, जिम्मेदारों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ये खबर आप तक ज़रूर पहुंच गई होगी क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी बात है। सो फिलहाल कुछ अपडेट्स हम दें, लेकिन उससे पहले इसी अग्निकांड में जो बच्चे इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, जो लोग नहीं हैं अब इस दुनिया में, उन सभी को रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दरअसल ये जो अग्निकांड हुआ है, आपको हम बता दें कि लखनऊ के अलीगंज में एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें आग लग गई थी, और इसी बिल्डिंग में एक एनिमेशन सेंटर था जहां कई सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे, और नीचे ही उसके जस्ट एक पेट शॉप भी है, और इस कॉम्प्लेक्स पे बेसमेंट भी बनाया गया था, लेकिन एंट्री और एग्जिट सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था। सो इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन और इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल लगा हुआ था, इससे रास्ता और भी ज़्यादा छोटा हो गया था। सो फिलहाल आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि बिल्डिंग को रहने के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसे गैर कानूनी तरीके से, कॉमर्शियल तरीके से इस्तेमाल किया गया उसके काम में। जब आग लगी तो बचने के लिए बिल्डिंग्स की पिछली साइड में चले गए, लेकिन वहीं पर फंस गए क्योंकि पीछे से कोई रास्ता था ही नहीं। सो आपको हम बता दें कि समर हॉलीडे एनिमेशन की ट्रेनिंग लेने आए थे बच्चे यहाँ पर। आग जो है सेकंड फ्लोर पर फैलती चली गई, जहाँ बच्चे समर हॉलीडे में एनिमेशन ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। बिना किसी इमरजेंसी गेट के इस इमारत में आग लगी तो दूसरी मंजिल पर 15 लोगों की जान चली गई। सो फिलहाल 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR की बात कही गई है। अलीगंज JSP ACP शशि प्रकाश ने बताया कि PTI को आरोपी की जांच फिलहाल चल रही है और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया है कि अलीगंज पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और उत्तर प्रदेश के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, एंड 4 आरोपियों के नाम भी बताए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि कार्रवाई तो बाद में हो ही जाती है, लेकिन जिन बच्चों को ये हुआ, जिनके साथ, जिन फैमिलीज़ में हुआ, जो बच्चे जलकर ख़त्म हो गए, जब जली हुई बिल्डिंग आप देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। सो जले हुए डेड बॉडीज़ देखना, इंसानों की, जानवरों की, सभी के घर में बच्चे हैं, हम सब टीन एज से निकले हुए हैं, शायद ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमेशा कार्रवाई बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं, क्यों नहीं एक तरह से एक लेवल पे चीज़ों की चेकिंग की जाती, क्यों इतना ढीला रवैया हो जाता है, क्यों चीज़ें संचालित होने लग जाती हैं उसके बाद फिर एक्शंस लिए जाते हैं। क्योंकि ये 15 बच्चे, शायद आपने तस्वीरें देखी होंगी, उसमें एक जली हुई बिल्ली जब निकली उसने झकझोर कर रख दिया, जिस तरह से उसका मुँह खुला हुआ था और जो हालत देखा वो शायद अंदर तक आपकी सोल को भी ज़ख्म किया होगा। उसी में उन स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज़ जो अभी 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के ही महज थे, एकदम टीनेजर्स, जो समर हॉलिडे को यूटिलाइज़ करने जून में एनिमेशन सीखने गए थे, फिर ऐसी कॉमर्शियल बिल्डिंग जिसके मानक पूरे नहीं थे और उसको कॉमर्शियली यूज़ किया जा रहा था, ये बड़ी अजीब बात है।

0: कि जहां पर कोई परमिशन नहीं, राजधानी में ही पॉश इलाके में, ऐसी जगह जहां पे सभी विभागों की नज़र रहती है, जो बिल्कुल सिटी का एरिया अलीगंज, वहां पे ऐसा हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम समझता है कि परिवार, जिनके बच्चे हैं, जिनके भाई बहन हैं, उनके हालात सोच भी नहीं सकते शायद हम। एक तो दुनिया से चले जाना और दूसरा है इस तरह से जाना, इस तरह से, ये बड़ी अजीब बात रही है। सो हमारे श्रोताओं ने फिलहाल आकर के आपने भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी शुरू कर दी है, जी हाँ। और ये लगातार कल दोपहर के बाद से जब से घटना घटित हुई है, उसके बाद से लगातार हम देखते जा रहे हैं इसकी अपडेट्स, और जितना देख रहे हैं उतना ज़्यादा अफसोस, उतना ज़्यादा परेशान, और कई सारे सवाल उठते चले जा रहे हैं। प्रीति जी ने बताया है, बोला है कि बहुत ही दुखद समाचार, दिवंगत बच्चों को विनम्र श्रद्धांजलि। और इत्स कुमार ने बताया कि एक बार ये भी फंस गए थे और गेट साइड निकलने का कोई जब उपाय नहीं सूझ रहा था, तो पास में एक मोटे लोहे की छड़ पड़ी थी, दो मिनट में दीवार तोड़कर निकल गए थे। ओके, भरपूर श्रद्धांजलि अर्पित की है आशु मिश्र जी ने लखनऊ से। सो वैसे ये वाकई में बहुत ज़्यादा दुखद समाचार है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों से सबक लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब शायद इसमें और लेट नहीं किया जा सकता। लगातार घटनाएं हो जाने के बाद एक्शंस, लगातार हो जाने के बाद सस्पेंशंस, ट्रांसफर्स और न जाने क्या क्या, लेकिन जिसकी जान जानी होती चली जाती है। जो होना होता है वो लापरवाही पहले ही हो चुकी होती है। आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आज की ही डेट में चल रही हैं, कल कदार जब वहाँ हादसा हो जाएगा तो शायद वहाँ एक्शंस लिए जाएंगे, बट इसी सिस्टम को शायद चेंज करना होगा। हमको एक्शंस पहले लेने होंगे, हमको पहले ही इंश्योर करना होगा, क्योंकि सभी की अपनी जिम्मेदारी है। पूरे एक सिस्टम जो चल रहा है, सभी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, सभी व्यवस्थाओं को रखा गया है, क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, और ये जिम्मेदारी नहीं जब तक निभाई जाएगी तब तक ऐसे ही हादसे बहुत जगह देखे गए हैं बहुत बार, और इस सीज़न में तो हमने देखा बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, कई जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अब इससे हमको सचेत होने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल अब हम चलते हैं कुछ ब्रेक की तरफ, और वापस से आएंगे तो आने के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखने वाले हैं। आप बने रहिए अपने गोंडा FM 89.6 FM पर, क्योंकि ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
1: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

सो आइए आपको एक ऐसे पिता से मिलवाते हैं जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इवन 400 बच्चों के पिता हैं। आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है? अजय, जिस तरह आप सोच रहे हैं उस तरह नहीं, जिस तरह हम बताने वाले हैं उस तरह बिल्कुल पॉसिबल है। सो हम बता रहे हैं कानपुर के उद्देश्य सचान के बारे में, जिनका है खुशियों का स्कूल, जहां जो वंचित बच्चे हैं इनको फ्री में पढ़ाया जाता है, एजुकेट किया जाता है। सो फिलहाल अगर हम बताएं तो 27 की उम्र में 400 से ज़्यादा बच्चों के फादर हैं ये, और फीस ना दे पाने की वजह से जिसे कभी स्कूल से बाहर कर दिया गया था, सालों बाद आज वो झुग्गी झोपड़ी के सैकड़ों बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा है उद्देश्य सचान। जी हाँ, ये कहीं और नहीं बल्कि हम कानपुर की बात कर रहे हैं। चूँकि बचपन में फादर जो है दिन रात मेहनत मजदूरी करते उनको देखा इन्होंने, लेकिन फिर भी इनकी स्कूल फीस जमा नहीं हो पाती थी। रोज़ टीचर की डांट पड़ती थी, कभी स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, किताब कॉपियों और नई यूनिफॉर्म के लिए भी तरसना पड़ता था। लेकिन इन्होंने हर मुश्किल के बावजूद इतनी पढ़ाई अपनी पूरी की और बड़े होकर नौकरी करने लगे। लेकिन दिल में अभी भी बचपन की वो कड़वी यादें ताज़ा थी। बस यही वो वजह बनी और इन्होंने अपने जैसे जो वंचित बच्चे हैं उनको लेकर के शिक्षा देने का फैसला कर लिया। तो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं जो अक्सर बाल मजदूरी या नशे में ढकेल दिए जाते बच्चे जो हैं, 2019 में इन्होंने कुछ ऐसा किया कि मुफ्त में कोचिंग देने लगे। जी हाँ, और 3 साल बाद जो है एक बाकायदा कमरा लिया जहाँ पर बच्चों को शिक्षित करने का काम इनका शुरू हो गया और ये कोचिंग से बच्चे पढ़ने लगे। और ये जो 3 साल बाद लिया कमरा था, ये दरअसल किराए का किया था और इसका नाम रखा गुरुकुलम। सो शुरुआत 5 से ही हुई थी और आज इनके पास 400 से ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कहाँ 5 बच्चे से शुरुआत हुई और आज 400 से ज़्यादा है, जिन्हें आज भी बिना कोई फीस के ये पढ़ाते हैं। सो गुरुकुलम में सिलेबस के साथ साथ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे बिजनेस स्किल्स, लाइफ हैक्स, साइकोलॉजी, थिएटर और मॉरल स्टडीज़। इस फ्री स्कूल में बच्चों के लिए जिम, म्यूज़िक क्लास और स्पोर्ट्स क्लब भी मौजूद हैं ताकि वो ज़िंदगी में किसी से भी पीछे ना रहें। सो उद्देश्य केवल एक शिक्षक की तरह नहीं बल्कि सभी बच्चों को पिता की तरह ख्याल भी रखते हैं, उनकी हर ज़रूरत को पूरा भी करते हैं, जी जान लगा देते हैं। उनका सपना है शिक्षा पैसे से ना तौली जाए, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो बच्चे भी स्कूल जा सके, इसलिए वो गुरुकुलम जैसी संस्था को खोले हैं, हर शहर और हर गांव तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और शायद अगर कोई इसी सोच को उनके समझता है या देखता है तो उनका साथ भी देता है, यानी उनसे जुड़ करके उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करता है। कितनी अलग बात है ना, जिस जगह पूरा सिस्टम का जो स्कूल है, जो हम गवर्नमेंट स्कूल्स कहते हैं, वहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती और एक आदमी अपनी एक जनरल सी जॉब में 400 से ज़्यादा बच्चों को एक किराए के कमरों में लेकर के पढ़ाता है, जिसमें 400 से ज़्यादा बच्चे होते हैं 3 कमरों में, और उसके अलावा उसमें स्पोर्ट्स क्लब भी होता है, उसमें म्यूज़िक क्लास भी चलाई जाती है, उसमें बिजनेस स्किल भी सिखाई जाती है, लाइफ के हैक्स भी बताए जाते हैं, साइकोलॉजी भी, यानी हर वो मॉडर्न चीज़ जो आपको बढ़ने के लिए, आपके करियर के लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ उद्देश्य सचान अपने 400 से ज़्यादा बच्चों को दे रहे हैं और एक पिता की तरह ख्याल भी रखते हैं। सो मुझे तो यही कहना होगा कि भाई ऐसे लोग ही हमारे रियल लाइफ के हीरो हैं। सो यस, ऐसे रियल हीरोज को रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM सलाम करता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हाँ, सच में ऐसे ही लोग हैं जो समाज के
नियमों के परे जा करके, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग बैठे रहते हैं, बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बैठना गवारा नहीं समझते और उठ खड़े होते हैं और चल देते हैं और अपनी एक नई राह बनाते हैं जो कि हज़ारों और लाखों के लिए एक मिसाल कायम करती है। शायद यही वो वजह है कि ऐसे लोगों को हम रियल हीरो की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई ये लोग ही रियल हीरो हैं। वैसे आपको उद्देश्य सचान के बारे में जान करके कैसा लगा, आप भी हमको बता सकते हैं। बताने के लिए आप अगर रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं तो चैट बॉक्स पर ऑप्शन मिलता है जिसमें आकर के आप बता सकते हैं कि उद्देश्य सचान जो कर रहा है 400 से ज़्यादा बच्चों को फ्री एजुकेट कर रहे हैं, ना सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं बल्कि हर तरह की वो शिक्षा दे रहे हैं जो उन्हें मॉडर्न बनाने के लिए ज़रूरी है, और साथ ही साथ वो बिल्कुल मुफ्त कर रहे हैं अपनी सैलरी से। लेकिन वो चाहते हैं कि हर शहर में ऐसा कोई बच्चा ना हो जो वंचित रह जाए सिर्फ पढ़ाई को लेकर, पैसे को लेकर, जो उनके साथ उनके फादर के साथ हुआ। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि और भी लोग उठे, जुड़े, एक प्लेटफॉर्म बना है उसमें हेल्प करें और इस तरह का गुरुकुलम हर शहर में हो।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: फिलहाल पर तो खोल दिया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि वैभव की पारी से भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा करके जीत लिया है त्रिकोणीय श्रृंखला। जी हाँ, सो चल चुके हैं हम स्पोर्ट्स की तरफ और बताते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ है जो बन गया है रिकॉर्ड आपके अपने 89.6 FM पर।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सो युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की 29 गेंद में 94 रन की विस्फोटक पारी से भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय श्रृंखला का खिताब जीत लिया है। इस दौरान वैभव ने सिर्फ 11 गेंद में 50 रन बनाए, जो लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक है। भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करके 50 ओवर में 9 विकेट पर 377 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कप्तान तिलक वर्मा ने 67 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 47 ओवर एक गेंद पर 311 रन पर ढेर हो गई। वनुजा सहान ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। यश ठाकुर और विप्रज निगम ने 3-3 विकेट लिए। सो आपको बता दें कि वैभव ने बल्ले से ले लिया बदला। भाई पिछले मैच में हम सभी को बताया कि भारत ए की टीम श्रीलंका ए से सुपर ओवर में हार गई थी, जिसमें श्रीलंकाई खिलाड़ियों के उकसावे पर वैभव उनसे भिड़ गए थे। फाइनल में उनसे अपना गुस्सा श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर निकाला। इन्होंने 94 रन की पारी के दौरान 29 गेंदों का सामना कर 10 चौके और 8 छक्के लगाए। जी हाँ, सो भारत ए में वैभव सूर्यवंशी जो कि 94 रन, तिलक वर्मा 97, अनुकूल रॉय 39, प्रियांश आर्य 39, वनुजा सहान और रविंदु फर्नांडो श्रीलंका ए में हैं। वनुजा सहान, सदीरा, समर विक्रमा, विजयकांत, यश ठाकुर, विप्रज निगम और अनुकूल रॉय। सो इस तरह से ये टीम है श्रीलंका ए और इंडिया ए के बारे में, जिसको हमने आपको बता दिया है, और किस तरह से वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी है ये भी हमने आपको बताया। इसके अलावा एक और है बात जो कि है बॉलीवुड से। सुबह 26 अगस्त को रिलीज़ होगी यश की टॉक्सिक। जी हाँ, साउथ स्टार यश और किराया कियारा आडवाणी की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक 26 अगस्त 2026 को दुनिया भर में रिलीज़ होगी। सो ये फिल्म बीते महीनों में पोस्टपोन हो रही थी, अब मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। सो लव स्टोरी है टॉक्सिक। जी हाँ, आपको हम बता दें कि एक लव स्टोरी होने के साथ साथ ही एक पिता पुत्र के रिश्ते को भी गहराई से दिखाती है। सो केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी ये फिल्म टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स में यश के अलावा नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मणी वसंत और तारा सुतारिया भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म पहले 4 जून 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। अब ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को रिलीज़ हो रही है, यानी जून चल रहा है, फिर जुलाई, देन अगस्त। सो 26 अगस्त को ये टॉक्सिक मूवी जो है ये रिलीज़ होने वाली है। आई होप कि आपको इसकी जानकारी मिल गई है, और जो लोग भाई इंतज़ार कर रहे हैं इस मूवी का, यानी मोस्ट अवेटेड मूवी का, सो जाहिर सी बात है वो 26 अगस्त के लिए रेडी रहे, क्योंकि ये मूवी 26 अगस्त को रिलीज़ होगी, और रिलीज़ होने के साथ ही साथ आपकी एक्सपेक्टेशन को कितना मीट करती है या नहीं कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल स्टार कास्ट को जो देखा जा रहा है, जिस तरह से ऐसा लगता है कि भाई काफ़ी अलग तो होने वाली है, ये बात तो काफ़ी फैक्ट सी लग रही है, लेकिन अब कितना अलग होगी और क्या कारनामा करके दिखाएगी ये तो खैर आने के बाद ही पता लग पाने वाला है। लेकिन फ़िलहाल इस मूवी का कई लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहा है। सो ये मूवी अब 26 अगस्त 2026 को पूरे दुनिया भर के अलग अलग थिएटर्स में, अलग अलग जगहों पे रिलीज़ किए जाने की बात सामने आ रही है। आई होप कि अगर आपको भी पसंद है मूवीज़ और स्पेशली इस मूवी का आप वेट कर रहे थे, सो अगस्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है कॉज ऑफ टॉक्सिक। सो टॉक्सिक कितनी टॉक्सिक होने वाली है और कितनी ज़्यादा पसंद आने वाली है ये तो खैर रिलीज़ होने के बाद ही हम डिसाइड करने वाले हैं। फ़िलहाल इस गाने को सुनते हैं और वापस से आते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।

0: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर।
1: मामा मामा, मैं टीवी देख कर होमवर्क कर लूं?
2: हाँ बेटा, जा कर ले, लेकिन बस टीवी चालू मत करना।
3: ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
4: सो यस, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और भाई, जैसा कि आज इतनी सारी बातचीत के बीच में हम बहुत कुछ बता चुके हैं, और साथ ही साथ चूंकि भाई इट्स कुमार ने पूछा भी है कि आपने कुछ भारत ए के खिलाड़ियों को श्रीलंका ए में डाल दिया, इसलिए डाल दिया ताकि बैलेंस बना रहे यार। जिस तरह से श्रीलंका सकते में आ गई है वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको कोप अप करने के लिए कुछ सहारा चाहिए। बाय द वे, बिल्कुल जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई फ्यूचर जो है फिलहाल टीम इंडिया का बहुत ज़्यादा वेरी वेरी ब्राइट हो रहा है, और साथ ही ये ब्राइट फ्यूचर इसके कहीं ना कहीं और भी करियर को ऊँची उड़ान देने वाला है, और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं जब मिल जाती हैं तो इसको ख़ास बना देती हैं, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़ास है। सो फिलहाल आपको हम बता दें कि भाई आज बातचीत के सिलसिले में हमने कई सारी बातें आप तक पहुंचाई, एंड आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ भी आई होंगी। एंड हमने जो कहा था आधार से जुड़ी अपडेट्स, तो आपको हम बता दें कि फिलहाल जुलाई से आप अपडेट करा सकते हैं अपना मेल उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनको बिजनेस में काम होता है अपना मेल अपडेट कराने का। अभी तक उसके 75 रुपीज़ पड़ते थे, लेकिन फ़िलहाल जुलाई से अगर आप कराएंगे तो ये बिल्कुल मुफ्त होने वाला है। यानी आप जा कर के एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से अपना मेल ऐड कर सकते हैं अपने आधार कार्ड के साथ में, और ये आपके करियर में या आपके बिजनेस में या आपकी डीलिंग के दौरान अगर कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो पूरी तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो बताया ना, नौकरी पेशा हैं या स्टूडेंट्स हैं या बिजनेसमैन हैं, जिनको मेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। सो मेल आईडी अभी भी होता था आधार से लिंक्ड, लेकिन उसके 75 रुपीज़ पड़ते थे। अभी क्या है कि मेल आप यूं ही ऐड कर सकते हैं बिना किसी पैसे के, यानी अब ये कॉस्ट जो 75 रुपीज़ की होती थी फ़िलहाल अब वो नहीं होने वाली है, और यही अपडेट हमें आप तक पहुंचानी थी ताकि आप भी अगर कोई भी अपना मेल आईडी उसमें अटैच करना चाहते हैं, लिंक्ड करना चाहते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आपको उस मेल की आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है, तो उसका इस्तेमाल आप भरपूर कर सकें। ये इसलिए ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। एंड फिलहाल कुछ, चूँकि फादर्स डे पे बॉलीवुड की कुछ ऐसी बातें रह गई थी जो आप तक पहुंचानी थी कि भाई किस तरह से सबने अपने फादर्स को याद किया फादर्स डे के मौके पर। सो फादर्स डे के खास मौके पर काजोल, अनन्या पांडे, संजय दत्त, हुमा कुरैशी समेत कई बॉलीवुड सितारों ने अपने फादर के लिए अपना प्यार जाहिर किया। सो काजोल ने पिता और माँ की, तनुजा की, एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि पुरानी तस्वीरें देखते हुए एहसास होता है कि मेरी हंसी में आप आज भी कितने ज़िंदा हैं, आपका चूँकि हर दिन आपकी याद आती है पापा, हैप्पी फादर्स डे। हुमा कुरैशी लिखती हैं कि पिता के साथ कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और उन्होंने इसे भावुक कर देने वाले शब्दों के साथ पोस्ट किया। अभिनेत्री ने लिखा, बचपन में हमें लगता था कि हमारे पापा के पास हर सवाल का जवाब है, बड़े हुए तो एहसास हुआ कि वो भी चीज़ों को समझने और संभालने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में त्याग कर रहे थे जिनके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की, हर दिन डटे रहे जब भी ज़िंदगी आसान नहीं थी। ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर पेज स्टोरी सेक्शन में पिता धर्मेंद्र को याद करते हुए लिखा, लव यू पापा। बता दें कि पिछले साल ही दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हुआ था। इसके अलावा राजपाल यादव ने भी अपनी बेटियों के साथ प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उन्होंने लिखा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार निभाए हैं और आगे भी निभाता रहूँगा, लेकिन पापा का किरदार सबसे प्यारा, सबसे ख़ास और हमेशा मेरे दिल के करीब रहने वाला है। सो इस तरह से कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स ने फादर्स डे पे अपने अपने फादर्स को याद किया। फिलहाल हमने भी बनाया था अपने फादर्स डे को खास अपने अपने अंदाज में। अब फिलहाल चलने का मौका दीजिए क्योंकि इजाजत दीजिए हो गई और आपसे वापस से मिलेंगे कल के बाद।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: गांव की गूंज, गांव की गूंज, गांव की गूंज।
4: नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। जैसा कि आप सभी पहले से ही गांव की गूंज के कई एपिसोड सुन रहे हैं, तो अब मैं गांव की गूंज के नए एपिसोड लेके फिर से आ रही हूं, जिसमें हमारी मुख्य गायिका श्रीमती किरण पांडे की मधुर आवाज में मधुर मधुर गीतों की माला होगी, और जिनका साथ दे रही हैं उनकी सह कलाकार श्वेता सिंह जी।
5: हेलो, मैं किरण

0: अरे किरण दीदी, ये मन में क्या गुनगुना रही हैं? चलिए घाट पे बैठकर इस गीत को गाते हैं। अरे लो, शीला काकी भी यहीं पे है। आओ आओ शीला काकी, सभी मिलकर यहाँ सरयू मैया की जय जयकार करते हैं। तो बोलो सरयू मैया की
1: जय।

0: वाह वाह किरण दी, अति सुंदर, अति मनमोहक और मन को मोह लेने वाला भजन गाया आपने, क्यों समता दी?
1: हाँ हाँ श्वेता, बिल्कुल मन को तो मोह ही लिया। चलो हम लोग यहाँ तक तो आ ही गए हैं, तो अब अयोध्या दर्शन करते हुए अपने गांव की ओर चलते हैं, क्यों किरण दी?
2: अच्छा चलो चलो चलते हैं। ये देखो ये चाय की दुकान। अरे हम लोग चाय की दुकान पर पहुंच गए। और श्वेता तुम्हें कुछ याद आया ये चाय की दुकान देखकर?
0: नहीं किरण दी, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। समता दी क्या आपको कुछ याद आ रहा है इस चाय की दुकान को देखकर?
1: नहीं श्वेता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है, क्योंकि इतने दिनों के बाद तो हम सब यहाँ पर मिले हैं, तो मुझे तो ये चाय की दुकान बिल्कुल भी नहीं याद है।
2: अच्छा सुनो, मैं सबको याद दिलाती हूँ। याद करो वो सोंधी सोंधी खुशबू अपने गांव की। बहुत दिन बाद हम लोग वापस आए हैं ना अपने गांव की तरफ, तो इसलिए नहीं याद आ रहा है। याद करो वो कुल्हड़ की चाय जो हम लोग बैठ के पीते थे, है ना? तो अरे भैया जरा चाय दे देना तीन, और वो कुल्हड़ वाली चाय देना। अरे छोटू कितना बड़ा हो गया छोटू। अरे छोटू सुनना, जरा सुनना, तीन चाय देना हमें।
3: अरे किरण दीदी आप कितना दिन बाद आवागा है, कहाँ रहे हो आप सब, का हाल चाल है? दीदी चायवा तो हम पिलाई दिए, लेकिन कुछ गौनेवा सुनावे पड़ी।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं छोटू, हम तुम्हारी पसंद का कोई गीत सुनाएंगे अभी। चलो चलो सब लोग मिलकर ये गीत छोटू के लिए सुना दें।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं,
1: क्यों नहीं, क्यों नहीं, चलो।

0: वाह दीदी, बहुत नीक गायो आप सब है, हम इतनी बधैया सुनाई दीन जाए।
1: ठीक है छोटू, ठीक है, तुम कहते हो तो एक बधाई गीत सुना ही देते हैं। श्वेता, वो बधाई गीत जो तुम अक्सर गाया करती थी राम जी का, वही सुना दो।

0: वाह भाई वाह, ये तो बधाई गीत भी हम लोगों ने गा लिया।
1: अरे किरण दी, हम सब ने बधाई गीत तो पहले ही गा लिया, मतलब प्रभु श्री राम के जन्म के पहले ही बधाई तो दे दी, और सोहर कहाँ है हमारा?
0: अरे भाई, सोहर मुझे याद है, और सबको पता है कि सोहर क्यों गाया जाता है।
1: नहीं किरण दी, सोहर के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है, थोड़ा आप जरा बताएं।
0: अरे भाई, सोहर मुझे याद है, क्या सबको पता है सोहर कब गाया जाता है? तो सुनो, सोहर तब गाया जाता है जब बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेते समय सोहर गाया जाता है, विवाह में भी गाया जाता है, लेकिन सोहर जो मेन होता है वो बच्चा जन्म लेता है तब गाया जाता है। तो एक सोहर मुझे याद है समता, मैं थोड़ा गुनगुनाती हूँ, ठीक है?

0: हाँ हाँ किरण दी, यही सोहर तो हम सोच रहे थे कि आप हमें सुना दें, तो चलो हम सब मिल करके अब यही सोहर सभी गाएंगे, क्यों किरण दी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।

0: वाह किरण दी, मजा आ गया। अवधी हमारे अवध प्रांत की मुख्य भाषा है, और कुछ भी हो मुझे तो सुन के बड़ा ही मजा आ गया, क्यों श्वेता?
1: हाँ हाँ समता दी, क्यों नहीं, आनंद तो आना ही था। एक तो हम आज सभी सहेलियां मिले हैं अवध में, और उसी में हमारी प्यारी किरण दी की आवाज, आहा क्या बात है। और यहाँ की मिट्टी की खुशबू और किरण दी की आवाज, क्या ही बात है।
0: यह हम सभी जानते हैं कि यह हमारी अयोध्या नगरी एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी है, और यह सरयू नदी के तट पर स्थित है, और अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है, एवं प्रभु श्री राम की जन्म स्थली होने के कारण अयोध्या को मोक्षदायिनी एवं हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल भी कहा जाता है।
1: वाह, वो कॉलेज के दिन फिर से लौट कर आ गए हैं, वही मस्ती बिना किसी टेंशन के, सचमुच कितना मजा आ रहा है। किरण दी, अयोध्या कितनी बदल सी गई है।
2: हाँ सच में श्वेता, ये लता मंगेशकर चौराहा, ये राम की पैड़ी, ये तो हमारी भगवान राम की नगरी बिल्कुल मॉडर्न लुक दे रही है। अब तो हर गली घूम कर ही जाएंगे। तो चलो हनुमान गला की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और पुजारी जी के साथ मिलकर हनुमान जी के भजन गाते हैं।

0: वाह वाह किरण दी, बहुत ही मधुर भजन था। और क्या इसी के साथ आपको एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है जो कि हनुमान जी से है और प्रभु श्री राम और माता सीता जी से है, तो क्या किरण दी मैं छोटी सी ये कथा आपको सुनाऊं?
1: हाँ क्यों नहीं, सुनाओ सुनाओ।
0: तो आइए मैं एक छोटी सी ये कथा हनुमान जी की सुनाती हूँ। एक दिन माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थीं। तब तक हनुमान जी आज्ञा पाकर कक्ष में प्रवेश किए तो देखा माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थीं। जिज्ञासा से श्री हनुमान ने माता सीता से पूछा, माते यह आप क्या लगा रही हैं? तो माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रभु श्री राम की दीर्घ आयु के लिए अपने मांग में सिंदूर लगा रही हूँ। इसको लगाने से प्रभु दीर्घ आयु रहेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर पर वह नारंगी रंग का सिंदूर लगाकर सभा में प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच गए और वहां प्रभु श्री राम जी के पूछने पर कहा, यदि माता सीता जी के एक चुटकी सिंदूर से आप दीर्घ आयु हो सकते हैं तो हमने तो पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया।
2: समता दी की कहानी सुनते सुनते कब हम लोग कनक भवन आ गए पता ही नहीं चला। और किरण दीदी कुछ गुनगुना रही हैं, तो चलिए किरण दी की स्वर में मीठा सा गीत सुन लेते हैं।

0: किरण दी अवध में आई हैं तो सारे गीत अवधि में ही सुना रही हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किरण दी और श्वेता, एक छोटी सी एक और मुझे कहानी याद आ रही है, तो कहिए तो मैं छोटी सी कहानी और सुना दूं।
1: सुना दो, सुना दो।
0: कनक भवन जैसा कि देखने में इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है, वह अंदर से भी अति सुंदर और मनमोहक छवियां हैं। और क्या आप सभी को पता है, यह भवन प्रभु श्री राम जी से विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकई जी के द्वारा देवी सीता को उपहार में दिया गया था। यह देवी सीता जी व भगवान राम का महल भी है।
1: अच्छा, तो चलो अब हम लोग चलते हैं। और चलते चलते मुझे एक राम विवाह गीत भी याद आ रहा है, तो हम लोग गाते हुए चलते हैं।

0: अब कहाँ चलें?
1: चलिए चलिए, अब तुलसी उद्यान के तरफ चलते हैं। वही समता दीदी जो पूरी सब्जी लाई हैं, वो खाते हैं।
2: वाह क्या बात है। अरे वाह, लहसुन की चटनी किसने बनाई श्वेता? मम्मी ने या भाभी ने? और श्वेता बचना बंदर।

0: ये तो पुरानी अयोध्या का वर्णन है। नया घाट, लता मंगेशकर चौराहा, यह नई अयोध्या की पहचान है। समता, क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में?
1: हाँ किरण दी, थोड़ा बहुत जानकारी है जो मैं आपको बताती हूँ। जब हम यहाँ पढ़ते थे तब 14 कोसी मार्ग सब कच्चा था, पर अब कितना खूबसूरत बन गया है। ये लता मंगेशकर चौराहा नई अयोध्या की पहचान है। और किरण दी जानती हैं, इस चौराहे पर 40 फीट लंबी और 14 टन वजनी वीणा को स्थापित किया गया है और इसके चारों तरफ 92 कमल के फूल भी लगाए गए हैं। तो किरण दी, आपसे ये गुजारिश है कि लता दीदी के गाए हुए गीतों में से कुछ 4 लाइन आप अपने स्वर में गुनगुना दीजिए।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं समता।

0: वाह वाह किरण दी, लता दी की तो बात ही कुछ और है। और आपने उनके जो गीत गाए हैं आज आपकी आवाज़ में सुन के बड़ा ही अच्छा लग रहा है।
1: और पता है तुम दोनों को कि छोटी दिवाली के दिन दीपोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं।
0: तो ठीक है किरण दी, अब की बार हम लोग दीपोत्सव देखने जरूर आएंगे।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का वादा। और पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं

0: अच्छा अब चलो, अपना गांव हमें पुकार रहा है, वहां की माटी हमें बुला रही है। अब हम लोग गोंडा के नौबस्ता गांव में मिलेंगे। किरण दी और श्वेता, सरयू आरती का समय हो गया है, तो चलिए सभी आरती करके अपने गांव की ओर चलते हैं।
1: हाँ, क्यों नहीं।

0: अरे अरे वेट, ज्ञानस्थली लाइव जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ आपके अपने ज्ञानस्थली डिपार्टमेंट से और सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। सो ये सब आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव में रोज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सो सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टर स्किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टर स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरारा रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: तुमसे है खुमार, तुमसे है नशा, और ये है आपका ज्ञान असली लाइव। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी आज चुनौती मौजूद है आप सभी के साथ लेकर के ट्यूसडे वाला स्पेशल शो जो कि आफ्टरनून में हम लेकर आते हैं आपके लिए, वो है स्टोरीज यानी कि कहानियाँ। भाई हमने कहानियाँ ना बचपन से सुनी है, और कहानियाँ अगर हकीकत हो जाए तो लाइफ में कुछ अलग ही मज़ा आता है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं दो और लोग, और हमारी को होस्ट जिनका नाम है सौम्या, जो आपसे मुलाकात करने जा रही है पहली दफ़ा यानी कि पहली मर्तबा। कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ मैम। हेलो मैम।
0: हेलो भाई, हमारे लिसनर्स को भी हेलो बोल दीजिए।
1: हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब?
0: मेरे लिसनर्स एकदम भले चंगे हैं, मुझे पता है बहुत बिंदास रहते हैं वो। और मैं आपको बता दूं कि भाई इनका नाम है सौम्या और हमारे साथ जुड़ी हैं एक और लिसनर जिनका नाम है सुहानी, या फिर कहें लिसनर कम होस्ट ज़्यादा।
2: हेलो मैम,
0: आप लिसनर हैं कि होस्ट हैं?
2: मैं दोनों हूँ, क्योंकि मैं सुनती ज़्यादा हूँ बोलती कम हूँ, तो आप मुझे लिसनर ही कहें। तो
0: और अभी तक के मेरे शो में लगा है कि आप बोलती ज़्यादा हैं सुनती कम हैं।

0: ऑल राइट, चलिए आपकी बात को हम मान लेते हैं। तो भाई लिसनर, आज हम आपके साथ जुड़े हैं लेकर के एक ऐसी स्टोरी। अगर आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हो, अगर आप इंटरनेट यूज़र हो और आप इंटरनेट का बहुत अच्छे से यूज़ करते हो, तो एक ऐसा केस है जिसने हर जगह अपना रहस्य फैलाया हुआ है। हर कोई चाहता है कि कैसे भी इस केस को सॉल्व कर दिया जाए, और लाखों लोग लगे पड़े हैं। तो आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, अगर उनमें से अगर आप उस केस को सॉल्व कर ले जाते हैं तो ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि जो इंसान इस तरह के केस सॉल्व करता है, जो खुद को डिटेक्टिव समझता है, जिसको आदत होती है कहने की भैया हम तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो मिस्टर इंडिया हूँ, मैं तो इधर भी जा सकता हूँ उधर भी जा सकता हूँ, सारे केस मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मैं फैंटम हूँ, उसके मुंह पर एक केस फेंक के मारा जाता है कि लो देखो कर सकते हो इसको सॉल्व। और बेचारा कोशिश भी करता है कि है नहीं हो रहा है सर, तो क्या करें। ऐसा हो रहा आपके साथ भी, और अगर आप इस केस को सॉल्व कर लेते हैं तो ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ऐसे केस को सॉल्व करने वालों को नाम शोहरत दौलत सब मिलती है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: केस कौन सा है? केस है एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसिंग इंसान का। कोई इंसान खो जाए, उसको ढूंढने के लिए सालों लोग लगे पड़े हों, वो हाईवे पे कोई झाड़ी ना हो, सिर्फ रेगिस्तान हो, पूरा हाईवे खुला हो, वहाँ पर एक ट्रक खड़ा हो और ट्रक से बंदा गायब हो।
1: कैसा केस है?
0: नहीं देखो, पहली बार भूत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मुझे आज तक कभी मिला ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने एक बार भूत को इन्वाइट किया था कि चलो चाय पीते हैं एक कप, शायद उसने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अच्छा। तो अभी भी हमारी चाय उधार है
2: भूत के साथ।
0: हाँ
2: ठीक है,
0: तो मैं आपको बता दें, वो केस है ब्रैंडन का, ब्रैंडन लॉसन। ये एक ऐसा नाम है जिसने इंटरनेट पे सबको हिलाया हुआ है, फिर चाहे वो पुलिस स्टेशन वाले हों, चाहे सर्च टीम हो, चाहे एनजीओ वाले हों, चाहे जो प्राइवेट डिटेक्टिव बन के घूम रहे हैं वो हों, या फिर वो लोग जो कहते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे अंदर दिमाग जो है वो आइंस्टाइन से ज़्यादा है। और इसके बाद उन्होंने इस केस को सॉल्व भी करने की कोशिश की, बट ये केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। 9 सालों तक कोई सुराग नहीं मिला, और अचानक से एक एविडेंस मिलता है, और एविडेंस 9 सालों बाद मिलता है, वो भी कुछ फिट दूर पे। कितनी अजीब बात है कि सैकड़ों लोग उसको ढूंढ रहे थे तब नहीं मिला, और अचानक से कोई एविडेंस मिला 9 साल बाद, वो भी एक टीम को, वो भी सिर्फ 4 से 5 फिट दूर। हाउ इज दिस पॉसिबल? सोचिए, इतना भी नहीं सोचना था, जवाब भी देना होता है। जी कहिए। अब यही तो पॉइंट है कि ढूंढ कहाँ रहे थे। हो सकता है किसी और ने कभी बाद में डंप किया हो ला करके।
2: अच्छा हाँ, ये बात भी है कि जब लोग ढूंढ रहे थे तब वो वहाँ पे ना रहा हो, बाद में आया हो वहाँ पे।
0: कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों, अब आप बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो ज्ञान सी लाइव। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब हम आपको बताते हैं कि वो केस कौन सा है, और आज की स्टोरी सुनने के लिए दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि ये स्टोरी आपके दिमाग को भी हिला देगी। और वैसे हम आपको बता देते, उस डे को जो स्टोरीज हम लेकर आते हैं वो दुनिया के किसी कोने से एकदम हकीकत की होती है, यानी कि सच होती हैं, रियल होती हैं। तो इस रियल केस को सुलझाने के लिए अपने डिटेक्टिव वाले माइंड को कर लीजिए ऑन, और मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: और इन्हीं खामोशियों के बीच में कुछ ऐसी कहानियां दफन हो जाती हैं जो कभी नहीं सुलझती। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके अपने शो के असली लाइफ में, आपके मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून वाला शो। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट सुहानी एंड सौम्या। यूं तो मैं हमेशा सुहानी एंड संध्या करती हूँ, लेकिन आज कुछ नेम में ट्विस्ट है। तो क्या ख्याल है, चले अपनी कहानी की तरफ और सुनाए आज की स्टोरी में क्या कुछ है। वैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं लूंगी, लेकिन लास्ट पे देखते हैं आप इस थ्योरी को सॉल्व कर पाते हो या नहीं, क्या आपके अंदर वो डिटेक्टिव वाला माइंड है या नहीं। तो भाई लिसनर्स, अपने दिमाग को, अपने कान को खोल के बैठिएगा, यानी कि वैसे खोल के मत बैठिएगा, बस ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इस केस को सॉल्व कर पाए। बात कर लेते हैं 9 अगस्त 2013। ये वो दिन था जब एक रात ब्रेंडन का कॉल जाता है उसके भाई केली के पास। अब कोई इंसान अगर रात में सो रहा है तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा चिढ़के फ़ोन उठाएगा, और जैसे उसकी आंख खुलती है, थोड़ा सा झल्लाया हुआ था, आंख खुलते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है तो देखता है कि ब्रेंडन कॉल कर रहा है। ब्रेंडन कॉल उठाया जाता है, पूछते हैं कि बको क्या दिक्कत है तुमको, क्यों तुम्हें आधी रात में भी चैन नहीं है क्या। और ब्रेंडन उधर से कहता है कि भाई मेरे पीछे 3 लोग पड़े हैं और मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्या तुम पेट्रोल ला के दे सकते हो। केली जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसने फिर कहा कि देखो तुम नशे बहुत ज़्यादा करते हो, थोड़े कम कर दो, तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ा है, ये सब बकवास है, मेरे सामने इतनी बकवास ना करो, मैं नहीं आ रहा हूँ इतनी रात में। वो कह रहा था कि नहीं यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मेरे पीछे 3 लोग पड़े हुए हैं, ये मुझे जान से मार देंगे, मेरे ट्रक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, प्लीज़ बस इतनी सी मदद चाहता हूँ, दिक्कत तो ना मेरी मदद। दोनों के बीच में काफ़ी लंबी बात हुई, एक पीछे ही पड़ा था कि कर दो कर दो कर दो, और वहीं पर केली बार बार मना कर रहा था, नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, मेरे को सोना है, तुम्हें आधी रात में ये सब क्यों याद आता है। केली के दिमाग में था कि उसका भाई क्योंकि ड्रग्स के नशे में रहता है और अक्सर उसने ड्रग्स लिए हुए हैं, और 2 दिन पहले भी उससे बात कर रहा था ड्रग्स से रिलेटेड कि 6 महीने हो गए हैं यार मेरी शादी को, जब तक शादी हुई है तब से मैंने कुछ किया नहीं है, कुछ ड्रग्स लिए नहीं है, नशे में करता नहीं हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर ना एक कीड़ा काट रहा है ड्रग्स लेने का, तो तुम मुझे बता सकते हो कहाँ मिलेगा अच्छा वाला। और उसी बात पर उसका भाई चिल्ला उठा था उस पर कि बकवास मत करो, शादी हो चुकी है, अपनी वाइफ का ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, ज़्यादा चबड़ चबड़ ना करो, यहाँ से चले जाओ। तो उसने कहा यार देखो तुम्हें काम करना है, तुम्हें मदद करनी है, करो, नहीं करनी मत करो, लेकिन ज्ञान मत दो बेवजह का, क्योंकि हम भी फ्रस्ट्रेट जब हो जाते हैं तो अक्सर लोगों से यही कहते हैं कि ज्ञान मत दो, जो पूछा है वो बताना है बताओ, नहीं बताना साफ मना करो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं।
1: यस मैम।
0: ऐसे ही ब्रेंडन ने भी कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 महीने की शादी के अंदर बच्चे कैसे हैं, तो हम आपको बताते हैं भाई, उनकी जो वाइफ थी उसकी वाइफ की पहले भी शादी हो चुकी थी और वो उसके बच्चे थे, और अभी फ़िलहाल के लिए जब वो ब्रेंडन के साथ रह रही थी तो वो बच्चे उसी के साथ उसके घर में थे, उनका ख्याल रखता था और इसीलिए उसने ड्रग्स छोड़े थे। फिलहाल उसके ऊपर अरेस्ट वारंट भी जॉइन था, यानी कि पहले से ही उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस इधर उधर घूम रही थी। ये सारी चीज़ों को सोचकर और उसको लगा केली को कि मानेगा तो नहीं है, ये मानने वाला तो नहीं है, चलो इसकी मदद कर ही देते हैं। उसने अपनी बगल में सो रही वाइफ को जगाया और कहा देखो मुझे भाई बुला रहा है, जाना पड़ेगा, उसके ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, पेट्रोल मंगा रहा है, मैं देख कर आता हूँ। वाइफ ने कहा नहीं आधी रात में जाना तुम्हारा ठीक नहीं है, ऐसा करो मैं भी चलती हूँ, अकेले मत जाओ क्योंकि ये रास्ता यहाँ से पूरे 45 मिनट दूर है, और अगर तुम रास्ते में अकेले जाते हो, कुछ हो गया तो हमारा क्या हो, हम भी चलते हैं। इतने में ही उसके बगल में बैठा या फिर कहें तो सो रहा 4 साल का बच्चा भी जगता है, और जब उसने अपनी मम्मी पापा की बात सुनी तो वो भी बाबूजी बन के बोल दिया नहीं नहीं मैं भी चलूँगा, मैं मानूंगा थोड़ी घर के अंदर। और दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने बच्चे को उठाया गोद में और जाके कार में बैठ गए। 45 मिनट का रास्ता था, 45 मिनट के रास्ते में कम से कम 100 बार कॉल आ चुकी होगी ब्रेंडन की, यही पूछते हुए कहाँ हो कहाँ हो कब तक आओगे। तो केली भी झल्ला चुका था कि क्या उड़ के थोड़ी आ जाऊँगा, आ रहा हूँ, टाइम लगता है आने में, 45 मिनट का रास्ता है, मैं इससे ज़्यादा जल्दी नहीं कवर कर सकता। फिलहाल उसने अपनी वाइफ से कहा जब उस लोकेशन पे पहुंचने वाला था कि तुम अपने आसपास देखो, क्योंकि इस रास्ते में ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधा है, ना कोई झाड़ी है, पूरा रास्ता प्लेन है, और यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हो, सड़क पर कुछ नहीं है, एक दो ट्रक आते जाते तुम्हें दिख जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हो सकता है कोई ट्रक अगर बाहर खड़ा होगा तो तुम्हें नज़र आ जाएगा। दोनों लोग इधर उधर देख रहे थे साइड में कि कहीं तो कोई ट्रक खड़ा होगा, जहाँ पे खड़ा होगा वहीं पर ब्रैंडन भी होगा। आगे जाने के बाद उसकी वाइफ ने कहा कि सामने देखो, वहाँ कुछ तो खड़ा है, और जब देखा तो वो ब्रैंडन का ट्रक था, साइड में पार्क था। उसके बगल में एक ट्रायंगल रखा हुआ था, ट्रायंगल इसलिए ताकि लोगों को पता रहे ये ट्रक लावारिस नहीं छोड़ा गया है, इसको पार्क किया गया है किसी कारणवश और आप इसे ना छेड़ें। वो उतरता है और अपने हाथ में वो पेट्रोल लेता है और कहता है कि तुम दोनों अंदर रहना, बाहर मत आओ, मैं देख कर आता हूँ कि क्या मसला है, क्या दिक्कत है इस ब्रैंडन की। ट्रक के पास जाता है और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता, क्योंकि अगर ब्रैंडन की बात सच है कि उसको तीन लोग फॉलो कर रहे हैं, तीन लोग ढूंढ रहे हैं, तो चिल्लाना कि ब्रैंडन ब्रैंडन तुम कहाँ हो, ये उसकी जान पर बन सकती है। लोगों को समझ में आ जाएगा कि उसे ढूंढा जा रहा है और हो सकता है वो उन पर भी अटैक कर दे, और वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो एक अनजान इंसान की तरह वहाँ पर पहुँचा, इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि कहीं तो होगा ब्रैंडन, कहीं तो होगा, अगर छुपा भी है तो कहीं तो छुपा होगा। ट्रक के अंदर नहीं था, ट्रक के नीचे भी नहीं था, साइड में कोई ऐसी झाड़ी थी ही नहीं जहां पर ब्रैंडन छुप सकता हो। अब ब्रैंडन का कॉल आता है, 15 मिनट खड़े खड़े जब हो गया और ब्रैंडन का कॉल आया, उस दौरान केली का दिमाग सटक चुका था। केली ने कहा कि देखो यार, तुम्हारे चक्कर में आधी रात में अपनी अपनी वाइफ की अपने बच्चे की नींद खराब करके मैं 45 मिनट का रास्ता कवर करके आया हूँ, तुम हो कहाँ? उसने कहा मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं खड़े रहो और अपने पीछे देखो। पीछे? पीछे क्या था? पीछे पुलिस की कार आ रही थी। उसने कहा कि इसको देखकर भागो। ब्रैंडन ने कहा मैं क्यों भागूं, मैंने कौन सा कांड किया है अभी तक, मैं तो कुछ करा भी नहीं हूँ। बोला नहीं, अगर तुम पकड़े गए तो ये मेरे बारे में पूछेंगे, मेरे बारे में पूछेंगे तो तुम बता दोगे तो मैं अरेस्ट हो जाऊँगा, तुम भागो। उसने कहा मैं नहीं भागने वाला, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है यहाँ पर, मैं नहीं जा सकता, जो होगा देखा जाएगा। तो ब्रैंडन ने कहा अगर नहीं भाग रहे हो तो इस मामले को रफा दफा करो, मुझे नहीं पता, मैं सामने नहीं आ सकता, मैं पुलिस के सामने नहीं आ सकता। पुलिस सीधे उसी के पास आकर रुकती है, कार से एक इंस्पेक्टर उतरते हैं और अपना नाम नील बताते हैं, इंचार्ज नील। वो कहते हैं भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस सुनसान रास्ते में ट्रक के पास क्या कर रहे हो, क्या तुमने कोई कॉल किया था हमें? क्योंकि हमारे पास एक कॉल आई थी, किसी का फ्यूल खत्म हो गया था, पेट्रोल खत्म हो गया था, और हम वही देने भी आए हैं, क्या तुम वो ड्राइवर हो? तो इसमें ब्रैंडन का भाई केली कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, वो मेरा भाई है और उसने मुझे भी कॉल किया था, बट अभी वो यहाँ दिख नहीं रहा है। नील कहता है कि अगर वो दिख नहीं रहा है तो कहाँ गया? वो कहते हैं पता नहीं सर, हो सकता है वो पेट्रोल लेने आगे चला गया हो, क्योंकि आने में मुझे 45 मिनट के आसपास लग गए और शायद आपको भी आने में देर हो रहा होगा, तो शायद वो आगे निकल गया होगा चलते फिरते देखने के लिए कि क्या पता आगे पेट्रोल पंप हो कोई। मेरे साथ तो मेरी वाइफ है, मेरा बेटा भी है, वो देखिए उधर बैठे हुए हैं। अब नील को लगा कि ये बहुत ठीक चीज़ है, इसमें कुछ सस्पिशियस है नहीं जिस पर मैं शक करूँ। उसने कहा ठीक है तुम जाओ देख कर आओ आगे, मैं यहीं पे खड़ा होकर देखता हूँ। ब्रैंडन तुरंत वहाँ से भागता है, अपनी कार में बैठता है और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहा था कि हो सकता है पुलिस वाला, वो जो नील है, वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि ब्रैंडन कहाँ है, बट वो कुछ नहीं कर रहा था। वो अपने साथ जिस ऑफिसर के साथ आया था उससे बात करने में बिजी था। काफ़ी दूर निकलने के बाद भी जब ब्रैंडन केली को कहीं नहीं दिखा, तो उसकी वाइफ जो कि काफ़ी थक चुकी थी, उसका बच्चा जो काफ़ी थक चुका था, जो पीछे बैठ के अब रोना शुरू कर चुका था, उसकी वाइफ ने कहा कि यार देखो ब्रैंडन बड़ा है, एडल्ट है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, हमें उसके पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, वो डायपर पहन के नहीं घूम रहा है, घर चलो, मुझे नींद आ रही है, मैं थक चुकी हूँ। और ये बात केली को भी सही लगी कि हाँ वो बड़ा है, अपना ख्याल रख सकता है, उसकी शादी हो चुकी है, इतना तो अक्ल उसके पास भी है। उसने अपनी गाड़ी तुरंत मोड़ी और अपने वाइफ के कहने पर सीधे घर की तरफ चल दिया। जब लौट कर देखा तो नील अभी भी उस ट्रक के पास खड़ा था, बात कर रहा था, बट इस बार केली ने अपनी गाड़ी रोकी नहीं, सीधे वहाँ से भगाई और घर जाके सो गया, इस उम्मीद में कि शायद सुबह दोबारा से कॉल करेगा और उस वक्त उसकी क्लास लूँगा कि क्यों भैया हमने तुमको, तुम्हारे कहने पे आए, पेट्रोल लेकर आए, तुम ही नहीं मिले, ये क्या बकवास है, और आगे से कभी कॉल कर मत देना। और हो सकता है इसको वो थोड़ा जस्टिफाई भी करे कि मैं किस वजह से नहीं आया। सुबह हो चुकी थी, सुबह होने के बाद भी अभी तक ब्रेंडन का कोई कॉल केली के पास आया ही नहीं था। इसके अलावा एक और चीज हुई, ब्रेंडन की वाइफ वो सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में थी, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा रही थी ब्रेंडन के खिलाफ, यानी कि ब्रेंडन के लिए। बट रिपोर्ट क्यों? क्या ब्रेंडन सच में खतरे में था या वो कहीं चला गया था? पुलिस जिसकी तलाश में थी, क्या वो खो गया था या उसने खुद को कहीं छुपा लिया था? एक बहुत वायरल रिकॉर्डिंग है जो ब्रेंडन की पड़ी हुई है ऑनलाइन आज भी। चलिए एक लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, तब तक के लिए आप बताइए कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, क्या आप गेस कर सकते हैं या फिर हम ही आकर बताएं। सुनते रहिए ग्यारसली लाइव, आप सुन रहे हैं रेडियो ग्यारसली 89.6 FM, यही गोरा शहर की धड़कन पर आवाज़ है आपकी अपनी आरजे उन्नति की, और मेरे साथ मौजूद है मेरी कोहोस्ट सौम्यायन सुहानी। स्टे ट्यून्ड।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके अपने वाले शो ज्ञानस्थली लाइफ पे। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आपको सुना रही हूं मैं कहानी, या फिर कहें तो एक ऐसा केस जो आपके साथ डिस्कस करने में मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और आई होप आपको सुनने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं मेरी होस्ट सौम्या एंड सुहानी, जो फिलहाल के लिए कहानी में इस कदर खो चुकी हैं कि जिनके पास अब शब्द नहीं है, है ना?
1: यस मैम।
0: वैसे तुम्हें क्या लगता है, ब्रेंडन कहाँ गया होगा? उस रेगिस्तान में कोई इंसान कहाँ छुप सकता है? वो कोई सांप वाप तो है नहीं जो रेत के अंदर चला गया होगा। क्योंकि वो देख सकता था।
2: मैम कैसे?
0: अब ये ही तो पॉइंट है कि वो देख तो सबको सकता था, लेकिन कोई उसे क्यों नहीं देख पा रहा था?
1: क्योंकि वो मर गया था, वो भूत बन गया था, सबको देख।
0: इनका तो भूत वाला ही पॉइंट खत्म नहीं हो रहा है। आई थिंक आपको ज्यादा ही हॉरर मूवी से इंस्पायर्ड आप स्टोरीज पसंद करती हैं।
1: नहीं मैम, तो कोई वैसे भगवान थोड़ी ना हो जाएगा कि वो सबको देख सके।
0: और क्या पता वो आसपास ही कहीं मौजूद हो, वो सब देख रहा हो,
2: तो
0: बस बाहर ना आ रहा हो किसी कारण।
2: वहाँ पे कुछ था भी तो नहीं ना?
0: ये अब बात तो वही जानते हैं जिन्होंने केस पढ़ा होगा। क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है, वो भी बेचारे सोचते हैं कि ब्रैंडन कहाँ गया, ऐसे कैसे कोई लापता हो सकता है। एक अच्छा खासा इंसान, बच्चा भी नहीं है यार, वो बड़ा इंसान है, उसके खुद के बच्चे हैं।
1: था, और ना
0: पे
1: कोई जंगल था, ना दुकान थी, खाली
0: उसका ट्रक था। मुझे तो देखा गया था, ऊपर कहाँ देखा गया?
1: तो पुलिस वालों
0: ये तो मेरा से थॉट है, वो तो कुछ भी सकता है। फिलहाल रिचा आप बताइए कि वो कहाँ हो सकता है और कहाँ से सबको देख रहा होगा। और हम चलते हैं कहानी में आगे। उसकी वाइफ जब रिपोर्ट लिखा रही होती है कि मेरा हस्बैंड कल रात अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए घर से निकला था। हम आपको बता दें, इंडिया में तो पेरेंट्स और उनके बच्चे हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन अमेरिका और बाकी देशों में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप 18 साल के होते हैं, आपको अपने घर को टटा बाय बाय कहकर खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी अपने आप जीनी होती है। पहले सबको लगा कि हो सकता है ब्रेंडन नाराज हो, अपनी वाइफ से लड़कर गया था, क्योंकि उसकी वाइफ भी ड्रग्स लेने पर नाराज होती थी, ऑफ कोर्स होती ही होगी, और इसी बात पर वो चला गया, गई खो गया, केस चला, लोगों ने ढूंढने की कोशिश करी और लास्ट में एक कंक्लूजन निकाला कि ब्रेंडन खुद लापता हुआ है, वो खुद छुपता घूम रहा है। क्योंकि अगर वो खोया होता तो अब तक हम ढूंढ चुके होते, लेकिन अगर कोई इंसान हमें खुद से छुपाने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे नहीं ढूंढ सकते। ये पॉइंट निकाला गया था। बट वो कहते ना, अगर आपसे कोई बहुत मोहब्बत करता है, आपको कोई बहुत पसंद करता है, किसी की आप बहुत केयर करते हो, तो आप उसकी हर एक बात की खबर रखते हो, हर एक चीज़ जानना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एक तड़प होती है कि कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, मुझे बिना बताए कैसे चला गया, क्लोजर कहाँ है। और इस बात को लेकर के उसकी वाइफ ने ब्रेंडन की कॉल हिस्ट्री निकलवाई। हमारे इंडिया में तो होता है कि कॉल हिस्ट्री निकलवाने के लिए हमें पुलिस के पास जाना पड़ता है, पुलिस निकाल कर देती है, बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर आप अपने लव्ड वंस की, जो भी परिवार के लोग होते थे या फिर उनके जो भी रिलेशन में आते थे, वो कॉल हिस्ट्री आराम से निकलवा सकते थे। कॉल हिस्ट्री निकलवाने के बाद कुछ बहुत सस्पिशियस था, जिसको लेकर के उसकी वाइफ पुलिस स्टेशन पहुँची। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कहा कि एक बात बताओ सर, एक इंसान जो पुलिस से डर रहा है, पुलिस से डर के भाग रहा है, वो इंसान कैसे पुलिस वालों को कॉल कर सकता है? क्योंकि उसने जितने भी कॉल्स अपने भाई को किए हैं, उसमें एक कॉल 911 को भी किया है, और उसे पता है कि पुलिस अगर उसको देखेगी तो अरेस्ट कर लेगी। अगर उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती तो वो खुद क्यों बताता कि वो कहाँ है? वो खुद भागना चाहता उसे छोड़ के। उसने 911 को कॉल किया, इसका मतलब वो परेशान था, वो मजबूर था, और आप उसकी मजबूरी समझ नहीं रहे हो। हेडक्वार्टर्स से तुरंत रिकॉर्डिंग मंगवाई गई, क्योंकि हेडक्वार्टर्स ने ही इंचार्ज नील के पास मैसेज भेजा था कि कोई है जिसे मदद चाहिए। वहां से रिकॉर्डिंग मंगवाई गई, और रिकॉर्डिंग में साफ तौर पे जब लोगों ने बैठकर सुना तो पीछे कुछ और आवाजें भी थी। उन आवाजों में गनशॉट था, यानी कि गोलियां चलने की आवाज थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार। और ब्रेंडन कह रहा था कि मेरा फ्यूल ख़त्म हो गया है, मुझे ज़रूरत है। जब उसने पूछा कि क्या तुम्हें कॉप की ज़रूरत है, यानी कि तुम्हें पुलिस की ज़रूरत है, तो उसने बहुत हेजिटेट करते हुए, बहुत डरते हुए, बहुत नर्वसली बोला कि हाँ मुझे पुलिस की ज़रूरत है। एक इंसान जिसके लिए अरेस्ट वारंट निकला हो, वो पुलिस को अपने पास कभी नहीं बुलाएगा जब तक उसकी मजबूरी ना हो। और ये पॉइंट जैसे ही सामने आता है, पूरे देश की पुलिस लग चुकी होती है, उस पूरे शहर की पुलिस लग चुकी होती है, हेलीकॉप्टर्स मंगाए जाते हैं कि नीचे से ना सही तो ऊपर से तो दिखेगा ही, गया कहाँ, इसके नामो निशान कुछ तो मिलेंगे, डॉग्स मंगाए जाते हैं कि सूंघो कहाँ है ये, थर्मल कैमराज मंगाए जाते हैं, थर्मल कैमराज आपके बॉडी हीट को डिटेक्ट करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, अगर आप उनके अंदर देखते हो और कोई इंसान है जिसके अंदर बॉडी हीट है, तो वो डिटेक्ट करके बताता है कि हाँ यहाँ पर कुछ है जो अलग है, जो एनवायरमेंट से अलग है। उन थर्मल कैमरा से भी देखे गए, लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 सालों तक ये सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा, न जाने कितने टीम्स आए, और आखिर में ये केस साइड कर दिया गया क्योंकि कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था। एक इंसान गायब हुआ है और उस इंसान का कोई सुराग नहीं है, बस वो खो गया है, वो लापता हो गया है। पुलिस को नहीं पता वो कहाँ गया, लोगों को नहीं पता वो कहाँ गया, किसी को कुछ नहीं पता। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी दुनिया में टेलीपोर्टेशन जैसी कोई चीज़ है, हमने टेलीपोर्ट कर दिया हो इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो वो गया कहाँ, वो कौन था जो उसको लेकर गया, वो 3 लोग कौन थे? जब ये बात उसके भाई ने आकर के बताई कि मुझे कहा गया था कि वो परेशान है, उसको कोई 3 लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उसको ढूंढना चाह रहे हैं, वो कहते हैं वो मार डालेगा। अब पुलिस एक नहीं 4-4 लोगों की तलाश में लगी थी, वो 3 जो उसका पीछा कर रहे थे, चौथा वो खुद यानी कि ब्रैंडन। ये 4ों कहाँ गए, इनको धरती निकल गई, आसमान ने छुपा लिया, या हवा में कहीं घुल गए? 9 साल गुजर चुके थे, उसकी वाइफ ने प्राइवेट डिटेक्टिव्स को भी हायर किया था, एंड वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी तलाश नहीं कर पाए, जो कह रहे थे कि मैं तो दुनिया की किसी भी चीज़ को खोज सकता हूँ। उनके मुंह पर जब एक केस फेंक के मारा गया कि इसको खोज के दिखाओ, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया कि ना बाबा ना, ये वाला हमसे ना होगा, ये वाला कहीं और दिखा लो, ये हमारे बस की चीज़ नहीं है। 9 साल गुजर चुके थे, 2022, एक और टीम जिसके अंदर फिर से कीड़ा काटता है कि चलो देख के आते हैं हुआ क्या था, हम देखेंगे ना, हम बताते हैं, क्योंकि हर एक साल में किसी ना किसी को ऐसा भूत ज़रूर चढ़ता है कि जो कोई नहीं कर सका वो हम करके दिखाएंगे। और इस बार अगेन एक टीम पहुंची थी सेम उसी जगह पर जहां उसका ट्रक खड़ा था, ढूंढने के लिए कि क्या ब्रैंडन है। और ढूंढते ढूंढते वो कुछ 4 से 5 फीट की दूर पर गए, वहाँ एक कैक्टस का पेड़ लगा था, उसके अंदर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है कि वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं, और यहाँ से इस केस का पासा पलट जाता है। गेस कीजिए वो कौन सी चीज़ हो सकती है। एंजॉय करते रहिए आपका अपना शो यहाँ से लाइव, लेते छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: और केके की आवाज में प्लस श्रेया जी की आवाज में आप सुन रहे हो सनम द कलर फिल्म से। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजे उन्नति और मेरे साथ मौजूद है मेरी होस्ट एंड दोस्त सौम्या एंड सुहानी। आपने ट्यून कर लिया जी 9.6 FM यह गोंडा शहर की धड़कन पर। कहानी सुना रही हूं मैं आपके अपने प्रोग्राम 11 से लाइव है। ट्यूसडे का वो स्पेशल डे जो मुझे बेहद पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें कहानियाँ आपके साथ मैं सुनाती हूँ, मैं आपको आके शेयर करती हूँ और आप अपने कॉम्प्लीमेंट्स, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, अपनी थ्योरीज मेरे साथ चैट बॉक्स में शेयर करते हैं। लेना देना, शेयरिंग इज केयरिंग। और जो लोग कहते हैं ना मेरा तुमसे क्या लेना देना है, मैं आपको स्टोरी दे रही हूँ, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, वाह वाह बस यही लेना देना रिश्ता है हमारा।
1: yes,
2: हो गया लेना देना।
0: फिलहाल के लिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वक्त हमें धोखा दे देगा। और चीज़ें सिर्फ धोखे खानी चाहिए, धोखा नहीं खाना चाहिए, है ना?
1: यस मैम।
0: तो भाई आगे कहानी में क्या होने वाला, तो उस कैक्टस के पेड़ के अंदर क्या था, कोई गैस कर सकता है? आत्मा को छोड़ के वाह, अनएक्सपेक्टेड आंसर था ये मेरे लिए। मतलब एक कैक्टस के पेड़ के अंदर एक घर बना हुआ है।
2: बहुत अजीब सा, जैसे कोई हैकर या फिर कोई बहुत वैसा इंसान बनाता है जो लोगों से डर के
0: रहे। लिसनर्स आप बताइए, तालियां दी जाए या फिर तालियां दी जाए?
2: मैम तालियां दी जाए
0: तालियां दी जाए।
1: तो अगर वहाँ पे घर होता है, कुछ भी होता, तो पता तो चलता ना कि वहाँ पे घर है।
0: वाओ, मतलब ओके ठीक है, आप लोग ऐसा करें, 2 मिनट और खामोश बैठे, हम अपनी कहानी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप कैक्टस के पेड़ के अंदर घर बनाने लग गए हैं। तो भाई हम आपको बता दें कि आगे क्या होने वाला है। कैक्टस के पेड़ के अंदर एक जूते का जोड़ा प्लस 2 शॉर्ट्स पड़े थे, हाँ वही जो आप घर में पहन के आजकल घूम रहे हैं गर्मी की वजह से, वही। और उसको देखने के बाद टीम का कॉल जाता है तुरंत पुलिस वालों के पास, 911 कि भैया देखो यहाँ पे कुछ है, कुछ है। पुलिस वाले कह रहे हैं अभी बाबूजी आज तक हमको नहीं मिला, तुमको कैसे मिला? हमने तो इतना सब कुछ देखा, हमारे कुत्तों ने देख डाला। चलो मेरी नाक ना सही, मेरे कुत्ते की नाक तो थी ना, इसका भी काम नहीं आया क्या? बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। उन जूतों को उठाया गया, कपड़े उठाए गए, साइड किए गए, ढूंढते ढूंढते ढूंढते ढूंढते आगे निकले और सिर्फ 3 से 4 फीट दूर एक इंसान की खोपड़ी पड़ी थी। पुलिस ने कहा ये तो हमने कभी नहीं देखा रहा, ये कहाँ से आया? मतलब 9 साल हमने सर्च कर डाला, प्राइवेट डिटेक्टिव ने सर्च कर डाला, जो अपने आप को डिटेक्टिव बने घूम रहे थे उन्होंने सर्च कर डाला, मेरे कुत्तों को जो हमने इतने सालों से ट्रेंड किए उन्होंने सर्च कर डाला, एक कैमरा जो साइंस ने बनाया उसने भी सर्च कर डाला, जब किसी को कुछ नहीं मिला तो एक खोपड़ियाँ आई कहाँ से? 3 साल बाद, 3 साल बाद आफ्टर ऑल जब उसका DNA सामने आया तो समझ में आया कि ये DNA किसी और का नहीं, ये ब्रैंडन का है। अब थ्योरी 2 निकल के आती है। पहला, ब्रैंडन को किसी ने मारा था और उसको इस एरिया में 9 साल बाद फेंका गया था, यानी कि डंप 9 साल बाद किया गया था, 9 साल तक वो कहीं और था। पर वो था कहाँ और वो 3 लोग कौन थे? यूँ तो हम हमेशा कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, चोर हर वक्त अपना एक सुराग जरूर छोड़ के जाता है, कुछ ना कुछ सबूत जरूर इंसान छोड़ देता है। यहाँ इंसान ने कुछ छोड़ा ही नहीं था, ऐसा लग रहा था कुछ तो हुआ है, उड़ती उड़ती खबर सी आई है बट कोई दिखा नहीं। ऐसे ही लोगों को लोग आत्मा समझ लेते हैं, जैसे हमारी सुहानी जी बहुत देर से आत्मा समझ रही हैं इसको। इस कहानी को, इस केस को सॉल्व करने का जिम्मा आज भी लोगों के पास है और आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोई कहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ जॉन, वैसे ही ये केस पुलिस वाले उनके मुंह पे फेंक के मार देते हैं, करो करो बैठ के, और वो तुरंत हाथ खड़े होकर कहते हैं कि हे, हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियस हो गए। क्योंकि हमसे तो हो ही नहीं रहा है।
2: मैंने भी भूतना मजाक ही किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं।
0: अब आप बताइए क्या आप इस केस को सॉल्व करने में दिलचस्पी रखते हैं? क्योंकि हम रखते हैं पर बिना सबूत के नहीं रखते हैं।
2: मैम दूसरा पॉइंट क्या था? एक तो उसे किसी ने मारा था,
0: दूसरा
1: वो जादू से गायब हो गया।
0: नहीं,
2: तो
0: दूसरा जो लोग कहते हैं और वो ये है कि ब्रैंडन को वहीं मारा गया था, बट शायद किसी ने देखा नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानों पर तो आप एक बार के चलिए ठीक है, इंसानों ने नहीं किया, बट एक डॉग जो स्पेशली ट्रेंड इसलिए किया गया है ताकि वो सूंघ सूंघ के पता कर ले जाए, और उसने जाने कितने केस सॉल्व किए भी होंगे, वो कुत्ते भी नहीं सूंघ पाए क्या?
2: और मैम सांस में पीछे छूट गई।
0: बात तो दिलचस्प है, कहानी दिलचस्प है, बहुत मिस्टीरियस केस है, अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। 2013 से 26 आ चुकी है और आज भी ये केस यहीं पर अटका है कि ये 9 साल बाद जो ह्यूमन स्कल था वो कैसे आया, ब्रैंडन कहाँ गया, और वो 3 लोग कौन थे जिसका जिक्र उसने किया था, और वो जो गन फायर जो गन शॉट था वो कहाँ था। और मेरा एक और सवाल है, अगर उसकी खोपड़ी यहाँ है तो उसकी बाकी बॉडी पार्ट्स कहाँ हैं?
2: हाँ, क्योंकि अगर वो यहीं पे मारा गया होता तो चलो एक हिसाब से होना तो सब चाहिए ना।
0: अब ये कहानी मैं आपके हाथ में छोड़ के जा रही हूँ। लिस्नर, आप बताइएगा अपने थॉट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, और हम जान लेते हैं आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आज की स्टोरी को लेकर, कि आपके फीडबैक्स क्या कुछ कहते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं हमारे चैट बॉक्स में, क्योंकि हमारे साथ मिस्टर बीस्ट जुड़े हैं जो लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून टू यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड, थैंक यू, आप बताइए आप कैसे हैं, और आप बताइए क्या ख्याल है, क्या फीडबैक है आज की स्टोरी के लिए।
2: मैम मुझे लगता है कि उसको किसी ने मार के कहीं पे रख लिया था, फिर बाद में वहाँ पे छोड़ दिया, या कि वो लोग जो जिन्होंने मारा था वो पकड़े ना जाए कर।
1: यस मैम, शायद।
0: आज की कहानी कैसी लगी
1: मैम?
2: बहुत
1: अच्छी थी,
2: लेकिन मुझे लगता है ये हिस्ट्री मिस्ट्री बन गई।
1: यस मैम,
0: एक्चुअली ये मिस्ट्री ही हिस्ट्री बन गई है।
1: क्योंकि वो गया तो गया आखिरकार,
0: अब शायद कुछ मरा, और वक्त
2: कब मरा, कहाँ मरा, किसने मारा,
0: अब यही सवाल तो सबके पास है।
1: वो 3 लोग गायब कहाँ से हुए,
0: अब यही तो मैंने भी पूछा था,
2: किसने मारा।
0: फिलहाल के लिए लिसनर्स आप बताइए, तब तक के लिए हमारे साथ कमल लैन जी भी जुड़ गए हैं, चलिए गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं गैस लाइफ में। घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। आई होप आज के शो में, आज की कहानी में, आज के केस में आपको बहुत मजा आया होगा और इसने आपके दिमाग को जरूर हिलाया होगा। और आइए करते हैं अब आपसे विदा, यानी कि लेते हैं अब आपसे विदा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपका अगला कार्यक्रम सेहत या सिंह, सेहत वाला प्रोग्राम सुनना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।
1: बाय बाय।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करें, कहां जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में हमें मुफ्त इलाज मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर हैं आज आप सभी की हम सभी की प्यारी यानी कि टीकन देवी जी और साथ ही में हमारी प्यारी श्रोता यानी सुनीता देवी जी। सुनीता जी, अब आपका मन कैसा है?
2: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूसरी है, प्रक्रिया की। कहाँ जाएं, किससे पूछें, कागज क्या लगेंगे, भीड़ होगी या नहीं, कहीं लौटना ना पड़ जाए। हमारे जैसे परिवारों की यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
3: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम की है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म व बिना डर सेवाओं के लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
1: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी प्रचार सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना होना सही इलाज के लिए बाधा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
2: यह बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि सच कहूँ अगर यह बहुत महंगा इलाज होता तो शायद हम टाल देते। हमारे जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्च डराता है।
3: और यही कारण है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं या बराबरी की बात है। इसका मतलब यह है कि रोकथाम सिर्फ शहर के बड़े निजी अस्पतालों या पैसे वालों तक सीमित न रहे। गाँव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
1: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं है, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है इसके लिए?
3: जी, पहला रास्ता आपके नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आयोग मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना

0: मोबाइल, इंटरनेट, ओटीपी या सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो। तकनीक मदद के लिए है, छाटने के लिए नहीं।
1: ये बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगी है, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असामान्यताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
2: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड करना, नाम लिखना, अंग्रेजी में पढ़ना, ये सब आसान तो नहीं है।
0: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ। यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले। तो क्यों ना हम आज अपने श्रोताओं को किसी सरकारी केंद्र पर ले चलें? बहुत अच्छा आइडिया है, पास वाले में चलते हैं। तब तक हमारे श्रोताओं को सेहत सही लाभ कई का गीत सुनाइए।
3: अरे सु...

0: हाँ जी श्रोताओं, जरा आपको अब यहाँ का दृश्य बता दें। सुनीता जी और टीकन भाभी और साथ ही साथ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजे आकांक्षा सरकारी केंद्र पर पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है, उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों की भी यही स्थिति होती है, तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साझा करेंगी सुनीता जी?
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई, पहले जानकारी क्यों नहीं ली। पर जब वहाँ बैठी तो ANM बहन जी ने अच्छे से समझाया, तो आधा डर वहीं खत्म हो गया।
2: यही तो भरोसा बनाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करे तो सेवा का असर दुगना हो जाता है।
0: और यही एक बड़ी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है। खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के लिए टीके के लिए गए थे, पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा कि यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह हमसे जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आधिकारिक संदेश साफ कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीनेशन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब यह नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब

0: है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
1: और उपलब्ध सरकारी संचार में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क उपलब्ध हो सकती है तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लड़कियों की बात है, हमसे क्या लेना।
2: यह बात मेरे मन को लगी। मैं बेटी के साथ गई थी, पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, जब कोई लक्षण होंगे तब देखा जाएगा, पर तब तक बहुत देर हो जाती है।
0: इसलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
1: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है, पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जाना, ऐसे में क्या करें।
2: यही तो हुआ है मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद कभी सही फैसला नहीं ले पाऊंगी।
0: इसलिए निर्णय की धुरी साफ रखो, घर की राय सुनो, पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है।
2: अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को उसे भावुक कहकर किनारे नहीं करना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब है वह जिम्मेदार है।
0: सही कहा। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
1: ये बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा समझ नहीं तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए SSL के यानी कि सेहत सही लाभ कई जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं, जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
2: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगी, किसी ने यूविन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
0: पर तुमने पूछा ना?
2: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक, नहीं तो केंद्र पर भी जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
0: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है भाभी आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों से दूरी महसूस करते हैं।
2: एक और बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसी चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
0: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर नहीं पहुंचती। यदि खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाह भी पहुंच जाती है। इसलिए जानकारी को सिर्फ जारी कर देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना जरूरी है।
1: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर करता है जब वो गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
2: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
0: हाँ, क्योंकि यह उपदेश नहीं साथ चलने वाली बात होती है।
1: अब एक उपयोगी सूचना बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें। पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। आशा ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहाँ और कब कैसे उपलब्ध है। यदि उपलब्ध हो तो यूविन पर पंजीकरण की जानकारी लें। किसी भी फॉरवर्ड वीडियो या बिना स्रोत के दावे को अंतिम सच बिल्कुल नहीं माने। बेटी से खुलकर बात करें और उसे बताएं कि ये सुरक्षा का कदम है। घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में पूछें। किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से झिझक बिल्कुल भी मत करें।
2: यह सूची में लिख लेना चाहती हूँ क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाता है, पर लिखी चीज हमेशा साथ रहती है।
0: लिखें और चाहे तो दीवार पर चिपका दें। जैसे राशन की सूची लगती है, वैसे ही सेहत की भी सूची लगे।
1: बहुत सुंदर, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए। कोई आकस्मिक घटना नहीं बननी चाहिए।
2: टीकन भाभी, अब मैं बेटी को टीका लगवाने के लिए तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है। पहले जो डर था, अब उसकी जगह एक जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों से भी बात करनी चाहिए।
0: यही तो सार्वजनिक भलाई है। जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे यह जानकारी मिली। यह उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
2: मैं अपनी जेठानी को भी कहूंगी कि अपनी जांच के बारे में पूछें। वह हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूंगी, समय नहीं बनता, निकालना पड़ता है।
0: सही, और यह सिर्फ बीमारी से लड़ने की बात नहीं, अपने जीवन की कीमत पहचानने की बात है।
1: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत कोई फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों के स्वास्थ्य पे आई हुई बीमारियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
0: और मैं यही कहूंगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ दें। पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की भी बात उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
1: बहुत सही, यही है सेहत सही लाभ कई। एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर सही कदम और सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। जहां सुविधा हो, यूविन पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की सही जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो, सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANMG से संपर्क करें। डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण है। परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर ही टिकाऊ होनी चाहिए। सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना और उस सुविधा को लेना, दोनों आपकी ताकत है। और साथियों, यहाँ एक बात और जोड़ना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है, तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवाइए ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था जवाबदेह हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
0: और जवाबदेही दो तरफ की होती है। व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं। यही दूरी कम करनी है।
2: अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ता है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनना पड़ता है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी संदेश जीवित रहता है।
1: ये बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और संस्थानों के साथ दूरी जैसी चुनौतियां हों। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई। नहीं, असल काम तो तब पूरा होता है जब घर की महिला कहें, मुझे समझ में आ गया है।
2: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्यों है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
0: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
1: और एक अंतिम व्यवहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो तो हार मानना नहीं है। दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती। सुनीता मार्कर।
2: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, टिक कर करना पड़ता है।
1: और शायद यही इस पूरे सिलसिले की सबसे बड़ी सीख है। सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
3: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे
4: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
3: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

निभाए। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: नमस्कार दोस्तों, और साथ ही साथ गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से बड़े मंगलवार का आनंद उठा रहे होंगे। जी हाँ, आज है मंगलवार, यानी कि आज है बड़ा मंगलवार। अब देखिए, बड़ा मंगलवार वैसे तो कम ही आता है, मतलब साल में चार मंगलवार होते हैं जो कि जेठ महीने में पड़ते हैं, लेकिन इस बार भगवान ने हमें बहुत ही बड़ी कह सकते हैं डील दे दी है कि हमें आठ आठ मंगलवार एंजॉय करने को मिल रहा है, और आज आई गेस आखिरी है ना अंशिका?
1: जी बिल्कुल।
0: तो मुझे लगता है कि अभी तक जिनके भंडारे की पूरी बाकी रहेगी ना भाई, आज अपने घर से निकलो। हाँ धूप है, लेकिन धूप से बचने के लिए आप सर पे कोई स्कार्फ बांध सकते हैं, थोड़ा छांव में निकल सकते हैं, या फिर अपने घर के नन्हे मुन्ने बच्चों को भेज सकते हैं। देखिए भाई, अधिकतर मम्मियाँ और जो आंटियाँ होती हैं वो अपना घर से बाहर थोड़ा कम निकलती हैं, लेकिन बच्चों को भेज देती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि

0: साल भर में आपकी 8 मंगलवार पड़ रहे हो, अगर अभी तक आपने पूरी सब्जी नहीं खाई है भंडारे की, आप लोग बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। तो भाई जल्दी से जाइए और भंडारे के प्रसाद का आनंद उठाइए, और साथ ही साथ इस आनंद को दुगना करने के लिए अपना रेडियो यानी 89.6 FM सुनते रहिए, क्योंकि वक्त हो चुका है डेढ़ बजे आती हूँ मैं। आज कभी कभी आती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ लाती हूँ बहुत अच्छी अच्छी बातें। और मैं आई हूँ आज कहाँ भाई, आपके अपने शो सुन सहेली में, और जिसे आज होस्ट कर रही हैं हमारी आरजे अंशिका।
1: बिल्कुल, हम आ गए हैं भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं लिसनर, सुन सहेली का दस्तूर है कि हम सहेलियों को साथ लेकर ही आते हैं। तो सहेलियों में आज आपकी आरजे आयुषी मेरे साथ हैं, क्योंकि आपकी अपनी आरजे समता जो है, मैंने आपको बताया था कि कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैम फिलहाल छुट्टी पे हैं, और इसलिए हम दोनों आ गए हैं। आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपको बहुत एंटरटेन करेंगे, और आज तो हमारा मस्ती करना बनता है। आज तो हम मस्ती का परमिट लेकर आए हैं।
0: कैसे?
1: ऐसे कि आज है हमारा ट्यूसडे, और ट्यूसडे होता है नन्हे मुन्ने बच्चों का दिन, और जब बच्चे बनेंगे तो फिर मस्ती करना तो बनता है।
0: बिल्कुल, तो भाई आज बच्चों के दिन में थोड़ा सा बच्चे आप भी बन जाएं, और बच्चे बनने का मतलब ये नहीं है कि जाके पड़ोस वाली आंटी का शीशा ही फोड़ आए। बच्चे बनने का मतलब है कि अपने अंदर के बच्चे को आज के दिन जगाएं। देखिए, एक बहुत महान इंसान है जिसने ये कहा है कि जिंदगी में आप कितनी भी बड़ी उम्र के हो जाए, 40, 45, 60, 70, लेकिन अपने उस छोटे से बच्चे जो कि 7-8 साल का है, जो आपके अंदर बसता है, उसे कभी भी ना मरने दे, क्योंकि यही जिंदगी में मस्ती लेकर आता है और जिंदगी को आसान फील कराता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जिंदगी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उस बच्चे को देखो जिसे अभी जिंदगी के तौर तरीके, सोसाइटी के नियम, क्या करना है बड़े होके, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, वो बस अपनी जिंदगी इंजॉय करने में लगा है, उसकी जिंदगी में कितनी खुशियाँ हैं। और मुझे लगता है कि हमें हमारे जो है बच्चे को, हमारे अंदर पल रहे हमें, मतलब हमारे इनर चाइल्ड को कभी भी मारना नहीं चाहिए सिर्फ इस मैच्योरिटी के नाम से। एक्चुअली कई लोग को लगता है कि मैच्योरिटी का मतलब है कि अपनी इनर चाइल्ड को मार के एक बहुत ज़्यादा अडल्ट बिहेव करने लग जाए, वही मैच्योरिटी है। पर मैं आपको बता दूं भाई, मैच्योरिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। आप जब एक बैलेंस बनाते हैं अपने अंदर के इनर चाइल्ड के बीच में और एक मैच्योर इंसान के बीच में, वही एक अच्छी मैच्योरिटी है। आप हर एज ग्रुप के साथ उनके जैसा बिहेव करें, उनको समझें, और सबसे बड़ी बात है अपनी ज़िंदगी का आनंद लें। क्योंकि भाई देखिए, दुख देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, 1, 2, 3 नहीं, सैकड़ों चीज़ें हैं, लेकिन खुशियां हमें बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद ही मिलती, और अगर आपको मिल गई है तो उसे हाथ से गंवाना बिल्कुल नहीं चाहिए। और खुशियों का ही एक रूप होते हैं हमारे घर के नन्हे मुन्ने बच्चे। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में खुशियाँ मिसिंग रहती हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि अभी इन्होंने कहा है कि बच्चों का दूसरा नाम एक खुशी है, और कहाँ आप कह रही हैं कि बच्चों की ज़िंदगी से खुशियाँ मिसिंग रहती है। जी बिल्कुल, देखिए ये होता है। कभी आप महसूस करिए, कभी उन बच्चों की आंखों में झांकिए जो जिनकी लाइफ का कोई स्कोप उन्हें दिख ही नहीं रहा है। उन्हें बस ये पता है कि बस हमें नेक्स्ट टाइम की जो रात की रोटी कमानी है, आज सुबह की रोटी कमानी है, और अपने घर में जो छोटा है उसका पालन पोषण करना है। आपने ऐसे बच्चे ज़रूर किसी ट्रैफिक सिग्नल पर या किसी मॉल के सामने, किसी हॉस्पिटल के सामने भीख मांगते हुए, या जो बच्चे भीख नहीं मांग रहे हैं वो छोटे मोटा बिजनेस, अभी मैंने रिसेंटली देखा यहाँ हमारे गोंडा के जिला अस्पताल के सामने एक बच्चा एक बोरी बिछाया हुआ था, और उस पर वो आम और आम पे चटपटा मसाला जो है उस वो लगा के सेल कर रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने लिया और कुछ लोगों ने नहीं लिया, लेकिन मैंने ये सोचा कि एक बच्चा जो कि भीख मांगने के बजाय अपने से कुछ करके कमा के खाना चाह रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम मैच्योरिटी नाम देते हैं, ये किसी एज से नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जो कि एक ऐसा बच्चा जो अभी 17 या 18 साल का है, उसके अगर घर में पिता की डेथ हो जाए तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके वो थोड़ा और अडल्ट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ भागने लग जाएगा। वहीं जो इंसान 40-50 साल का है, उसके अंदर मैच्योरिटी गायब रह सकती है। तो मैच्योरिटी कभी भी उम्र देख के नहीं आती, वो हमेशा हालात और स्थिति देख कर आती है। लेकिन फिर भी अपने लिए, अपने हित के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आयुषी ने। और अभी जब वो बात कर रही थी और कह रही थी, तो मुझे वो चीज़ फील हो रही थी कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि एक छोटा सा बच्चा था और वो काम कर रहा था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं

0: हम हमेशा कहते हैं ना कि कई बार आपको बड़ा जो होता है ना वो आपकी एज नहीं बनाती, कई बार आपको आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं ना वो बड़ा बना देते हैं। हम कहते हैं ना छोटी सी उम्र में भी, कई बार आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो बहुत समझदार होते हैं, मतलब इतने समझदार होते हैं कि हमें लगता है कि अरे यार इनकी तो अभी कोई उम्र ही नहीं, बट वो समझदारी उन्हें उनकी लाइफ ने जो सिखाया है ना उससे आती है। हमने भी हमारी लाइफ में कई ऐसी चीज़ें फेस की होंगी जहाँ पे हमें लगता होगा कि नहीं हमें नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उन बातों को सीखा, समझा, उन हालातों को अपने ऊपर जब आप बीतते हुए देखते हैं ना, जब हम खुद कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारी लाइफ में एक चाहे अच्छा हो या बुरा हो दोनों ही कंडीशन में हमें सिखा जाता है। और जब आपका अनुभव आपको कुछ सिखाता है तो वो पूरी लाइफ याद रहता है।
1: बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर की जो ममता है, जो प्यार है,
0: जो सॉफ्टनेस है,
1: वो सिर्फ हमें अपने ही बच्चों के लिए, अपने खून के लिए ही नहीं रखनी चाहिए बल्कि सभी बच्चों के लिए रखनी चाहिए। उनको भी एक बार को आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए हम सब, हो सकता है कि आर्थिक स्थिति से इतने मजबूत ना हो कि किसी एक बच्चे को गोद लेकर के उसकी शिक्षा के लिए इतने पैसे दे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मार दें, थोड़ी सी उसे मतलब किसी चीज़ की जानकारी दे दें, उसे समझा दे कि सरकार अभी भी कुछ जगह पे ऐसा है, जो गवर्नमेंट स्कूल चलाती है कि 14 साल तक आपको मुफ्त पढ़ाई होती है, और भी कई सारी ऐसी स्कीम्स आई हैं, तो आप बच्चे को समझा सकते हो और उसे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझा सकते हैं। क्योंकि अभी हो सकता है उसके ऊपर बहुत मजबूरियाँ हो, पर उसे एक बेहतर रास्ता, एक अच्छे भविष्य के लिए आप दिखा सकते हैं, अगर आप उनकी फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते तो। हालांकि इन सारी चीज़ों पे तो हम बात करेंगे, लेकिन देखिए भाई सुन सहेली प्रोग्राम है और ये दोस्तों का प्रोग्राम है, दोस्तों के बीच में देखिए ऐसी बड़ों वाली बातें तो होती हैं जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मस्ती मजाक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप यानी हमारे दोस्त और हम आपके दोस्त आ चुके हैं आपके अपने प्रोग्राम में, जल्दी से आइए चैट बॉक्स में और हाजिरी लगाइए कि आज दिन है ट्यूसडे और ट्यूसडे को हम बात करते हैं बच्चों पे। बच्चों पे बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको मैं एक सस्पेंस के साथ भी छोड़ना चाहूँगी जो मैं बताऊँगी थोड़ी देर बाद। आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे कई प्रकार के होते हैं ना, हम हमेशा अपनी, क्योंकि देखिए हम इंसान हमेशा उन चीज़ों को पहले पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कि कौन सा बच्चा ठीक है कौन सा बेकार है, और अक्सर हमने ये भी सुना है कि ये जो कर रहा है बच्चा, ये इसकी पेरेंटिंग, इसके माता पिता ने जैसे इसकी परवरिश की है, तरबियत की है, ये उसका नतीजा है। आपको क्या लगता है ये सही है? और अगर ये सही है तो ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अंडर 18 हैं और वो बड़े बड़े क्राइम कर चुके हैं, बड़े क्राइम जिसमें चोरी, मर्डर, रेप ये सब भी आते हैं, तो क्या इसमें भी पेरेंटिंग का असर होता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को चोरी, चकारी, मर्डर, रेप ये सिखा रहे हैं करने को? क्या फ़र्क है, क्या सच्चाई है, और कैसे पेरेंटिंग असर डालती है? क्या माँ बाप चोरी करने को सिखा रहे हैं और क्या अंतर होता है? आप किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करें जिससे कि वो सही दिशा में जा पाए, उन सभी पे हम बात करेंगे। लेकिन एक लास्ट पे मतलब एक ब्रेक के बाद, उससे पहले चलते हैं हमारी आरजे अंशिका की तरफ, जो कि बहुत देर से अपने पेट में कई सारी बातें छुपा के बैठी हुई हैं।
0: पेट में तो छुपी हुई है और पेट में छुपी हुई बातों को देखिए सिर्फ सहेलियाँ ही पकड़ सकती हैं। तो आरजे आयुषी ने पकड़ लिया है कि मेरे पेट में क्या बात चल रही है। तो बता दिया जाए, तो बता देते हैं कि मेरे पेट में चल रही है एक बहुत ही प्यारी सी पोइट्री जो आप तक पहुंचने का इंतज़ार कर रही है, और मैं सोच रही थी कि मेरी सहेली की बातें ख़त्म हों और फिर मैं शुरू करूँ। तो आप सुना देते हैं? और
1: बिल्कुल, आज नाश्ते में ही अंशिका ने दो चार मिर्ज़ा गालिब खा लिए हैं, दो चार जो है शायर है उनको जो है कंज्यूम कर लिया, इसीलिए पोएट्री बोलने जा रही है। बिल्कुल,
0: तो चलिए सुनाते हैं, देखते हैं कि आपको पसंद आती है या नहीं। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वह है वक्त की रेत पर बचपन। खिलौने की बस्ती में वो परियों के देश, कहाँ खो गया वो सुहाना सा वेश। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, बहुत याद आती है बचपन की कहानी। मगर वक्त की दौड़ में भागते ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, दिल के हैं कच्चे, बस्ते में बोझ है, किताबों के साए हैं, मासूमियत इन्हीं में कहीं खो गई है। जिम्मेदारी का बचपन पर पहरा है, जिम्मेदारी का बचपन पर पहरा है, इनके चेहरे पे कोई गम अब गहरा है। हंसने दो इनको, इन्हें खेलने दो तुम, बचपन दोबारा नहीं मिलता है ये समझो तुम। ये वक्त रेत की तरह फिसल जाएगा, कल ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया बदल जाएगा। हाथ थाम लो बचपन का, हाथ थाम लो बचपन का, तभी जहान आपका संवरेगा। हमेशा अपने बचपन और मासूमियत को प्यार से रखो, हमेशा अपने बचपन और मासूमियत को प्यार से रखो, क्योंकि ये दिन वक्त की रेत पर कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि ये दिन वक्त की रेत पर कभी लौट कर नहीं आएगा।
1: वाह, क्या पोइट्री बोली है आपने, और मुझे लग रहा है पोइट्री से भी ज़्यादा दम आपके बोलने के अंदाज में था, क्योंकि लिख तो हर कोई लेता है पर बयां करने में, असली इमोशन लाने में, वो कहीं ना कहीं सबसे थोड़ी चूक हो जाती है, जो हमारी आरजे अंशिका ने बहुत ही अच्छी तरीके से आज किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, आपने इमोशन के साथ पोइट्री डिलीवर की। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँ कि देखिए भाई, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो जिनके घर में बच्चे होंगे वो इन चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे, तो जल्दी से आइए और मुझे बताइए कि आपके घर में किस उम्र के बच्चे हैं, क्योंकि अभी मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ वो तो बड़े छोटे और बड़े नादान बच्चे हैं। देखिए हम, क्योंकि अब हम बड़े हो गए तो हम सोचते हैं ये गंदे प्लेट में नहीं खाएंगे, अरे इसमें नहीं खाएंगे, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा प्लेट होना चाहिए, खाने में ऐसा होना चाहिए, और न जाने कितनी चीज़ें हैं जो हम लोग कर देते हैं। लेकिन कभी उस बच्चे को तरफ देखें जो अभी बहुत छोटा है, 1 से 1.5 साल के बीच में है, उसे ये बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपने क्या खाने में दिया है, क्या नहीं है, क्या क्या सा एनवायरनमेंट है, आप किस प्लेट में दे रहे हैं, किस चम्मच से निकाल रहे हैं, आप चाहे कितनी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें पेश कर दे, उसको बेहतरीन एक प्लेट ले आए, उसमें सजा के दे दे उसको, लेकिन उसे खाना ज़मीन पर गिरा के ही है। आप कभी अपने घर के बच्चों को नोटिस करिए अंशिका, आपने देखा होगा कि अगर आप उन्हें कुछ दे रही हैं खाने को तो वो पहले उस खाने को ज़मीन पर पलटेंगे और फिर ज़मीन से उठा उठा के खाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो मुझे लगता है कि ये जो नादानी है बच्चों की, ये एक बहुत ही अनमोल चीज़ है, क्योंकि बड़े होते होते ये मासूमियत हम कहीं ना कहीं खो देते हैं। और एक बहुत ही मशहूर शायर की एक लाइन है कि सबसे कीमती चीज़ जो होती है वो हमारी मासूमियत होती है, अगर वो खो जाए तो हमारी ज़िंदगी से एक बहुत बड़ा धन खो जाएगा।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आई थिंक ये सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा आयुषी, कि जब हम बचपन में आम तोड़ते थे, अमरूद तोड़ते थे या कोई भी ऐसी चीज़, और वो मिट्टी भी लगी होती थी तो हम तुरंत ऐसे कपड़े में ही उसको रगड़ करके और खा लेते थे। तब ये नहीं होता था कि इसको छीलो, इसको काटो और इसमें मुझे बिल्कुल धो करके दो, तब ये सब नहीं होता था, क्योंकि वो बचपन होता था। बचपन में तो लगता था कि बस मिल गया है तो लाओ खाएं। मैं अगर अपनी बात करूं तो हम लोगों ने आम बचपन में कभी काट कर नहीं खाए हैं, हमेशा कच्चा आम जब हम पेड़ से तोड़ते थे तो फोड़ करके खाते थे। मैंने पत्थर पे फोड़ के बहुत बार खाया है गांव में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें, वो मिट्टी में खेलना, वो शरारतें करना, और मतलब बहुत मज़ा आता था।
1: भाई देखिए, बच्चे होते ही बहुत एडवांस हैं। अभी किसी आप ऐसे बच्चों को देखें जो क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई वो नाली में गिरी बॉल को 3 टप्पे मार के वो साफ कर लेते हैं।
0: हाँ,
1: और वहीं अगर मम्मी को पता चल जाए कि अरे नाली के बॉल से खेला है, मम्मी ने तुरंत आपको निल्हा देना है और कहीं स्क्रबर घिस घिस के आपको साफ कर देना है।
0: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यही बचपन है, जब हम हमारी मासूमियत में ये नहीं देखते थे कि क्या गंदा है, क्या साफ होता है, क्या होता है, हमें बस मतलब होता था कि हमारी इंजॉयमेंट, हमारी खुशी, हमें क्या अच्छा लग रहा है, हम जो कर रहे हैं वो कितना। देखिए आजकल क्या हो गया है कि आजकल जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि देखो ये काम मत करो, ये पता नहीं सही है या गलत है या लोग क्या सोचेंगे, लेकिन एक बच्चे को आप देखिए कि वो ये नहीं सोचता है करने से पहले कि लोग क्या सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी सोच थोड़ी सी बच्चों वाली करने से कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा बहुत ज़्यादा फायदा होता
1: और है। मुझे लगता है कि ये जो एक लाइन आपने बोली कि लोग क्या सोचेंगे, उससे लोग क्या सोचेंगे, उसे सोचने से पहले आप ये सोचिए कि आज के 4 साल बाद या 5 साल बाद जब आप अपने 4-5 साल पुराने को आप देखेंगे, अब पीछे मुड़ के अपनी ही ज़िंदगी को देखेंगे, तो कहीं आपके अंदर ये मलाल ना रह जाए कि काश मैंने उस दिन अपने मन की कर ली होती, काश मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया होता, अपनी इच्छाओं को मार के आगे एक कह सकते हैं कि बहुत मैच्योर वाली ज़िंदगी। अब बार बार आज हम ये कह रहे हैं कि मैच्योरिटी ऐसी वैसी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैच्योरिटी बुरी चीज़ है, पर साइड बाय साइड आपकी जो इनर चाइल्ड है उसको भी आपको साथ लेके चलना है, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी आपने देखा है शिका कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ओल्ड एज में होते हैं लेकिन उनके अंदर की मस्ती अभी भी जवान रहती है।
0: बिल्कुल,
1: और ये लाइन आपने भी सुना होगी, जिसके अंदर की मस्ती जिंदा है उसकी हंसी हमेशा जिंदा रहती है। तो कभी भी अपने अंदर की मस्ती को ना मरने दें, बच्चे को ना मरने दें, क्योंकि भाई वो आपको ना तो सिर्फ खुश रखेगा बल्कि काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बचा लेगा, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और न जाने कितनी ऐसी बड़ी बीमारी है जिसे हम कैंसर कह सकते हैं, हार्ट डिजीज कह सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखते हैं, आप छोटी छोटी बातों को करके आप इतना खुश हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे घर में एक बच्चा है और वो उसको खुशी पता है इतनी छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है। अगर मैंने घर साफ़ किया है और कोई फूल का गुलदस्ता है उसको मैंने सीधा रखा है और मैंने बड़ी मेहनत से उसे रखा है,
2: जी,
1: उसे मज़ा आएगा उस गुलदस्ते को उल्टा करने में। और पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हुआ कि अरे यार मैं अभी साफ करके जा रही हूँ, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। लेकिन मैंने देखा कि ये इंसान बैठ के बस मेरे को नोटिस कर रहा है कि कब ये सीधा करके जाए और कब ये आके उल्टा कर दे, और उल्टा करके वो उसके चेहरे की जो खुशी है। मैंने कहा चल भाई तू आज ऐसे ही कर ले, मतलब कि ऐसा ही तुम उसको उल्टा ही रखे रहो।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बढ़ती उम्र में मस्ती की और खुश रहने की, तो एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो कि हमारे फिल्म स्टार सुपरस्टार राजेश खन्ना जी। आपने कभी राजेश खन्ना जी की मूवीज़ देखी होंगी तो वो हमेशा कहते थे कि लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए बल्कि बड़ी होनी चाहिए। उनकी जितनी भी मूवीज़ हैं उसमें हंसी, उनकी मस्ती, उनके जो एक्सप्रेशंस थे, उनकी अदाएँ, वो आप सभी ने देखी होंगी। तो कहीं ना कहीं एक उम्र की ढलान पर वो भी थे, लेकिन हमेशा खुश रहते थे और खुश रखना चाहते थे अपने आसपास के लोगों को। उन्होंने अपने बचपन को कभी मरने नहीं दिया, हमेशा उसको ज़िंदा रखा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे हमें। मेरा नाम जोकर जो मूवी थी उसमें आपने देखा कि तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास जो कि ये दिखाते हैं कि लाइफ में उस बचपने को हमेशा ज़िंदा रखिए। हाँ, मैच्योर आप रहिए क्योंकि मैच्योर रहना पड़ता है, कई ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, और यही मुझे भी लगता है कि देखिए ज़िंदगी सभी के पास है, अब जीना है या काटना है ये आपके हाथ में है। और ज़िंदगी को कुछ इस तरीके से लीजिए और आपको ये समझना होगा कि ये जो बीत रहा है ना, ये समय नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है, तो इसका भरपूर तरीके से आनंद उठाएं। इसी थॉट के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और खूब सारी बात करेंगे, मस्ती, मजाक, बचपन, बचपने, बच्चों के बारे में, और साथ ही साथ कुछ बड़े और बड़ों वाली भी बातें करेंगे, क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं, वो सब जानेंगे हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ब्रेक में हम जा रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस उठ के जाना है अपने फ्रिज तक, फ्रिज से निकालना है ठंडा ठंडा पानी और एक ग्लास में निकाल कर कुर्सी पे बैठकर आपको एक ग्लास पानी पीना है, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है और गर्मी में पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में, क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
9: तो अब तेरे दिल में रहेंगे, तुझे अपना कहेंगे कसम से, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।
10: भाई मैंने तो बस आपकी बातों को पूरा किया है, आपने कहा ना कि दिल में रहेंगे तुझे अपना कहेंगे, झूठी कहीं की
9: झूठी।
10: मुझे लगता है कि जितने लोग ये कहते हैं ना कि हम तेरे दिल में आ गए, तेरे दिल में रहेंगे, हाँ किराया नहीं देंगे लेकिन आप ही के दिल में रहेंगे, सब झूठ है भाई। इन सब चीज़ों पे भरोसा ना करें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बॉलीवुड को अपनी ज़िंदगी मान के बैठ जाते हैं, लेकिन भाई ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ कम फिल्मी नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी ज़िंदगी के कुछ समय तक यही सोचा था कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फिल्मों वाली है, बॉलीवुड ही टाइप की है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और तभी मेरी जिंदगी में मेरे पापा ने बताया, मतलब ऐसी नॉर्मल बात कर रहे थे मेरे से ही नहीं, पर मैंने उनके मुंह से सुना कि देखो एक फिल्म जो कि 3 घंटे की होती है, उसमें जीना भी होता है, मरना भी होता है, शादी, ब्याह, बच्चे, नौकरी सब हो जाता है, लेकिन क्या जिंदगी 3 घंटे की है?
9: बिल्कुल नहीं।
10: तो भाई जिंदगी तो जिंदगी है, वो फिल्म नहीं है, तो उसको जिंदगी की तरह काटें, उसी की तरह देखें और उसी की तरह इंजॉय करें, बल्कि मूवी को नहीं समझना चाहिए अपनी जिंदगी।
9: ये तो बहुत ही अच्छी वाली एक बात आज पता चल गई कि मूवी को कभी अपनी लाइफ नहीं समझनी चाहिए, बिल्कुल नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि मूवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लाइफ में सच मान लेते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
10: बिल्कुल। तो भाई आज हम बच्चों पे बात कर रहे थे और मैंने आपको भी बताया कि भाई आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम बात करने वाले हैं कि देखिए बच्चे जो होते हैं वो क्रिमिनल भी होते हैं, बच्चे पढ़ लिख के बहुत अच्छा अचीव भी करते हैं, कुछ बच्चे भीख मांगते हैं जिनके पास, जो बहुत ज़्यादा गरीब घर से होते हैं जिनके पास सही से रहने खाने की जो है चीज़ें नहीं मौजूद होती हैं, तो बच्चे तो कई प्रकार के आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्या उनकी पेरेंटिंग में भी डिफरेंस होता है? क्योंकि देखो माँ बाप तो क्रिमिनल बच्चे के भी होते हैं, माँ बाप तो एक ऐसे बच्चे के भी होते हैं जो बहुत छोटी उम्र से कमा रहा है खुद से, और माँ बाप उस बच्चे के भी होते हैं जो एक अच्छी एजुकेशन ले रहा है, अपनी ज़िंदगी के लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस कर रहा है। तो आखिर क्या ऐसी डिफरेंस है, क्या पेरेंटिंग में गलती हो रही है जो आपके बच्चों का दिमाग थोड़ा सा क्रिमिनल साइड चला जा रहा है? काफ़ी लोग ने आजकल देखा होगा कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एंगर इशू हो गया है। आप छोटे से बच्चे से अगर उसका बस आप अपना ही फ़ोन अगर उस बच्चे से छीन ले रहे हैं या फिर मांग ले रहे हैं, बच्चा तहलका मचा देगा पूरे घर में कि फ़ोन कैसे छीन लिया, और इतना रोएगा इतना चीखे चिल्लाएगा जब तक आप उसे फ़ोन ना दें। तो ऐसा क्या हो गया है, क्यों हमारे एनवायरनमेंट में जो आजकल बच्चे हमें आसपास दिख रहे हैं वो इतने ज़्यादा आक्रामक हैं? तो चलिए इन बातों को शुरू से समझते हैं, क्योंकि देखिए शुरू से अगर हम नहीं समझेंगे तो हम जान नहीं पाएंगे कि गलती हमारी हो कहाँ पे रही है। देखिए साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसको हम कहते हैं लिबिडो। लिबिडो होती है हमारी इंस्टिंक्चुअल एनर्जी, ये एक तरीके की आप समझ लीजिए कि एक एनर्जी होती है जो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। अब अगर ये ना हो तो हम अपनी नीड्स नहीं पूरी कर सकते, जो हमारी ज़रूरतें हैं बुनियादी ज़रूरत उसे हम नहीं पूरा कर सकते हैं, हमारे जो आगे वंश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो हम क्रिमिनल बन जाएंगे, अगर हमारे उस पर कंट्रोल नहीं है तो हमें कोई नहीं रोक सकता क्राइम करने से। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको कंट्रोल कर ले जाती हैं। देखिए हर इंसान के अंदर तीन इंसान वास करते हैं, ऐसा आपने सुना है कभी?
9: नहीं,
10: लेकिन मैं बताती हूँ कैसे। देखिए हमारे बहुत ही मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, जिनका नाम है सिगमंड फ्रॉयड। उन्होंने ये बताया कि इंसान के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, जो होता है ईगो, इड और सुपर ईगो। देखिए एक इड जो होता है हमारे ज़िंदगी में हमारे जीवन में वो हमें कहता है कि बस करो। इसको मैं आपको एक उदाहरण के रूप से समझाती हूँ, आप बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कोई आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है,
9: मान लिया, और वैसे मुझे पसंद भी है।
10: अच्छा, और आपको आइसक्रीम खाना है तो एक तो मन कहेगा आपका कि जाए छीन के खा लें, अब मुझे खानी है, मेरे को मैं छीन लूंगी लेकिन मैं खा के रहूंगी इसको।
9: बिल्कुल,
10: तो ये आपके अंदर का इड बोल रहा है, जिसे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, नो मैटर कि वो कितनी मॉरली गलत है, चाहे आपको चोरी करनी पड़ रही है, चाहे आपको मर्डर करना पड़ता है, बस आपके दिमाग का वो गोल है कि आपको आइसक्रीम चाहिए।
9: ओके,
10: ठीक है, तो वो आपके अंदर की इड की एनर्जी है। और वहीं आपका सुपर ईगो होता है जो आपके मन में कहता है कि आपको आइसक्रीम तो चाहिए, पर मैं बहुत मोरली तरीके से देखा जाए तो आइसक्रीम खाना भी दांत के लिए बेकार है, अब मैं जाऊंगा पहले मैं इनसे परमिशन लूंगा। अब वो कुछ ज़्यादा ही मोरल वैल्यूज़ की तरफ पहुंच जाता है कि इनके पहले पैर छूं, फिर इनसे मांगूं मैं, फिर ये मेरे से पैसे कहेंगे, फिर मैं इनको पैसे कमा के दूंगा, तब मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो वो कुछ ज़्यादा ही मोरल साइड हो जाता है। लेकिन जो आपका ईगो होता है वो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है, आपको आइसक्रीम चाहिए आप आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन एक जो सही तरीका है उससे आप जाएंगे आइसक्रीम की डिमांड करेंगे, वो आपसे पैसे कहेंगे, आप उन्हें पैसे देंगे और आइसक्रीम लेके आप खा लेंगे। तो ये हमारे जो बॉडी के अंदर है ये तीन सभी के अंदर होता है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि इन सभी के बीच में बैलेंस बनाना। देखिए हम सब जानते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा मासूम होता है, जैसा भी हम जिक्र कर रहे थे, उसके दिमाग कहते हैं ना, आपने अपने घर के बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि बच्चे बिल्कुल कच्चा घड़ा होते हैं, उसे आप कैसे फ्रेम कर रहे हैं वो आपके ऊपर आपकी पेरेंटिंग पे निर्भर करता है।
9: बिल्कुल,
10: कि आप उनकी अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि बच्चों को हमेशा एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखें, उनके आसपास झगड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ मीन चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि माँ बाप के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर की स्थिति ठीक नहीं है और उसका असर बच्चों पर हो रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अगर आपकी स्थिति नहीं है अच्छे स्कूल में पढ़ाने, अच्छे स्कूल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ाने का, तो आप सोचेंगे कि ये तो कह रही हैं एक्सपेंसिव स्कूल में, जी नहीं। चीज़ें एक होती है हमारी ज़रूरत और एक होती है हमें, मतलब हमें एक चाहिए, एक होती है हमारी नीड्स, एक वांट होती है जो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चे के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होते हैं हमारी वांट कि हमारा बच्चा बिल्कुल ए क्लास एकदम सुपर एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ेगा, तो वो हमारी वांट में कंसीडर होती है। तो बेसिकली बस कहने का मतलब ये है कि जो भी आप बच्चे को बताते हैं, जो वो आपके आसपास देखता है और आपका रिएक्शन देखता है उस पर, तो वही चीज़ें उसके आगे आने वाले बिहेवियर को, पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं फ्रेम करती है। अगर आपके घर में बच्चे ने ये देखा है कि मारपीट बहुत कॉमन है, मारपीट के बारे में जिक्र हो रहा है, मान लीजिए अगर मेरा कोई घर है और मेरा बच्चा है, ठीक है, और मैं उसको हमारे घर में बातें क्या हो रही हैं कि नहीं यार बंदूक चलाएंगे, इनको मारेंगे, अरे इनको मार डालना चाहिए था इसने काम पे, इनकी मर्डर कर देना चाहिए था, तो वो चीज़ें बच्चा सुन रहा है, उसके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर हो रही हैं। अगली बार क्या होगा, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें स्टोर होंगी और कहीं उसके साथ भी किसी ने लड़ाई झगड़ा किया या कुछ कह सकते हैं नॉर्मल गर्मा गर्मी सी हो गई ना, तो उसको यही आएगा कि अरे मार देंगे क्योंकि हमारी मम्मी कह रही थी कि हम मार सकते हैं।
9: राइट,
10: भले ही आप वो कर नहीं रहे, आप सिर्फ, आपको लग रहा है कि हम बातों बातों में बोल रहे हैं, पर वो चीज़ें उस बच्चे की मेमोरी में स्टोर हो गई हैं कि हम मार सकते हैं। और अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं तो वो उसकी इंस्टिंक्चुअल एनर्जी के वजह से आ रही हैं कि वो ये कर सकता है। अगर वो नहीं है तो फिर आपकी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं हो पाएंगी, और बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपके जो बिहेवियर है उसमें क्राइम कहीं ना कहीं आ जाएगा। और यही एक डिफरेंस होता है क्रिमिनल बच्चों में कि उनको चीज़ें मॉरली थोड़ी कम समझाई गई हैं। मॉरल्स इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये बच्चों को बताने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में भी लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले कुछ देखता है, किसी से सीखता है तो वो आप ही हैं, यानी अपने पेरेंट्स को देख के सीखता है। तो कोई भी छोटी से छोटी बात हो, उसको बात बताने से पहले आप ये सोच लें कि आपके अगल बगल एक बहुत छोटी सी जिंदगी है जो आपसे सब कुछ सीख रही है। अगर उसने आपसे सीखा है, आपसे सुना है कि आपके लिए क्राइम बहुत नॉर्मल चीज़ है और वो कर लेगा, आपको एक मैं और बहुत इजी उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल नेता है अंशिका, ठीक है,
9: मान लिया
10: आपके घर में एक बच्चा है और वो ये आपसे सुन रहा है कि अरे भाई मार धाड़ बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम तो मार लेंगे और कल को अगर किसी पे केस हो जाता है तो हम छुड़वा भी लेंगे, हमारे तक दबदबा है। तो आप किसी और से बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में क्या पता चल रहा है कि जब मेरी मम्मी दूसरे को बचा सकती हैं तो अपने तो बच्चे को तो बचाएंगी तो मैं भी क्राइम करूँगा। और एक बार क्राइम होने से जब इंसान को ये हो जाता है ना कि मेरे को बचाने वाला है कोई इसमें,
9: तो वो और ज्यादा फोकसली उसको करता है।
10: जी, तो कुछ भी करें तो उन चीजों को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करें, क्योंकि जैसे एक घड़े में होता है, एक मट्टी कच्ची मिट्टी में होता है कि जरा सा अगर उंगली गड़बड़ाई तो पूरा शेप बिगड़ जाएगा, और उसी तरीके से एक बच्चे का जीवन होता है, जरा सी चूक उसकी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है।
9: बिल्कुल सही कहा आपने आयुषी। और अभी जल्दी में आप सभी ने भी सुना होगा, और आई होप आयुषी ने भी सुना होगा कि एक न्यूज़ आई थी जिसमें दो दोस्त थे और दोस्तों ने छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ और दोनों दोस्तों ने ही, उसमें से एक दोस्त ने अपने दोस्त की जान ले ली, और बहुत ज़्यादा उसकी एज नहीं थी, मेरे ख्याल से 14 या 15 या 17 तक उसकी एज थी जिसने उसको गोली मारी। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि दोनों दोस्त थे और बहुत छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हुआ और बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक ने दूसरे की जान ले ली। तो कहीं ना कहीं जैसा अभी आयुषी ने आपको बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें अपने बच्चे के सामने वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे एक बार बच्चा कोई गलती करता है, मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं और कई बार छोटे बच्चे गाली सीख लेते हैं देना, एब्यूज़ वर्ड्स सीख लेते हैं, मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में कोई एब्यूज़ चीज़ें यूज़ करता हो और उन्होंने सुन लिया हो सीख लिया हो, वो बाहर से सीख लेते हैं
10: जी।
9: और कई बार मान लीजिए मैं जब बहुत छोटी थी, आई थिंक 8th क्लास में थी 9th क्लास में, तो मेरे प्रिंसिपल थे स्कूल के जहाँ मैं पढ़ती थी, तो उनका छोटा बच्चा था, तो उसने एब्यूज़ वर्ड कहीं से सीख लिया था, किसी से सुन लिया था, और एक दिन उन्होंने पता नहीं अपने बच्चे से क्या कहा तो उसने वही एब्यूज़ वर्ड उन पे यूज़ कर दिया, क्योंकि वो छोटा था 3-4 साल का, तो उसको नहीं पता था 5 साल का कि वो क्या होता है, मतलब उसके क्या मीनिंग है
10: जी।
9: लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत कस के उसको वहीं पे तमाचा मारा, 2-3 तमाचे मारे, और उसके बाद जब वो बहुत रोया और फिर शांत हो गया, तो जब शांत हुआ तो उनके भाई ने बोला कि ये आपने क्या किया, इतना छोटा बच्चा है उसको तो उसका मीनिंग भी नहीं मालूम है और आपने कस के 2-3 तमाचे मार दिए उसे। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, कि आज जब मैंने उसको 3-4 तमाचे मार दिए उसकी गलती पे, तो उसको ये एहसास होगा, भले छोटा बच्चा है लेकिन उसके मन में ये एहसास होगा कि मैंने गलती की इसलिए मुझे मार पड़ी है। तो इसी तरीके से अगर बच्चा कोई गलती या कोई गलत चीज करता है तो ये कहने की बजाय कि अरे नहीं नहीं बेटा हम तुम्हें बचा लेंगे, या उसको पैम्पर करने की बजाय वहाँ उसको मारिए, उसको डांटिए, उसको समझाइए कि वो गलत है, क्योंकि अगर आप उसकी गलती पर पर्दा डालेंगे तो वो उन्हीं गलतियों को और तेजी से दोहराएगा।
10: बिल्कुल, यही चीज जो है ये एक लर्निंग में भी कॉन्सेप्ट है कि इसे हम रिवॉर्ड लर्निंग भी कह सकते हैं, कि जो बच्चे को अपने काम से रिजल्ट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता भी। अगर उसको उस काम के बदले डांट पड़ी है तो आइंदा वो बच्चा नहीं करेगा,
9: राइट।
10: लेकिन अगर उस काम के बदले उसे ये जरा सी भी प्रोत्साहन मिल रही है, जरा सा भी उसको सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसके दिमाग में यही होगा कि मुझे भी, क्योंकि देखिए सपोर्ट हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है उसे गिफ्ट मिले, हर कोई चाहता है उसे अच्छा रिवॉर्ड मिले, तो काम भी वो इंसान ज़रूर दोहराएगा। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ पर थोड़ी सी सख्ती भी ज़रूरी है। थोड़ी सी सख्ती, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी अच्छे से उसको पीट देना है,
9: नहीं नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है
10: जी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कई लोगों को मैंने देखा है कि बच्चों को, देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज़ों को लेकर के, कि मम्मी ये क्या हो रहा है, मम्मी ये क्यों हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन बैंक बन जाते हैं। अब हम मज़े के लिए उन्हें कभी कभी पूरी चीज़ें एक्सप्लोर करने ही नहीं देते हैं, कभी कभी हम लोग उसे थोड़ा सा गलत बता देते हैं,
9: राइट,
10: जिसकी वजह से उस बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें बस जाती हैं। देखिए अगर मैं आपको एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण दूँ तो एक बहुत ही अच्छी मूवी है, अच्छी OTT सीरीज़ है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर मैं आपको बताती हूँ कि उससे मैंने जो सीखा था कि उसमें उससे मतलब एक पिता थे, उससे उनके बच्चे ने बोला कि पापा सिगरेट क्या होती है। उन्होंने कहा कि ये एक टाइप का नशा होता है। तो उसने कहा मुझे पीना है। अब आपको लगेगा कि भाई अगर उसने अपने पिता से कहा है तो पिता ने ज़ोर से एक कान के नीचे रखा होगा कि तुम सिगरेट पियोगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ पीते हैं लोग और पीना है तो पियो, लेकिन उसके बाद ये रिज़ल्ट होंगे। रिज़ल्ट उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हें कैंसर हो जाएगा, तुम्हारे अंदर नशे की लत लग जाएगी, तुम उसके लिए पागल होने लग जाओगे, तुम्हारा खुद पर कंट्रोल नहीं होगा। अब बच्चे को क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आखिर सिगरेट पीने के बाद होगा क्या, इस वजह से इस गलत, क्योंकि उसने वो सिगरेट इसलिए नहीं पी क्योंकि उसको पहले से बता दिया है कि इसके कंसीक्वेंसेस क्या क्या होंगे। इसीलिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बच्चे को ज़रूर दें, उनकी क्यूरोसिटी को दबाए नहीं बल्कि उसे एक बेहतर रिजल्ट दें,
9: राइट। इस पॉइंट पे एक पॉइंट और कहना चाहूँगी कि कई बार हम चीज़ों को छुपाते हैं, जैसे हमारे घर के जो बच्चे होते हैं उनके साथ हम कई बार कई चीज़ों को छुपाते हैं। जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है या कोई न्यूज़ हम क्रिमिनल ऐसी देख रहे होते हैं और बच्चा हमारा पूछ लेता है कि पापा ये क्या है और ये क्यों हुआ, तो हम उससे कहते हैं नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं है, अरे वो तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, तुम रहने दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है भरे क्रिमिनल चीज़ों के बारे में ही, क्योंकि आजकल बच्चे इतना एक्टिव हो गए हैं माइंडली कि मेंटली कि वो कहीं ना कहीं मोबाइल पर देख के और बाकी चीज़ों में देख करके वो क्वेश्चन करते हैं, तो उनके उस क्वेश्चन के आंसर करिए ताकि वो जाने कि वो चीज़ें होती क्या हैं।
10: बिल्कुल,
9: आपसे नहीं जानेंगे तो किसी और से जानने की कोशिश करेंगे और हो सकता है उन्हें गलत जानकारी मिले, इसलिए अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप ही उनके सवालों का सही और सटीक जवाब दीजिए ताकि वो सही दिशा में जाएं, गलत दिशा में ना जाएं, क्योंकि सही दिशा में जाना ले जाना भी हमारे ऊपर है और गलत दिशा में ले जाना भी हमारे ही ऊपर होता है। कई बार हमारी ही एक्टिविटी कुछ ऐसी हो जाती है कि बच्चा वही सीख करके गलत दिशा में जाने लगता है, इसलिए अगर उसमें सुधार चाहते हैं खुद में भी सुधार करें।
10: बिल्कुल, और जो लोग अब ये सोच रहे होंगे कि नहीं भाई हमारा बच्चा तो आक्रामक है, अब हम क्या करें, कहीं हमारा बच्चा भी बड़ा हो गया कोई क्रिमिनल ना बन जाए, अभी इन्होंने कहा, देखिए गलतियां सभी से होती हैं, आपसे भी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलतियां सुधारी नहीं जा सकती हैं, सुधारी जा सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपना के अपने अंदर सुधार करके और उसका रिजल्ट अपने बच्चों के अंदर भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा आक्रामक है तो थोड़ी तो सख्ती रखिए, लेकिन साथ ही साथ उसको कुछ चीज़, क्योंकि देखिए जब हमारे अंदर गुस्सा जन्म लेने लगता है, वो उभरने लगता है और फैलने लगता है, तो हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस भी होने लग जाते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहे हैं तो आपका माथा गर्म हो जाएगा, किसी का हाथ कांपने लग जाएगा, किसी का मुंह सूखने लग जाएगा और बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस जो है वो बॉडी देती है। तो जब आप देखेंगे आपके बच्चे में एंगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप उन्हें कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ उन्हें पूजा पाठ में लगा दें। मैं पूजा पाठ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि उसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाएं, मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि कुछ उसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब है आप उन्हें ध्यान कराएं। ये किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, ये हर धर्म के लोग कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करना, सही सीख देना, चाहे आप कुरान से दे रहे हो, गीता से दे रहे हो, बाइबल से दे रहे हो या कहीं से भी दे रहे हो, एक सही सीख बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसको सुधारने के साथ साथ आपको खुद में भी सुधार करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक आपकी तरफ से हुई है। और अपने बच्चे को बिठा के एक सही ढंग से उसे समझाना है, डांटना नहीं है उस वक्त, आपको समझाना है। क्योंकि जैसे वो बच्चा आपको देख के ये सीख गया कि ये करना है, वैसे ही आपके अंदर सुधार देख के वो ये सीख जाएगा कि कैसे हमें खुद को सुधारना है।
9: बिल्कुल, कहते हैं कि अपना सुधार जग का सुधार। इसलिए अगर बदलना है, कुछ अच्छी चीज़ें ट्राई करनी है, तो सबसे पहले अपने घर और अपने ऊपर ट्राई करिए। क्योंकि जब हम बदलेंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें भी बदलेंगी, और कहीं ना कहीं एक बच्चा भी बदलता है, और धीरे धीरे पूरा समाज कहीं ना कहीं एक इंसान से बदल जाता है। बस एक को वो बदलाव शुरू करने की ज़रूरत है।
10: बिल्कुल, और ये ज़रूर अपने बच्चों को और ख़ुद के अंदर भी ये चीज़ें डालें कि अगर कोई गलती हुई है तो या तो उसको सुधारा जा सकता है अगर गलती छोटी है, लेकिन अगर गलती बहुत बड़ी है जो कि अब लॉ के अंदर आ जाती है, कानून उसे देखेगा, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट होती है। उसमें कोई सफाई नहीं होती, कोई ये नहीं होता कि हाँ भाई ले दे के बात कर लेंगे, अरे हम सुलझा लेंगे, हम समेट लेंगे मामला। क्योंकि ये जो मामला समेटने वाली चीज़ है ना, ये बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती है।
9: Right.
10: और हो सकता है कि आज जो आप मामला समेट रहे हो, कल को आपको 10 मामले आपके बच्चे की तरफ से मिल जाएं।
9: बिल्कुल, सनी देओल जी की एक मूवी थी, आई थिंक वो मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, तो उस मूवी में उन्होंने पुलिस ऑफिसर का रोल किया था
10: जी।
9: और एक सीन में उन्होंने बोला था कि जेब काटने वाला अगर आज लोगों के गले काटने लगा तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी वो चीज़ें कहीं ना कहीं, उनका कहने का सेंस ये था कि कहीं ना कहीं अगर छोटी सी क्राइम, छोटी चीज़ों से शुरू करके क्राइम करने वाला आज बड़े बड़े क्राइम करने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि समाज ने उसे उस वक्त नहीं रोका, लोगों हाँ। उसके पेरेंट्स ने उसे उस वक्त नहीं रोका जब वो छोटे छोटे क्राइम कर रहा था, तब उसे प्रोत्साहित किया गया, उसे बचाया गया, और उसी की वजह से आज उसे इतना ज़्यादा आगे वो बढ़ गया है कि बड़े बड़े क्राइम्स करने लगा। तो कहीं ना कहीं उसकी इस गलती के लिए समाज रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके पेरेंट्स उसके अपने रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
10: बिल्कुल, अब आपने अंशिका ये देखा होगा कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, जो हमारे मोहल्ले की अगर हम बात करें, तो अगर मोहल्ले में हमारी दो आंटियां रह रही हैं, तो आपको तो ये तो पता होगा कि आंटियों की लड़ाई यानी दो बिल्लियों की लड़ाई होती है।
9: हाँ, ये तो पता है।
10: अगर एक के बच्चे ने दूसरे के बच्चे को पीट दिया और वो अपने घर जाके ये बोलेगा कि मम्मी मैंने उसे पीट दिया क्योंकि उसने मेरे को पीटा था, तो मम्मी क्या कहेंगी, बहुत अच्छा किया तुमने, करना चाहिए था, उसके बच्चे की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की। तो कहीं ना कहीं आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उस बच्चे के अंदर ये डाल रहे हैं कि नहीं बेटा, मारपीट करना ठीक है, अगर कोई तुम्हें मार रहा है तो तुमने उसे अच्छे से मार दिया है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करें। और इसके बाद भी आंटियाँ क्या करती हैं कि अगर उसकी मम्मी आपके बच्चे को डांटने भी आई हैं, तो आप उनकी मम्मी से लड़ने लग जाती हैं कि अपने बच्चे को कंट्रोल में रखो, मेरा बच्चा क्यों करे। तो ये बच्चों के अंदर यही धारणा आती है कि मेरी मम्मी ने तो मेरा बचाव कर लिया है, और मेरी मम्मी ने ये कहा है कि तुम कंट्रोल करो, अपने बच्चे को कंट्रोल करो, उन्होंने मेरे को कंट्रोल करने को नहीं बोला है, यानी कि मैंने जो किया है वो सही है।
9: और ये धारणा किसी भी बच्चे के अंदर कभी नहीं आनी चाहिए कि गलत काम सही है। क्योंकि अगर एक बार मन में ये बैठ जाता है ना कि गलत काम सही है, या आप उसके मन में ये डाल देते हो कि तुम कुछ भी करो बेटा, हम हैं तुम्हारे लिए, हम तुम्हें बचा लेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, कभी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए गलत काम करने पर सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत काम करने पर जब सज़ा मिलती है तो ये समझ में आता है कि हमने गलती की, और गलती करने पर जब बचाव कर लिया जाता है तो हमें लगता है हमने कोई गलती नहीं की। इसलिए ज़रूरी है सज़ा भी दें और समझाएं भी, दोनों। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, और सॉन्ग के उस पार आते हैं आपके लिए कुछ और बातें लेकर। तब तक के लिए आप सोचिए कि हमने जो कुछ भी आपको बताया है वो कितना सही है और आपका उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म।
2: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए? जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
3: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
7: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली, जिसमें कि आपकी दोनों सहेलियां जो हैं वो आ गई हैं। और चलिए अब सीधा चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है हमारी मॉरल स्टोरी का। लेकिन आज मॉरल स्टोरी बताने से पहले एक सवाल है, और सवाल का जवाब जो देगा ना फिर ही मैं मॉरल स्टोरी बताऊंगी। तो आयुषी, आपको पता है सवाल क्या है?
1: आप बताइए, मैं तो जवाब देने का सोच रही हूँ।
0: ओके, तो मैं सवाल पूछती हूँ कि ये बताएं कि वो कौन से भगवान हैं कि जिन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है।
1: रणछोड़?
0: उनका एक नाम ये भी है,
1: किशन जी।
0: अरे वाह, बहुत ही 200% करेक्ट जवाब दिया आपने कि हमारे कृष्ण भगवान जो हैं उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी भी है जो कि आज हम बच्चों को बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि हर बार लड़ना ही ज़रूरी नहीं होता। कई बार आपका आप उस स्पॉट को छोड़कर चले जाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज भगवान कृष्ण की लाइफ से मोटिवेट ये कहानी मैं बच्चों को सुनाना चाहती हूँ ताकि वो सुने और समझें। तो चलिए बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जो थे, और सभी जानते हैं कि अर्जुन और कृष्ण में बहुत गहरी दोस्ती थी। तो भगवान कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, सुभद्रा को द्वारका पहुंचाने के लिए अर्जुन उनके साथ जा रहे थे। मतलब उन्होंने कहा, उनकी जो कुंती थी उनकी माँ, उन्होंने कहा कि अर्जुन आप जाएं और सुभद्रा को आप द्वारका तक छोड़ आइए, भगवान श्री कृष्ण के पास उन्हें सकुशल पहुंचा आइए। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनको पहुंचाऊंगा। तो जब वो लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में अर्जुन को एक राक्षस मिला जिसका नाम था काल्यावन, और काल्यावन को ये एक अवतार मिला हुआ था कि वो सिर्फ किसी ऋषि की अग्नि से ही भस्म हो सकता है, यानी कि किसी ऋषि की आँखों से जो अग्नि निकलेगी वो सिर्फ उसी से भस्म हो सकता है, बाकी ना उसे कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी उसे मार नहीं सकता है, वो अजर अमर है। तो जब कृष्ण को वो मिला और वो सुभद्रा को लेकर जाना चाहता था, कृष्ण से बदला लेना चाहता था, तो जब अर्जुन ने बहुत अपने तीर चलाए, बहुत अपनी विद्या का प्रयोग किया, बहुत कोशिशें की उसे हराने की कि वो हार जाए और मैं सुभद्रा को बचा लूँ, लेकिन अंत में अर्जुन का कोई भी वार उसके ऊपर काम नहीं आया। अब वो बड़े परेशान थे कि मैं क्या करूँ कि ये हार जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई उसका उनको रिजल्ट नहीं मिला। कुछ टाइम बाद जब बहुत कोशिश करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो सुभद्रा ने भगवान कृष्ण का नाम लिया, और भगवान कृष्ण अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए वहाँ आ गए, और उन्होंने अर्जुन से कहा कि ये ना तुम्हारे तीर से मरेगा ना मेरे चक्र से, इसे मारने का एक ही तरीका है। तो उन्होंने अर्जुन ने पूछा कि क्या किया जाए, तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरे साथ भागो। तो अर्जुन ने कहा कि अगर हम इसे छोड़कर भाग जाएंगे, इसका सामना नहीं करेंगे, तो सब यही समझेंगे कि हम इससे लड़ना नहीं चाहते और हम में उतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं इसके साथ लड़ाई कर सकें। तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि हर बार लड़ना ही नहीं होता, कई बार उस जगह से हट जाना भी आपको बचाता है, आप मेरे साथ भागिए। तो वो उनके साथ भागे, वो दोनों बहुत दूर तक गए, और जहाँ पे एक ऋषि की गुफा थी वहाँ जाकर के दोनों रुक गए। जब काल्यावन ने उन्हें वहाँ देखा तो वो भी उनके पीछे अंदर चला गया गुफा के, और वहीं रुक गया। और वहाँ जाकर उसने देखा कि एक ऋषि जो थे वो लेटे हुए थे, मतलब उन्होंने चादर ऊपर से ओढ़ रखी थी। तो उसे लगा कि भगवान कृष्ण उस गुफा में छुपे हुए हैं, उसने जाकर के वो चादर हटाई और कहा उठ उठ उठ, तू यहाँ छिपा बैठा है। और वो ऋषि जो थे वो वर्षों से अपनी आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से अग्नि निकली और काल्यावन उसमें जल करके भस्म हो गया। तो जब उन ऋषि ने जब भगवान कृष्ण सामने आए तो ऋषि ने उनसे पूछा कि ये क्या, ये कौन था जो मेरी अग्नि से भस्म हो गया? तो भगवान कृष्ण ने बताया कि शायद आपकी अग्नि से भस्म होना ही इसकी किस्मत में था। और इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि देखिए, अभी हम बात कर रहे थे ना गुस्से की और एंगर की, बच्चों में आजकल आक्रामकता बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये आक्रामकता इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें सामने वाले को बस जवाब देना है। लेकिन जब भी आपको गुस्सा आए या किसी के साथ कोई अनबन हो तो कुछ देर के लिए उस जगह से, उस स्पॉट से आप हट जाइए, फिर जब आप कुछ टाइम बाद सोचेंगे तो शायद आपको लगेगा कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिस पर आपने झगड़ा कर लिया। तो अपने गुस्से को काबू करें और थोड़ा सा वहाँ से हट जाए, क्योंकि हर बार भागने में ऐसा नहीं होता कि बुजदिली होती है, कई बार कई जगहों से हटने में हमारी समझदारी भी होती है, क्योंकि जो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है वो हमारे हट जाने से हो सकता है, हो ही ना, चीज़ें सॉल्व हो जाएं।
1: तो हम ये भी कह सकते हैं कि भागना भी हमारी एक लड़ाई है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर वो भागते नहीं तो वो मरता कैसे,
0: और अगर वो मरता नहीं तो वो सुभद्रा को बचाते नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को एक नहीं बल्कि कई सारे नामों से हम बुलाते हैं, लेकिन उनके हर नाम के पीछे एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक सीख छुपी हुई है। फिलहाल हमारा टाइम हो गया है, बातें करते करते बिल्कुल पता नहीं चला लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और हमारे जितने भी लिसनर्स चैट बॉक्स से, रेडियो गार्डन से, फ्रीक्वेंसी से हमें सुन रहे हैं, सभी के लिए इतना ही है कि अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
8: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
9: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
10: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑल्टस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
11: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: विजिट करें ऑल्टस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
12: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
13: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
12: और जेंट्स के लिए?
13: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
12: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा। और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
13: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: अरे सुना
14: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
14: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
15: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।

हाँ जी श्रोताओं, तो एक बार पुनः से हाजिर हूँ मैं आप सभी के पसंदीदा प्रोग्राम के साथ में, जिसका नाम है फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और काफी सारी कॉल्स आना शुरू हो गई है, तो मैं कुछ कहूँ उससे पहले बता देते हैं आपको आपके अपने स्टूडियो का नंबर वही है 6393316429, यानी के 6393316429। जी हाँ, कॉल करिए, अपने डिमांड्स, अपनी फरमाइश, अपनी पसंदीदा नगमों को हम तक पहुंचाएं ताकि हम उसको ट्यून कर पाएं और शो को बना पाएं सुपर डुपर हिट। फिलहाल आज भी दिन है मंगलवार, मंगलवार यानी कि लंगर वाला वार। हाँ जी, लंगर वाला वार है, मतलब कि आज भी भंडारे काफी जगहों पर लगे हुए हैं। और मैं आती गई, रास्ते में 3-4 से 5-6 लंगर मैंने छोड़े, और उसके बाद में मैंने एक गाना जहन में सुना और सोचा। वो गाना था छोड़ आए हम वो गलियां जहां लंगर बटा करते थे। फिलहाल मैं चाहूंगी कि आप वो लंगरों का आनंद उठाएं, क्योंकि हमारी तबीयत कुछ दिनों से नासाज चल रही है, इस कारणवश हम प्रसाद ग्रहण नहीं कर पा रहे। लेकिन जाते जाते जरूर एक आध दाना अपने मुंह में डालेंगे, क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद होता है। और एक बात और, आज हम चाहते हैं कि हम अपने बजरंग बली से थोड़ी सी अरदास लगा लें, थोड़े से दरखास्त लगा लें। तो चलिए फिर आज के शो की आगाज करते हैं हम अपने बजरंग बली के इस बहुत ही प्यारे से भजन से। भजन वही वाला है जो बचपन से आज तक आप सुनते आए हैं, और इस भजन को सुनते ही कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं उमड़ घुमड़ के बजरंग बली से प्रार्थना करने पे लग जाती है। तो चलिए मिलके सुनते हैं ये प्यारा सा भजन आपके अपने शो, जी हाँ, फोनी फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा के साथ में। और मैं हूँ आपके हुसैन दोस्त आरजे आकांक्षा, और आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिल्कुल कॉलर ट्यून गोंडा। एंजॉय करते हैं इस बजरंग बली वाले प्यारे से लूफी वाले फील वाले सॉन्ग यानी भजन को। आइए आनंद उठाते हैं, पर आते हैं आज की पहली डिमांड के साथ।

हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। हर बार बस एक ही प्रार्थना होती है, विनती सुन लो। और विनती में होता ही क्या है, क्या ही हो सकता है, बस अपने श्री चरणों में थोड़ी सी जगह देना, इससे ज्यादा नहीं। और हाँ, एक प्यारी सी लाइन आई हमारे पास में इट्स कुमार साहब के एमपी रीवा से, पवन तने संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।

ओहो क्या बात, मजा आ गया। थैंक यू सो मच डियर लिसनर्स। और विकास जी का लगातार हम पे हमारे पास कॉल आ रहा है। विकास जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो आप चैट बॉक्स में अपने गाने को मेंशन कर दीजिए। आपकी साइड से आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू है, बस इतनी सी बात थी। चलिए चलते हैं आज की पहली डिमांड की ओर। गाना तो भाई इतना प्यारा था जिसका कोई जवाब नहीं। और जो पहली डिमांड आई वो भी कुछ कम नहीं है, भक्तिमय है। चलिए एंजॉय करते हैं लवली सिंह जी की डिमांड को, जो हमें सुनते हैं आवाज़ विकास कॉलोनी गोंडा को। आहा, ये गाना भी काफ़ी प्यारा है। आइए एंजॉय करते हैं कन्हैया के इस प्यारे से भजन को।

क्या बात है भाई, हमारे कन्हैया का भजन होता है, तुम्हारी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया लवली सिंह जी, आपने इतनी प्यारी डिमांड हम तक पहुंचाई। और अब हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट डिमांड की ओर। उससे पहले भाई एक प्यारा सा मैसेज आया हुआ है सुरेंद्र यादव जी का गौरा चौकी से। लिखते हैं, आज हमारे गौरा चौकी बाजार में बगल कस्बा खास में सातवीं मुहर्रम का विशाल मेला लगा हुआ है। रेडियो गानसली के सभी श्रोताओं का मेले में स्वागत है। जी हाँ, जो जहाँ कहीं भी है लंगर का अगर आप रसन पान कर पा रहे हैं तो वहाँ से प्रसाद ग्रहण करें। मुहर्रम के विशाल मेले में अगर जा पा रहे हैं तो मेले का भी आनंद उठाते रहे। फिलहाल बढ़ते, यही तो बात होती है ना कि जब परिवार बड़ा होता है कितना खुशियाँ कितनी भी सारी हो सब मिलके एंजॉय कर पाते हैं। अभी चलते हैं आज की इस डिमांड की ओर, जिसकी डिमांड की गई है समरीन जी के द्वारा। आइए सुनते हैं इस प्यारी सी डिमांड को।

हाँ जी, और ये डिमांड थी हमारी समरीन जी की, 3 से 4 के सफर को आप एंजॉय कर रहे हैं अपने कॉलर ट्यून गोंडा को अपनी आरजी आकांक्षा के साथ में। और अगर आपने डिमांड अभी तक नहीं भेजी है तो जनाब फोन उठाया फटाफट से मिलाया, नंबर वही है 6393316429 यानी कि 6393316429। और अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं, हमारी प्यारी सी क्यूट सी स्वीट सी बबीता जी की है। बबीता जी को सुनना 90s हिट से ये हिंदी रोमांटिक सॉन्ग, एंजॉय करिए, आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ।

भाई, एक बड़ी प्यारी सी लाइन है अनिल वर्मा जी की ओर से, सैदापुर से लिखते हैं, आया है मंगलवार का पावन दिन, खुशियां लाया है हजार, झुक कर करो प्रणाम हनुमान जी को जो लगा देते हैं हर बार बेड़ा पार। क्या बात है, शुभ मंगलवार, शुभ मंगलवार, शुभ मंगलवार। ओ माय गॉड, इतना प्यारा कैसे कोई लिख सकता है। कुमार साहब, इसके बाद में नेक्स्ट सॉन्ग आपको डेडिकेट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको ऐसे गाने काफी पसंद आते हैं, मोटिवेशन वाले। एंजॉय करिए बबीता जी की डिमांड को।

अभी आपने एंजॉय किया हमारी प्यारी बबीता जी की डिमांड को, और अब हम बढ़ेंगे अमित जी की डिमांड की ओर। अमित कुमार जी की डिमांड हमारे पास आई हुई है, और ये डिमांड हम डेडिकेट करेंगे अपने प्यारे इट्स कुमार साहब को फ्रॉम MP रीवा। गाना बड़ा ही मोटिवेशन वाला है, बड़ा प्यारा है।

जी हाँ, अल्लाह के बंदे हंस दे, क्योंकि कल फिर से आते हैं, हमें दोबारा मौका जरूर मिलता है। हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, और मजबूत बनते हैं हर एक कठिन परिस्थिति से। और कुमार साहब हमारे बड़े ही मजबूत इंसान है, दिल से दिमाग से दोनों से। फिलहाल आप ऐसे बने रहे। और अमित जी, आपकी डिमांड बड़ी प्यारी थी, और अभी विकास तिवारी जी की डिमांड फ्रॉम उन्नाव। कितना

हाँ जी श्रोताओं, ये गाना आप सुन रहे हैं विकास तिवारी जी की डिमांड पे, जो हमें सुनते हैं उन्नाव से। और हमारे बीच में मौजूद हैं आयुष जी और इसके अलावा मनीष शर्मा जी हैं भटपुरा से, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रमुख कुमार जी हैं लुधियाना से, इट्स कुमार साहब एमपी रीवा से, और इसके अलावा हैं हमारे प्यारे लिसनर विकास जी, बबीता जी बनी हुई हैं, और सुरेंद्र यादव जी हैं चैट बॉक्स में, ये सभी लगातार बने हुए हैं। लवली सिंह जी हैं और अनिल वर्मा जी हैं सैदापुर से। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे गीता श्रीवास्तव जी भी हैं। फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं।

अच्छा श्रोता, इस गाने के साथ में एक अलग सी फीलिंग आती है ना, बड़ा ही प्यारा सा डिमांड किया आपने विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आप हमें थैंक यू ना बोले, डिमांड आपकी थी इसलिए आपको शुक्रिया। और अब चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में दीपक जी की, भाई हथियागढ़ से मंगाया मैंने एक और डिमांड, और चलिए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से डिमांड को फ्रॉम द मूवी गदर 2। जी हाँ, काफी दिन बाद हमें कुछ याद आने वाला है, खैर कोई बात नहीं, इमोशन नहीं है, हाई पीक पे चले जाएंगे फिर से डाउन हो जाएंगे, चलते हैं एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को 3 से 4 के सफर में आपके फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा के साथ।

क्या बात है भाई, बहुत ही उम्दा वाली डिमांड थी ये। जब आया था इतना ट्रेंड में था ये सॉन्ग, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अपने प्यारे प्यारे प्यारे लिसनर यानी कि किसकी डिमांड, आप गेस कर रहे होंगे, लेकिन हम बता देते हैं। अभी बारी आ गई हमारे अजीज जी की डिमांड की, जो हमें सुनते हैं मुंबई से। उसके बाद आएंगे हम प्रमुख जी की डिमांड के साथ में, फिर होंगे हमारे सुरेंद्र यादव जी फ्रॉम गौरा चौकी, फिर होंगे हमारे अनिल वर्मा जी, फिर होंगे हमारे राजू सुलेमानी जी यानी कि हमारे प्यारे रॉबिन हुड जी, उसके बाद राकेश वर्मा जी जो हमें सुनते हैं डुखरना से, और इनका भाई दिल टूट गया था हाल फिलहाल में, लेकिन आज पूरी तरह से जोड़ दिया जाएगा। फिर होंगे हमारे अमरजीत तिवारी जी, और अगर आपको भी अपने नगमों को ट्यून करवाना है प्लीज़ कॉल कर लें, नंबर वही है 6393316429। उससे पहले एंजॉय करते हैं ये प्यारी सी डिमांड जो हमारे पास आई है अजीत जी की ओर से मुंबई से।

क्या बात है भाई। वैसे कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत मतलब मोहब्बत शुरू ही होती है, या प्यार या कुछ भी आप सोच लिए, निगाहों से ही शुरू होती है। मतलब हो सकता है कि कभी आवाज पे आप किसी के मर मिटे हों, लेकिन पहली दफा पहली नजर में जो पहला अट्रैक्शन होता है वो निगाहों से ही होता है। तो भाई बिल्कुल सही बात है कि तेरी निगाह पे हम सब कुछ लुटाने आए हैं। ओहो मुझे भी कुछ याद आ गया। वैसे थैंक यू सो मच, बड़ी प्यारी सी डिमांड थी भाई अजी साहब की। इनकी डिमांड हटके होती है लेकिन मुझे हमेशा पसंद आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और भाई प्रमुख जी ने आज फिर से कुछ बहुत ही सजा के और बहुत ही बढ़ा चढ़ा के लिख के भेजा है। चलिए फिर से पढ़ते हैं क्या भेजा है इन्होंने। भेजते हैं लुधियाना से आरजे आकांक्षा जी, आपकी हंसी बड़ी निराली है। अच्छा, मेरे तो घर वाले डर जाते हैं, मेरे पड़ोस वाले डर जाते हैं, यहाँ तक कि हम जिस मेहमान के घर जाते हैं उनके बच्चे सो रहे होते तो उठ के जग जाते हैं और रोने लग जाते हैं। ऐसी है हमारी हंसी। अब बताइए प्रमुख जी कितनी निराली है, बताइएगा ज़रूर। इसके बाद लिखा इन्होंने, सुनते ही दिल में खिल जाती हरियाली है। ओह इतना तो है। ओ गॉड, आपकी मीठी बातों में अपना पन सा लगता है, हर पल आपकी मुस्कान से महफिल मतवाली है। थैंक यू। रेडियो की दुनिया में आपकी पहचान खास है, आपकी हंसी सुनकर हर श्रोता के चेहरे पर मुस्कान पास है, सुरों और शब्दों से दिलों को छू जाती हैं आप। आकांक्षा जी आपकी प्यारी हंसी सबसे बेमिसाल है। थैंक यू सो मच प्रमुख जी फ्रॉम लुधियाना। चलिए बढ़ते हैं आप इन्हीं की डिमांड की ओर, देखते हैं इनकी क्या डिमांड है। आइए एंजॉय करते हैं 3 से 4 के सफर में इस प्यारे से नगमे को।

0: दिल को।
1: बिल्कुल सही बात भाई, आज कहां से आप लोगों ने नगमे चुन चुन के यहां पर भेजा है भाई। महबूब जो देख ले एक नजर, दिल को करार मिलता है। ओहो, पूछिए मत, इतनी ठंडक मिलती है दिल को जिसका कोई जवाब ही नहीं। अच्छा, एक बात और भी बिल्कुल सही बोली हमारे प्यारे विकास जी ने कि सब नजरों का कमाल है, ना तेरी हट्टी ना मेरी हट्टी, एक दफा अगर एक दूसरे पे पड़ गई तो हटने का नाम ही नहीं लेती है। घंटों इंसान एक दूसरे को उतार सकते हैं, और दूसरी बात और, भूख प्यास भी हट जाती है। ये भी होता है, सच में प्यार पागलपन का दूसरा नाम है। एक्चुअल बात ये है। फिलहाल हमारे पास कॉल आ रही है, आप एंजॉय करिए इस डिमांड को, हम ले लेते हैं कॉल।

हाँ जी दोस्तों, और इस प्यारी सी डिमांड के बाद अब बारी आ गई हमारे प्यारे लिसनर यानी सुरेंद्र यादव जी की डिमांड की, और इन्हें मेले घूमना है और मेले घूमते घूमते सुनना ही ये गाना। आप भी सुनिए 3 से 4 के सफर में अपने फोन इन फरमाइश कार्यक्रम कॉलेज।

सुरेंद्र यादव जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको रूपा जी का पता मिले तो प्लीज हम तक सूचना पहुंचा दीजिएगा। नागेश्वर जी तक हमको ये खबर पहुंचानी है कि रूपा जी आपके उधर मेले में है। अगर ये बात सच है तो जरूर बताइएगा। फिलहाल ये मजाक था, एंजॉय करते हैं इसी गाने को, जो जिसकी डिमांड की गई है भाई सुरेंद्र जी के द्वारा। इनके उधर लगा हुआ है मेला।

जी हाँ, तो मेले घूमिएगा और ढेर सारे खिलौने खरीदेगा, एक आध खिलौना हम तक भी पहुंचा दीजिएगा। सुरेंद्र जी, बस इतना कहना था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और प्यारी सी डिमांड हमारे पास में आई हुई हमारे प्यारे लिसनर जो हमें सुनते हैं दिल से। अभी आप समझ गए होंगे मुकेश यादव जी की डिमांड है। चलिए सुनते हैं बजरंगबली का प्यारा सा भजन।

भाई पता नहीं क्यों ये गाना जब भी बजता है मेरे नाचने का मन करता है। जय बजरंगबली, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मुकेश जी थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वाला डिमांड। और अब आगे बढ़ेंगे हम अपने प्यारे लिसनर अनिल वर्मा जी की डिमांड के साथ में, लेकिन उससे पहले ही प्रबल मिश्रा जी पंडित जी का स्वागत करते हैं उनके स्पेशल वाले शो कॉलर ट्यून गुंडा में। और हमारी प्यारी नीना जी का भी स्वागत है भाई। नेहा जी तो गायब हो गई, हमें दिख नहीं रही है, शायद बच्चे को सुलाने गई है, हमारी हंसी से एक दिन डर गया था। आगे बढ़ते हैं इस डिमांड की ओर, जिसकी डिमांड है हमारे अनिल वर्मा जी की ओर से सैदापुर से, और आवाज़ हमारे राहत फतेह अली खान साहब की।

हाँ, बड़ी ही प्यारी रूहानी सी आवाज थी हमारी राहत साहब की, और राहत नाम भी बड़ा अच्छा रखा इन्होंने। और ऐसे ही हमारे एक शायर हैं जिनका नाम है राहत इंदौरी साहब। भाई दोनों ही उम्दा हैं, और राहत में राहत मिलती है जब कोई राहत दे जाता है। किसी की याद आए तो राहत मिल जाए, किसी से बात हो जाए तो राहत मिल जाए, कोई ख्यालों में आ जाए तो राहत मिल जाए, और कोई कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह जाए तो राहत मिल जाए। चलिए चलते हैं इस राहत भरे सफर पे, आगे बढ़ते हैं एक और प्यार से नगमे की ओर। और ये नगमा प्यारा होने से ज्यादा तो भाई सच्चाई बयां करता है महबूब की मेहंदी मूवी से। जी हाँ, आज हम सुनेंगे राजू सलमानी जी की यानी कि रॉबिन हुड जी की डिमांड को, जो लगातार 3-4 दिन से रह जा रही थी पेंडिंग। आइए आज उसको कंप्लीट करते हैं और सुनते हैं वो गाना जो एवरग्रीन तब भी था, आज भी है, और आने वाले हर दौर में एवरग्रीन ही रहेगा। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।

हाँ जी, और एक गाना आज मुझे बड़ा ही प्यारा सा याद आया है, और प्रबल जी का कहना है कि आज आप अपनी पसंद का गाना बजाइए। वैसे भी आज सभी निगाहों पे, नैनों पे और कहीं ना कहीं चाहत पे, राहत पे बात कर रहे हैं, तो प्रबल जी आपके लिए आज बहुत खास गाना होगा, हमारी ओर से वेट करिए। और दरक्षा अंसारी जी आ गई हैं सीतापुर से, लिखती हैं, गुड आफ्टरनून डियर गुलाबो, आपको भी शुभ दोपहरिया। और साथ ही साथ में हमारी रूहानी जी भी भाई बनी हुई हमारे साथ में, रूहानी जी के लिए एक स्पेशल डिमांड होगी, लेकिन उससे पहले हम बजाएंगे अभी इस वक्त अपने प्यारे लिसनर, जी हाँ, राकेश वर्मा जी का सॉन्ग जो हमें सुनते हैं, जी हाँ, दुखरनाथ मंदिर के पीछे से। उस वैसे इस गाने का एक ही पार्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब आवाज होती है छन्न की, एंजॉय करिए, दिल टूट गया। और भाई इनका दिल टूटा हुआ था मंडे को, नहीं संडे को, जिस दिन हम आए नहीं थे, इनका यही कहना था, लेकिन आज हम पूरी तरह से जोड़ रहे हैं, देख लीजिए इस गाने से।

हमारी प्यारी भौजाई यानी कि रूहानी जी दोनों लोग वेट करिए। आप दोनों की डेडिकेशन में बड़ी प्यारी सी डिमांड है हमारे पास में। उससे पहले आप एंजॉय करें हमारे राकेश वर्मा जी की डिमांड को। और आज की लास्ट डिमांड हम मैं भी लेंगे मनी शर्मा जी की। तो बने रहिए, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहिए। एंजॉय द ट्रैक।

क्या बात भाई, ये गाने मुझे बचपन से बड़ा पसंद आता है। जब शादियों में बजता था ना जाने की स्पेशल फीलिंग आती थी। फिलहाल बढ़ेंगे अब नेक्स्ट डिमांड की ओर। उससे पहले स्वागत करेंगे के गुप्ता जी का तिरंगा कॉम्प्लेक्स से और अपने प्यारे लिसनर जी हाँ प्रेम मौर्य जी का, जो हमें सुन रहे हैं सीतापुर से। फिलहाल पंडित जी आपके लिए स्पेशल वाली डिमांड, एंजॉय करिए और फीडबैक स्पेशल वाला चाहिए, क्योंकि डिमांड भी हमने आप तक अपनी स्पेशल वाली पहुंचाई है। एंजॉय करिए ओल्ड वर्जन का ही प्यारा सा नगमा फ्रॉम द मूवी एक फूल दो माली।

हाँ दोस्तों, कुछ नजरें इतनी प्यारी होती ना कि नजर उससे हटती नहीं। बिल्कुल विकास जी ने एकदम सही कहा था कि सब कुछ नजरों का कमाल है, ना तुम्हारी हटी ना हमारी हटी। फिलहाल बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और फीडबैक चाहिए था वैसे हमें मिल गया है, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। और कमल नैन जी भी भाई हमारे साथ में बने हुए हैं, और कुमार साहब आपसे बता दें, कोई कितना भी दिमाग लगा ले, हमें जब हमारा नंबर आएगा किसी का तभी हम गाना बजाते हैं। फिलहाल अभी बारी है इस प्यारे से नगमे की, और इसकी डिमांड की गई है अमरजीत तिवारी जी की ओर से, और ये हम डेडिकेट करते हैं अपनी प्यारी प्यारी प्यारी रूहानी जी को।

जी हाँ दोस्तों, तो ये बुहार ऐसे ही बरकरार है। आप सभी की भौजाइयाँ हमेशा आपके साथ रहें, एक माँ की ममता लुटाती रहें और थोड़ी बहुत नोकझोंक सबकी बनी रहे सभी के बीच में। बस इसी दुआओं के साथ में अब आपकी आरजे आकांक्षा आप सभी से लेती इजाजत और आज की लास्ट डिमांड लेते हैं हम अपने मनी शर्मा जी की फ्रॉम भटपुरवा, और इसी में हम ऐड करेंगे अपने रईस साहब को, क्योंकि इन दोनों की डिमांड सेम टू सेम है। मुझे मालूम है कि रईस साहब का टेस्ट ऐसा ही है, इसलिए इस गाने को लेते हैं। और जिन जिनकी डिमांड रह गई है प्लीज गीत आपके नाम से मैं आरजे सिंपल से जरूर प्ले करवाइएगा। टेक केयर, बाय बाय। आप सो सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फोनी फरमाइशी यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा। मैं थी आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा और आपने ट्यून करके रखा हुआ था रेडियो गाना 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और इस गाने के साथ में अब लेती हूँ आपसे इजाजत, मिलते हैं कल आपके शो में कॉलर ट्यून गोंडा के साथ। बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब
8: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-89-14416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं।
1: हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है आपके शो विज्ञान शाला में। और आज आपके साथ आपकी आरजे बीना आ चुकी है आप सभी को लेके चलने एक ऐसे सफर पर, जहाँ पे हम सभी करेंगे सफारी, यानी कि जंगल सफारी। तो जैसा कि मौसम भी और वेकेशंस भी चल रहे हैं, और मन तो करता ही हम सभी का कि कहीं ना कहीं घूम आएँ, और घूमने की बात हो और कोई साथ दे दे। तो आपका अपना फेवरेट रेडियो ज्ञान सिटी 9.6 एफएम आपका साथ हर जगह, चाहे जंगल हो चाहे कहीं भी हो, निभाता ही है। तो ऐसे में छुट्टियों में आपका साथ कैसे छोड़ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमें पहाड़ों पे और ऐसी जगह घूमना पसंद होता है जहाँ पे मतलब हम जाएँ तो हमें सुकून सा मिले। तो ऐसे में मुझे जो समझ में आता है, जंगल सफारी करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये मतलब थोड़ा सा एडवेंचरस भी लगता है। तो सबसे पहले तो ये वो यात्रा होती है जिसमें लोग संरक्षित जो वन क्षेत्र होते हैं या नेशनल पार्क्स होते हैं, जहाँ पे वन्य जीवों को रखा जाता है, प्राकृतिक आवास दिया जाता है, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। जिप्सी या फिर जो भी कैंटर वगैरह उन्हें मिल जाता है, बस वगैरह, उसे जाते हैं। वैसे अगर जीप सफारी की बात करें तो 8 से 10 लोग जा सकते हैं, और अगर वहीं कैंटर सफारी की बात करें तो 20-25 लोग जा सकते हैं इसमें, और मज़ा भी आता है और ये बजट फ्रेंडली भी होती है। फिलहाल अगर हमारे देश की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया में जंगल सफारी के लिए जो बेटर ऑप्शंस हैं वो है जैसे आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। इसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है, कान्हा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अगर आप जाना चाहते हैं तो खासतौर पर गोंडा के आसपास, तो देखिए करतनिया घाट है आपके पास, यहाँ नवाबगंज में एक वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र है जो टिकरी जंगल के नाम से जाना जाता है। तो मतलब अगर आप चाहें तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अच्छा खासा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और इंडिया में अगर यूपी की बात करूँ तो यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो कि लखीमपुर खीरी में है, करतनिया घाट बहराइच में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये प्रमुख जंगल सफारी के लिए एक मतलब क्षेत्र माने जाते हैं जहाँ पे आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल मैं बात कर लेती हूँ दुधवा नेशनल पार्क की, जो कि लखीमपुर खीरी में है। ये यूपी का सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुए और दलदली हिरन, जिसे बारा सिंघा भी बोलते हैं, ये पाया जाता है। और करतनिया घाट वन्यजीव जो अभ्यारण है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इसके लिए तो मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वन्य जीव रहते हैं, बल्कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी कहानी भी सुनाना चाहती हूँ। और हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि नहीं रही मोगली गर्ल एहसास। तो थोड़ा सा हम लोग जाते हैं, हम लोग इस क्षेत्र को सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं, कैसा है करतनिया घाट, कहाँ है, क्षेत्रफल क्या है इसका। तो मैं आपको बता दूं कि करतनिया घाट जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पड़ती है, भारत नेपाल की जो सीमा है उस पर पाई जाती है। लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अभ्यारण्य के लिए यहाँ पे समृद्ध जैव विविधता है, बाघों के लिए मीठा पानी है, और गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल आपको आसपास यहाँ आवास करते मिल जाएंगे। अगर बात करूँ इसकी तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत खास हैं, जैसे कि स्पेशलिटी ये है कि 1987
झांसी में प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे के तहत यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया और साथ ही साथ बहुत सारे वन्य जीवों को यहाँ पे कंजर्व किया गया। करतनिया घाट वन जो है वो भारत के दुधवा और किशनपुर के बाघ के निवास और नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान के बीच सामरिक संपर्क प्रदान करता है, मतलब एक तरह की लिंक है ये। और इसकी जो नाजुक तराई जो पारिस्थितिक तंत्र है, सैल सागौन के जो जंगल हैं, घास की प्रचुर मात्रा जो है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दलदली इलाका है और नलिकाओं का जो मोज़ेक पैटर्न यहाँ पे शामिल है, इसको काफ़ी बेहतरीन बनाता है। इसमें लुप्त प्राय प्रजातियाँ जैसे कि घिरील, शेर और गंगा के डॉल्फिन, दलदल हिरण, हैपेड खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन, सफ़ेद बैकर्ड और लंबे समय से बिलगिल्ट शामिल हैं। और अगर बात करूं तो गहरील के एक अपनी प्राकृतिक जो सीमा है उसको बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है। और गेरुआ नदी के छोटी सी संख्या में यहाँ पे मगरमच्छ भी देखे जाते हैं, क्योंकि उनके पसंदीदा हंट स्थिर जंगलों के जो कहते हैं ना तालों और भगारों को यहाँ पे अभयारण्य के लिए डॉट किया गया है। तो ये तो बात हो गई, और मैं बात करना चाहूँगी जंगल गर्ल या फिर मोगली गर्ल के बारे में, जो कि इसी जंगल में पाई गई थी। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कौन सी लड़की है, किसी को जिसको पता होगा उसे तो पता ही होगा, लेकिन जिसे नहीं पता है वो तो मतलब अभी भी सोच रहे होंगे भाई कौन है, कहाँ से है और किसके मतलब ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि आज के 9 साल पहले लगभग 2017 में मोगली गर्ल मिली थी, जो काफ़ी मशहूर हुई थी, लोगों ने इसके बारे में बहुत तब बात की थी। और ये लड़की बिल्कुल बंदरों जैसी थी जब ये मिली है, लगभग ये मतलब मुझे लगता है कि 9 साल की रही होगी, और बिल्कुल इसकी हरकतें जो थी वो मतलब जानवरों जैसी थी। और आपको बता दूँ ये करतनिया घाट के जंगल में मिली थी। तो मतलब शुरुआत में तो लोगों को

मतलब ऐसा लग रहा था कि एक जानवर के रूप में ही मिली है। और मोतीपुर थाने के उप निरीक्षक जो थे वहाँ के, जो उस क्षेत्र में जो देखते थे, उन्होंने बताया कि ये जो बच्ची है इसे सबसे पहले इनकी पुलिस की टीम ने देखा था, किसी मतलब लोकल इंसान ने नहीं देखा था। और वहाँ के जो कहते हैं ना कि आसपास के लोगों ने जैसा कि मतलब ऑब्जर्व करके बताया कि वो बंदरों के झुंड में रहा करती थी, इसलिए किसी को ध्यान नहीं गया। और पुलिस की टीम ने बताया कि बालिका को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें एकदम जैसे जानवर जैसा माहौल शुरू में दिया, एकदम से उसको अलग एनवायरनमेंट में रखते तो शायद वो बच ना पाती। तो बिल्कुल जानवरों जैसा उसका बिहेवियर था। और फिर उसे मतलब मेडिकल कराया गया, उसकी मतलब जो कहते हैं ना कुपोषण था, उसको खाना नहीं मिलता। जो भी जंगल में रहती थी तो जैसे जंगली जानवर खाते हैं वैसे वो भी खाती रही होगी। शरीर पे बहुत सारी खरोंचे थी, घाव थे, भाई जानवर हैं आपस में झगड़ा भी करेंगे। बाल जो थे वो बहुत उलझे हुए थे, नाखून काफ़ी बड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सालों से यहीं पर थी। सवाल ये उठता है कि वो बच्ची वहाँ कैसे पहुँची। ऑफ कोर्स हमारे देश में जानते ही हैं लड़कियों को मतलब जन्म होते ही कहीं भी छोड़ दिया जाता है, हो सकता है उस लड़की को जंगल में छोड़ दिया गया और किस्मत को मंजूर था कि वो कुछ साल जिए तो बिल्कुल वहीं पे रही। और आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि अभी 4 दिन पहले उसकी डेथ भी हो चुकी है। लखनऊ में उसकी हॉस्पिटल में डेथ हुई, उसे कोई बीमारी हो गई थी जिस वजह से वो नहीं बच पाई। तो 9 साल काफ़ी वो जी, मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता बताई भी होंगी, धीरे धीरे सीखा भी होगा उसने। और ख़ास बात ये थी ना कि वो पैरों के मतलब बजाय हाथ पैर दोनों से चल रही थी और बोलने का प्रयास करती थी, तो वो जैसे जानवर बोलते हैं उनकी तरह आवाज़ें निकाल रही थी, बंदरों की तरह खौ खौ करती थी और थाली बर्तन देखते ही फेंक देती थी और खाने को बड़े बड़े निवालों के साथ मुंह में डाल लेती थी। तो उसे फिर एक पुनरावास में रखा गया जहाँ पे उसे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई गई। मिसिंग लोग जहाँ रखे जाते हैं ज़्यादातर गुमशुदा बच्चे या फिर ऐसे, तो उसे सिखाया गया, व्यवहार सिखाया गया और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए की गई, क्योंकि वो एक तरह से लोगों के लिए एक जैसे हमने सीरियल देखा, मूवी देखी मोगली, तो हमारे दिमाग में ये था ना बच्चा जंगल में रहा, तो वो पूरा का पूरा जो दृश्य हमारे दिमाग में बचपन से बना था वो उस बच्ची के सामने मिलने से हमारे फिर से वापस आ गया। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये बच्ची तो हमारी है, पर अब कहने से क्या फ़ायदा, जब आपकी थी तो आपने जंगल में छोड़ा ही क्यों। 15 जून को इसका निधन हुआ है और ख़ास बात ये है कि वो लंग्स में एक सेप्टिसीमिया नाम की बीमारी हो गई थी जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी और इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई। और काफ़ी दिनों तक उसने इंसानों से मिलने से इनकार कर रखा था, काफ़ी दिनों तक वो कपड़े तक नहीं पहनती थी और चारों हाथों से मतलब दोनों हाथ और दोनों पैरों से चलती थी। काफ़ी दिनों तक वो एक नॉर्मल इंसान नहीं बन पाई थी, वो जानवरों की तरह ही थी। पर खास चीज़ ये थी कि उसके अंदर इमोशंस जो थे वो उन्हीं जानवरों की तरह थे, किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट उसके अंदर नहीं था, वो किसी को हार्म नहीं पहुँचा रही थी। तो एक जगह जहाँ पे बच्चों का कल्याण समिति थी वहाँ पे उसका नाम पूजा भी रखा गया और काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश की गई, धीरे धीरे वो सीख भी रही थी और इलाज के बाद उसकी काफ़ी सारी चीज़ें सही हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि उसको कोई इन्फेक्शन लंग्स में था पहले से ही, जो कि धीरे धीरे बढ़ता गया और फाइनली उसकी 15 तारीख को डेथ हो गई। धीरे धीरे उसने अम्मा कहना सीख लिया था, भावुक होती थी तो रोना शुरू कर देती थी। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जिसे हमें समझना चाहिए। तो इस छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे देश के कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में जहां हम सभी को घूमने जाना चाहिए और वहां जा के सीखना चाहिए कि कैसे एक छोटा सा इलाका जहाँ पे बिना किसी लालच के हमारे जानवर कितने अच्छे से रहते हैं। तो आगे भी बात होगी, फिलहाल हम मौन करेंगे कुछ देर का हमारी मोगली गर्ल के लिए और हम सभी ऐसे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, बजाते रहेंगे अपना वाला रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं विज्ञान शाला, आरजे बिना वाला, आरजे बिना के साथ।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: डिलीशियस
5: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवर नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40।

0: 45।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: तो वापस से आप सभी का स्वागत है विज्ञान शाला में। और जैसा कि हम सभी बात कर रहे थे हमारे मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, क्या है ये और जंगल सफारी के लिए क्यों ये खास है, क्यों इतनी बेहतरीन है, तो मोगली गर्ल के बारे में तो बात हो ही चुकी थी और क्या होना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। और आजकल आपने रामसर साइट्स के बारे में भी सुना होगा, तो आज मैं वो भी बताऊंगी। सो सबसे पहले शुरू करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, क्या है, कैसे है और इंडिया में कितनी हैं, कहाँ हैं और इसके पीछे बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि भारत में 574 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिसको हिंदी में वन्य जीव अभ्यारण बोलते हैं, ठीक है। और देश के लगभग 123,762 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला होता है और इसका उद्देश्य होता है वन्य जीवों को सुरक्षित रखना और जो एक प्राकृतिक वातावरण है वो उनको देना। देखिए, जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं वो बेसिकली आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट देते हैं, उनको लगता है कि हाँ वो बंधे हुए हैं, पर ये जो सेंचुरीज होती हैं ये एक तरह से उन्हें इंस्टीट्यूट टाइप का कंजर्वेशन देती हैं कि जहाँ वो हैं उनको वहीं पे मतलब कंजर्व कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ राजस्थान में पाए जाने वाले मुख्य जो अभ्यारण है इनके बारे में। तो राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभ्यारण है और भरतपुर में स्थित है, जहां हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है। इसके बाद है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण, जो कि राजसमंद उदयपुर और पाली के बीच स्थित है, यहां तेंदुए, भेड़िए और भालू पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे है सरिस्का बाघ अभ्यारण, जो कि अलवर में स्थित है, यहाँ बाघों का संरक्षण किया गया है, ठीक है। तो आगे मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इसके पीछे चुनौतियाँ क्या क्या हमारे मतलब सरकारों को या हमारे आसपास लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हें देखनी पड़ती हैं और उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटते हमारे वन्य जीवों को बचाने के लिए। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये मुख्य रूप से एक तरह से ना बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है चर्चा का, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी तरह का पेपर हो, उसमें वन्य जीव और जैव विविधता के बारे में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ये आने वाला महत्वपूर्ण मतलब एक टॉपिक है, ठीक है। तो बार अगर मैं भारत की बात करूँ तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, उसके निर्माण और प्रबंधन के बारे में कानूनी प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की गई थी और इसमें खास तौर पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम किया गया था कि अभ्यारण की घोषणा राज्य सरकार को किसी क्षेत्र या मुख्यतः वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण घोषित करना होगा, इसके साथ पर्याप्त वन्य जीव आबादी होनी चाहिए वहाँ पे, शिकार और अवैध शिकार और वन्य जीवों को पकड़ना सख्त वहाँ वर्जित होगा और साथ ही साथ आवास के ऐसे सुधार जिससे कि वन्य जीवों को लाभ हो और जलकुंडों की खुदाई उनकी मतलब जितना हो सके वन्य जीवों को फायदा हो और किसी भी तरह की हानिकारक वहाँ पे चीज़ उनके लिए ना हो, ठीक है। संरक्षण की योजनाएं शुरू की गई राज्यों में और साथ ही साथ ऐसी गतिविधियाँ की गई जिससे संरक्षण को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वन्यजीव अभयारण्यों की। और जैव विविधता की भी बात करें तो इससे जैव विविधता का संरक्षण भी होता है, क्योंकि उस एरिया में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से बचाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करूँ तो ऐसे शोधकर्ता जो कि व्यवहार अनुवांशिकी और रोग और संरक्षण जीव विज्ञान के अंतर्गत काम करते हैं, तो वो यहाँ पे अपनी प्रयोगशाला वगैरह लगा के काम करते हैं। शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में अगर देखें तो ये बहुत बड़ा मतलब एक सहयोग का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीवों को रखा जाता है संरक्षित। तो तीसरे मतलब जो आखिरी है हमारा वाला जो पार्ट, यानी कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं ये अभ्यारण्य। ये हमें एक मौका देते हैं एक्सप्लोर करने का, जंगल सफारी करने का, और वहाँ जाके भाई हम बहुत सारी इनकम भी देश की बढ़ाते हैं, वहाँ जाके टिकट्स वगैरह खरीदते हैं। और कुछ चीज़ें जो हमारे 1972 से लागू हुई, एक तो ये कि शिकार विरोधी तंत्र तैयार किया गया, कानूनी प्रावधान लगाए गए, आवास विकास को लेके जो जल स्रोत हैं वहाँ पे स्थानीय वनस्पतियाँ हैं उनको बढ़ावा दिया गया, पेड़ पौधे और ज़्यादा से ज़्यादा लगाए गए और अभियान के लिए प्रोत्साहित किया गया लोगों को। तो ये तो हो गई मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात। और अब मैं थोड़ा सा आप लोग को रामसर जो साइट्स हैं और उनके बारे में बताना चाहती हूँ ये क्या है। तो इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा विस्तार में कि ये रामसर साइट्स क्या हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम उसमें थोड़े गाने सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं रामसर साइट्स के बारे में। तब तक के लिए सुनते रहिए विज्ञान शाला, आप सुन रहे हैं अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
7: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
8: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
7: सच में? क्या खास है वहाँ?
8: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
7: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
8: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
7: और फोटोग्राफी वगैरह?
8: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
7: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
8: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
7: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
9: अरे सुना?
10: क्या?
9: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
10: वाओ!
9: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: वापस से आरजीबीना आप सभी का स्वागत करती है विज्ञान शाला में, जहां बातें तो होती हैं लेकिन ज्ञान वाली। तो ज्ञान वाली बातें करते करते मुझे याद आ जाता है कि मैं आपको बताने वाली थी रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट्स के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले ये क्या है, रामसर कनेक्शन क्या है, बेसिकली कन्वेक्शन क्या है। तो ये बेसिकली आर्द्र भूमि जो होती है, मतलब जो वेट लैंड्स होते हैं उनके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 यानी कि ईरान के रामसर शहर में हुई थी। आप सोच रहे होंगे ना, रामसर है तो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ा होगा। नहीं नहीं, ये जो संधि है ये ईरान के रामसर शहर में हुई थी और ये बेसिकली वेटलैंड्स जो हैं उनके कंजर्वेशन, उनके संरक्षण के लिए ये संधि की गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और भारत में ये जो कहते हैं ना कि रामसर संरक्षण का जो संधि का जो हिस्सा है वो लागू किया गया 1 फरवरी 1982 में। पहला जो रामसर स्थल बना, जो वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र बना, वो बना चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, ये भी वेटलैंड है और यहाँ का संरक्षण किया गया है। सबसे बड़ा स्थल अगर बात करूँ तो हमारे देश में रामसर स्थल में सुंदरबन है जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा जो है वो रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे अधिक रामसर स्थल जो है वो तमिलनाडु में है, 20 रामसर साइट्स हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो स्थल हैं वो हाल ही में एक सुरहा ताल जो जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य बलिया के अंतर्गत आता है, इसको भी घोषित किया गया है और राज्य के रूप में 100वां रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा पटना पक्षी अभयारण्य एटा और शेखा झील भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो इन सब के बारे में जानने के बाद आप लोग के अंदर बड़ी जिज्ञासा होगी ना कि मतलब अभी तक तो हम सोच रहे थे कि ये भारत से जुड़ी कोई संधि होगी। नहीं नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है। और अब इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो गुजरात के जो छारी ढाड़ कच्छ में शामिल है, यहाँ पे भी एक वेटलैंड जो स्थल है वो बना दिया गया है, रामस्थल सूची का ही वो माना जाता है। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ तो 2 फरवरी 2026 तक भारत में 98 रामसर स्थल हुए हैं जिन्हें जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव सहित ये आर्द्र भूमि विविध प्रकार के पौधों और वन्य जीवों को वहाँ पे रहने के लिए समर्थन करती हैं और स्थानीय समुदायों के आवश्यक सेवाओं को प्रदान करती हैं। जल शोधन एवं बाढ़ नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। जो वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ों की मतलब वजह से वहाँ पे बाढ़ जैसी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन की बात करूँ तो आर्द्र भूमि संरक्षण की वैश्विक संधि जो है वो हमें ये बताती है कि विश्व स्तर पर ये सारी चीज़ें कितनी तेज़ी से की जा रही हैं और हमारा देश भी इसमें पूरा पूरा पूरा जो सहयोग है वो कर रहा है। तो इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इसके कुल सदस्य हैं 172 देश 2024 तक, तो 172 थे, अभी कितने हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और भारत की सदस्यता जो है 1 फरवरी 1982 में हुई है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सचिवालय का प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने किया है। ठीक है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो भारत से जुड़े हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। भारत की सदस्यता तो आपको पता ही है, 1 फरवरी 1982 में हुई और अभी तक यानी कि 2026 तक 98 साइट्स हो चुके हैं, 24 तक 96 थे। पहला रामसर साइट चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, और दूसरा केवला देव जो कि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सबसे बड़ा रामसर सुंदरबन डेल्टा, इसी के साथ सबसे छोटा रामसर स्थल जो है वो है रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। 2022 में सबसे ज़्यादा इसमें जो स्थल हैं वो जोड़े गए थे, 11 स्थल जोड़े गए थे, और ये जो मतलब संख्या है वो 15 अगस्त को पूरी हुई थी, 15 अगस्त 2022 को। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सारे कुछ इम्पॉर्टेंट गिना देती हूँ, जैसे कि हरियाणा में भिंडावास WLS है, मतलब वेटलैंड कंजर्वेशन साइट है। इसके साथ सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा में है, चंद्रताल जिसके बारे में आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि आजकल रील बहुत बनती है कि चंद्रताल घूमने का मन है, चंद्रताल में बड़ी शांति। खास बात यह है कि वहाँ की एक झील जो है, पानी जो है इतना शांत है कि वहाँ जैसे लगता है किसी ने की वॉइस कंट्रोलर लगा रखा है, बहुत शांति है। चंद्रताल आप नहीं घूमे तो आप बिल्कुल घुमाइए, हिमाचल प्रदेश में है, तो इसको भी वेटलैंड साइट बना दिया गया है। और पोंग बांझ झील जो कि हिमाचल प्रदेश में 2002 को, इसको भी वेटलैंड कंजर्वेशन के अंतर्गत ले लिया गया है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, और साथ ही साथ आघनाशिनी मुहाना जो कि कर्नाटक में है, इसी के साथ भोज आद्र भूमि मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में नंदूर मध्येश्वर महाराष्ट्र का वेटलैंड साइट है, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है, मिजोरम में पाला आद्र भूमि, अनसुपा झील ओडिशा में है, कितने सारी है मतलब नाम तो बहुत सारे हैं। पंजाब की बात करूँ तो नांगल जो है, नांगल जो झील है वो भी उसे कंसिडर किया गया है। केवला देव के बारे में बता चुकी हूँ। सांबर झील को भी कंसिडर किया गया जो कि राजस्थान में है। तमिलनाडु की जो कुछ महत्वपूर्ण है वो वुडवुर है, वेलोड है, तमिलनाडु में काफ़ी सारी साइट्स हैं। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, वूलर झील है जम्मू कश्मीर की, बखीरा है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो कि 2019 में हमारे भारत मतलब उत्तर प्रदेश ही क्या कहते हैं नवाबगंज के पास है। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं वो बहुत ही बढ़िया और हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये सूची जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और हमारे जो कहते हैं ना कंजर्वेशन का रेट जो है वो भी बढ़ता जाए। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं म्यूज़िकल, और थोड़ी सी और बातें करूँगी आप लोगों से कंजर्वेशन से जुड़ी हुई, और घूमने के लिए भी अच्छी अच्छी साइट है जो अभी तक कहीं नहीं गए हैं, तो वो पार्वती अर्गा पक्षी विहार जा सकते हैं और वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बजाते रहिए अपना फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: अरे सुना?
0: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
0: वापस से आरजीबी ना आप लोग के बीच हाजिर है अंतिम और आखिरी जानकारी देने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग कंजर्वेशन की और बहुत सारी बातें की, मोगली गर्ल के बारे में बातें की, तो आज मैं चलते चलते आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण है वो पेड़ पौधों का भी होता है और वन्य जीवों का होता है, इसीलिए इसको संरक्षण हम लोग बोलते हैं और इंग्लिश में कंजर्वेशन बोलते हैं। इसे बेसिकली हम इनकी सुरक्षा, इनके रख रखाव, प्रबंधन और पुनर्स्थापित करते हैं उनका जीवन, मतलब बेसिकली हम उन्हें बचाते हैं। और आमतौर पर ये जो संरक्षण है ये दो तरीके से किया जाता है, इसे इन सिटू संरक्षण भी बोलते हैं और एक्स सिटू संरक्षण, यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो सबसे पहले इन सिटू कंजर्वेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। इसमें वास्तविक जो स्थान होता है, जैसे कोई मतलब उत्पत्ति वाला स्थान जहाँ पे वो जीव पाया जाता है, पेड़ पौधा पाया जाता है, उसको उसी के एरिया में संरक्षित कर दिया जाता है, प्राकृतिक आवास में उसे रहने दिया जाता है, एक लुप्त प्राय पौधे या जीव प्रजातियों को रक्षा देने के लिए हम ये काम करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने सोचा कि लाओ मैं इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन करूं, तो आप करेंगे क्या? आप नेशनल पार्क बना सकते हैं, ठीक है, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं और आप बायोस्फेयर बना सकते हैं। नेशनल पार्क जिसे राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके बारे में भी बात की हमने, वन जीव अभ्यारण्य, इसी के साथ जैव मंडल रिजर्व बना सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान एक वो क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीवों की सुरक्षा एवं रख रखाव के लिए एक आरक्षित एरिया या कह सकते हैं वानिकी या पशु चराई जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। इस उद्यान इन उद्यानों में जो निजी, जो कहते हैं ना कि

कार्य होते हैं या स्वामित्व अधिकार होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते, ये सरकार के अंतर्गत होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क। दूसरे नंबर पर आता है वन्य जीव अभयारण्य, जिसके बारे में अभी बात हुई थी। और तीसरे नंबर पे बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो संरक्षित क्षेत्र होता है इसकी विशेष श्रेणी होती है जहाँ मानव आबादी भी वन्य जीव के साथ रह सकती है। यानी कि मतलब उन जीवों को बिल्कुल नहीं लगता कि इनको कैद किया गया, पर वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। ये आमतौर पर 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े संरक्षित क्षेत्र को कवर करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में तीन भाग होते हैं, सबसे पहला कोर, फिर बफर, और सबसे तीसरे नंबर पर आता है ट्रांजिशन जोन। कोर जोन जो होता है वो इनर जोन होता है, ये अविभाजित या कानूनी रूप से संरक्षित होता है। बफर जोन या कोर जोन ट्रांजिशन जोन के बीच में होता है, कुछ शोध या शैक्षिक गतिविधियों की वहाँ अनुमति होती है। और ट्रांजिशन जोन जो होता है वो जैव मंडल रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यहाँ फसल, वानिकी, मनोरंजन, मछली पालन गतिविधियाँ की जाती है, यानी कि लोग यहाँ पर रहते हैं। और अब बात करती हूँ एक्सिटू कंजर्वेशन की, यानी कि एक्सिटू जो संरक्षण है वो क्या है। एक्सिटू संरक्षण में जो प्रजातियां हैं उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर निकाल के उन्हें संरक्षित किया जाता है। वनस्पतियां हों, चाहे वन जीव हों, वनस्पतिक उद्यान हों, चिड़ियाघर हों, ये सब इसी के अंदर आते हैं। जीन बैंक भी इसी में आता है, डीएनए बैंक भी इसी के अंदर आता है। जीन बैंक में हम क्या करते हैं, ये ठंडे भंडार होते हैं जहाँ पर हम जर्म प्लाज्म को रखते हैं, यानी कि कुछ कोशिकाओं को संचय कर लेते हैं। इसके बाद है क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, बायोटेक की मदद से हम कुछ पर्टिकुलर जीन्स को इकट्ठा करके रखते हैं, उसे हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं और तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। और ये सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने वाली है। और तीसरे नंबर पे है एनिमल ट्रांसलोकेशन, इसका तात्पर्य है कि एक नए इलाके से जानवरों को छोड़ना जो कहीं और से आते हैं। तो ये एक तरह का कंजर्वेशन का तरीका था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका था। इसको जानने के बाद आप लोग को भी लगेगा यार ये सारी चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं और हम सभी को समझने की ज़रूरत है। और अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज बची हुई है, नहीं तो आज का कब का बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु मतलब आज ख़त्म हो चुके होते। और मुझे लगता है कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकौड़े, सूक्ष्म जीव, ये सभी जैव विविधता को दर्शाते हैं। और जैव विविधता के तीन मुख्य स्तर जो हैं वो है अनुवांशिक विविधता, दूसरा है स्पीशी डाइवर्सिटी जिसे प्रजाति विविधता बोलते हैं, और तीसरे नंबर पर आती है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और ये पर्यावरण संतुलन, संसाधन और जलवायु नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। और इसी के साथ आरजीबीना मैं मतलब आपसे विदा लेना चाहती है, और फिर अगले मंगलवार को बहुत सारी बातें होंगी। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्ञान बटोरते रहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं विज्ञानशाला अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी ज्ञान सिटी 9.6 FM पर। यह है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, कोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी।

बिल्कुल आसपास खुदा की मौजूदगी हो या आसपास इंसानियत की मौजूदगी हो, ये दोनों ही हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होने का एहसास दिलाती है। एंड यस, ये एनवायरनमेंट हमारे आसपास तो बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि सबके अंदर इंसानियत और प्यार बहुत ज़्यादा है। तो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ से आप प्यार की बातें तो सुनते ही हैं पर एहसास यहाँ जवां होने की भी शुरुआत ही होती है। तो सभी का स्वागत करते हुए आरजे मीना बता देती कि ज्येष्ठ का एक और मंगलवार आज है, और गोंडा शहर में आते समय मैंने देखा हर जगह भंडारे लगे हुए थे, और मैं भी भंडारा खाने के लिए रुक गई थी और मुझे भी 5 मिनट लग गया आने में। फ़िलहाल आप लोग बताइए कि इस गर्मी में ये लोगों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, और ये कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी के लिए है, इंसानियत के लिए है, और ऐसा करने से इंसानियत जिंदा रहती है। बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीदें करते हैं, और मैं तो देखती हूँ कि लोग दूर दूर तक प्रसाद ले जाते हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। देखिए, अगर हम क्रिटिसाइज़ करने पे आ जाएं तो हर चीज़ को हर जगह क्रिटिसाइज़। ऐसे मैं गाड़ी में बैठ के आ रही थी, एक लोकल मतलब पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट था, वहाँ से आ रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि एक दिन कराने से क्या होगा। आई वॉज शॉक्ड कि मतलब अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करने के बजाय ये उससे कह रहे हैं कि भाई तुम रोज़ भंडारे कराओ। हर किसी की एक पॉकेट होती है, और उसकी पॉकेट जहाँ तक साथ देगी वो उतना ही हेल्प कर पाएगा। और रही बात इंसानियत की, तो इंसान अगर चाह ले ना तो वो ज़रूर मतलब मदद करता है, और एक लिमिट तक ही कर पाएगा। फ़िलहाल आप लोग को बता दूँ कि गर्मी का जो कहते हैं ना कि जलजला है, वो बरकरार है कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि कल बलरामपुर में हल्की बारिश हुई थी, आज भी कई जगहों पे बारिश के हल्की हल्की बूंदें पड़ी हैं। मतलब धीरे धीरे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि बारिश होने वाली है। एंड आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हम लोग के लिए यही है, एंड क्या करें, इनफैक्ट जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग बदल तो नहीं सकते, पर हाँ उसमें सर्वाइव करने के नए नए तरीके ज़रूर ढूंढते रहेंगे, और आप लोग के साथ इस शाम को ज़रूर जमा करते रहेंगे। फ़िलहाल आप लोग के साथ बातें करते करते मुझे ये याद आ रहा है कि आज ट्यूसडे है, एंड आपको आज एक प्यारी सी लव स्टोरी से भी मुझे रूबरू कराना है। और देखिए, जब कहानी की बात होती है तो आप लोग के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं, ओह आज तो कहानी सुनने को मिलेगी। और कहानी जब नाम लेने के बाद मैं ये कह देती हूँ कहानी किसी रियल इंसान की है, और जिसे आप शायद जानते भी हों, तो आपको और मज़ा आता है। क्यों अभी आरजे मीना एक दिन ये कह दे कि मैं आज लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ डॉक्टर लव की, या मैं लव स्टोरी सुनाने वाली मेरे किसी खास लिसनर की, तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा ना कि हाँ यार आरजे मीना ने ऐसा कुछ कहा। मतलब तो एक मतलब अलग सी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी जानने की, तो ये बात सही है यार, कुछ जाने पहचाने लोगों के बारे में जानने को मिलता है। अभी आपसे ही कोई कह दे अचानक से कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता है, तो भाई कान एकदम से अलर्ट हो जाएंगे, अरे यार मेरे बारे में इसको क्या पता है। या घर वाले ही अचानक से कह दें अच्छा तो ये कुल खिलाया जा रहा है, पता चल गया हमें, ऐसे झूठ में ही हमारे अलर्टनेस आ जाएगी, तो वो अलर्टनेस कहानियाँ सुनने के समय भी हो जाती है। गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका, और शुभ संध्या, और आगे बातें होती रहेंगी ऐसे, और म्यूज़िकल शाम भी रहेगी साथ में, क्योंकि लव स्टोरी ही क्या जिसमें म्यूज़िक ना हो। ठीक है, तो आज हम एक ख़ास पर्सनालिटी की लव स्टोरी आपको सुनाएंगे, और आई होप उस पर्सनालिटी को आप जान के समझ जाएंगे कि यार इनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो एक आज जो लव स्टोरी है वो बहुत ख़ास है, एक ख़ास इंसान की है, जिसके बारे में मैं बताने के बाद आप लोग को ये कहूँगी कि उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। फ़िलहाल आप लोग बताइए कि देखिए, प्रेम के तो अलग अलग रूप होते हैं, हर जगह अलग अलग फॉर्म में हमें मिल जाता है, पर उसको कंटिन्यू रखने का, जैसे कहते हैं ना कि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते समय हमें ये पता चलता है कि इंसान बड़ा तब होता है जब वो इमोशंस को समझने लगता है, और इमोशंस में भी सबसे खास इमोशन लव माना जाता है, क्योंकि लव ही एक ऐसा इमोशन है जो और इमोशंस को अपने साथ बांध के रखता है। गुस्सा भी अगर आप किसी से प्यार से जताएंगे तो उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, आप कितना भी मतलब टेंशन में हैं तो प्यार आपके सामने कोई जताएगा तो
आपका वो दुख दूर हो जाएगा या टेंशन दूर हो जाएगी। तो एक ऐसा इमोशन जो सब इमोशंस को कंट्रोल करता है वो लव है। तो आप ये भी जानते ही हैं कि हमारा जो विकास है, हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारी जो ग्रोथ है, वो अलग अलग चरणों में होती है एक तरह से। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट सब बोलते हैं, पर जब हम कुछ विशेष की बात करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि नहीं, विकास भावनाओं का जब स्थिरता आ जाए तो उसको माना जाता है। तो प्यार की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम समझ गए हैं, इसीलिए हम बड़े हो गए और इसीलिए हमें डिफरेंस करना आता है कौन हमारे लिए खास है, कौन हमारे लिए खास नहीं है। गुड इवनिंग लवली, कैसी हैं आप? और मैं तो बहुत दिन से आ रही हूँ आपसे, मुकम्मल आज मुलाकात हो रही है। तो चलिए एक प्यारा सा बढ़िया सा गाना सुनते हैं इस एनर्जी वाली इवनिंग को और एनर्जेटिक बनाने के लिए। और आज लव सॉन्ग्स की बारी है, तो लव सॉन्ग्स में भी मैं बढ़िया से जो गाने होंगे उन्हीं को प्ले करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो सुनते रहिए म्यूजिकल शाम में, आप साथ हैं हमारे, आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी ज्ञान स्लिटी 9.6 FM पर। यह है गोंडा शहर की धड़कन, धड़कने जो सिर्फ आपके लिए जमा है।

थे। जब लव सॉन्ग्स की बात करती है तो चाहे वो पप्पू की आवाज़ हो चाहे वो अरिजीत की आवाज़ हो, दोनों ही आवाज़ों में वो ठहराव है जिसको हम महसूस करना चाहते हैं बार बार।

तो चलिए आज आप लोग के साथ फिर से शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सी कहानी के बारे में, जो शुरू तो होती है आपके अपने शहर जहाँ से आप सभी को लगाव है, यानी कि बिहार से। तो चलिए आगे बात करूँगी, लेकिन आप सभी को बता दूँ कि जैसे कहते हैं ना कि प्रेम के हर पहलू में हम सभी एक दूसरे के साथ दिखें, यही सबसे बड़ी प्रेम की कहते हैं ना कि सक्सेस होती है। और इस सक्सेस में हम सभी ने कभी ना कभी हाथ तो धोए होंगे, भले सक्सेसफुल हुए हों या ना हुए हों। उस बीच ये गाना जो आपके में कानों में जा रहा होगा, ये सिर्फ प्यार के लिए ही बनी कहानी पे बना है, जो कि इतिहास के पन्नों से धूल हटाती है। फिलहाल ये इमेजिनरी स्टोरी है, पर दिखाती है कि कैसे बहुत सारे दिल टूटे थे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलती हूँ कहानी के पृष्ठों की ओर, जहाँ प्रेम ही प्रेम आपको दिखेगा, लेकिन सरलता से दिखेगा, यानी कि सिंप्लिसिटी वाला लव। मतलब लव तो हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई हैं, बहुत हाई टेक सुनी है, और ऐसी भी सुनी है कि आज इतना धूम धड़ाके से अपने मतलब क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे दिखते हैं और अगले ही साल धूम धड़ाके से उनका ब्रेकअप सुनाई देता है। तो ऐसी नहीं है, बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है जिसमें जन्मों जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई जाएंगी और खुशी के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जाएगा, एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट किया जाएगा और मज़ा आएगा आपको। और अगर मैं कहूँ तो प्यार की कोई भाषा होती नहीं है, कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, बस ये दिल से दिल का एक सफ़र होता है जो आज मैं आप लोग को तय करवाने जा रही हूँ। दो दिलों का, दो सपनों का और एक रिश्ते का, जो हर परीक्षा में खरा उतरेगा। तो स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले तो एक थोड़ा सा मतलब बैक लुक लेके कहानी को शुरू करूँगी, उस इंसान के बारे में बताऊँगी जिसके बारे में आपको जान के मज़ा भी आएगा, और उनके बारे में जानना हर कोई चाहता है और एक ख़ास पर्सनैलिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मैं लव स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ पंकज त्रिपाठी की। सो पंकज त्रिपाठी का नाम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम माना जाता है। बॉलीवुड में एक सितारे हैं जो हर रूप में चमकते दिखते हैं और कई फिल्में उन्होंने की, कई वेब सीरीज़ की। पंकज त्रिपाठी जो हैं वो अपनी मतलब पहचान अपने दम पर बनाने वाले एक्टर बने हैं और हर रूप में वो एकदम सक्सेस के साथ सामने आए हैं। ऐसा नहीं उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया होगा, लाइफ में उनके संघर्ष भी अच्छा खासा रहा है। 5 सितंबर 1976 को जन्मे और जन्म स्थान है इनका बेलसड़, गोपालगंज जिला बिहार, और इनके पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी और माता का नाम हेमंती देवी। और इन्होंने राष्ट्रीय नाटक विद्यालय में काम भी किया है और इसी के साथ मतलब काफ़ी लंबा मतलब इनका वो रहा है, लोगों के सामने अपना प्रदर्शन इन्होंने बहुत अच्छा किया। सबसे पहले तो बात करूं कि ये भोजपुरी हिंदी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और अपने माता पिता के 4 संतानों में सबसे छोटे हैं। घर में खेती हुआ करती थी जब ये पैदा हुए। हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद त्रिपाठी जी पटना चले गए। उन्होंने वहाँ हाजीपुर स्थित होटल मैनेजमेंट के संस्थान से पढ़ाई की। उन्होंने थिएटर में भी काम किया और कॉलेज में राजनीति में सक्रिय रहते थे। हालांकि अभिनय में असफलता के डर से त्रिपाठी ने कुछ समय तक पटना के मौर्य होटल में काम किया था। बिहार के पटना में 7 साल रहने के बाद पंकज त्रिपाठी दिल्ली चले गए। वहाँ पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लिया और उन्होंने वहाँ 2004 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अच्छा, इसी दौरान इनकी जो कहते हैं ना कि लव स्टोरी भी शुरू हो गई थी। ये 11वीं कक्षा में पढ़ते थे जब इन्हें मतलब प्रेम का जो कहते हैं ना अनुमान लगा, 11वीं में थे और इनकी जो प्रेमिका हैं वो कक्षा 9 में थी। तो हमारे यहाँ यूपी बिहार में शादी के पहले एक फंक्शन होता है तिलक, शहरों में कई जगह नहीं होता है, इसको रोका एंड अलग अलग नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ यूपी बिहार में तिलक होता है, तिलकोत्सव।
तो एक तिलकोत्सव में दोनों ने एक दूसरे को देखा था और पंकज त्रिपाठी की फ़ोटो इनको मिल गई थी, इनकी प्रेमिका को, तो इन्होंने मतलब अपने बैग में रख ली और रोज़ स्कूल ले जाती थी। मतलब एक कहते हैं ना कि पहले के ज़माने का प्यार अलग होता था। तो धीरे धीरे इन लोग की मतलब कहते हैं ना कि दोस्ती बढ़ने लगी और अक्सर जब पंकज त्रिपाठी आते तो इनकी मम्मी कहती भैया कहो भैया कहो, लेकिन ये भैया नहीं कहती थी, आप कहती थी। मतलब भैया कह दिया तो रिश्ता गड़बड़ा गया ना। तो दोनों के घर वालों को नहीं पता था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि रिश्तेदारी नातेदारी ऐसा वाला कोई होगा, तो वहीं से मतलब खास बात ये थी कि घर वाले ये कह रहे थे कि ये दोनों एक ही घर के हैं, मतलब देखा जाए तो अटीदार पटीदार के हैं, तो देखा जाए तो भाई बहन लगेंगे। तो इसीलिए घर वाले बिल्कुल भी खिलाफ थे इस चीज़ के। और ये क्या करते थे, एक दूसरे से मिलने के छोटे छोटे बहाने ढूंढा करते थे, कभी पानी मांगना एक दूसरे के घर जाके, कभी कुछ कभी कुछ। पर कहते ना कि जहाँ प्यार को मुकाम मिलना होता है वो मिल जाता है। तो वो मुकाम मिला इन्हें आके 2004 में, यानी कि इनकी प्रेम कहानी को कहते ना कि एक पब्लिकली जो सहमति थी वो मिल गई एंड फाइनली फाइनली फाइनली इनके प्यार को मुकाम मिल गया, प्यार इनका हो गया। और इनकी जो प्रेमिका कम पत्नी जो कि आज की डेट में, उनका नाम मृदुला है एंड मृदुला इनसे बहुत प्रेम करती थी और इनसे हर दूसरे बहाने ढूंढा करती थी मिलने के। और कई लोगों ने मृदुला को चिढ़ाते हुए कहा कि ये तो बड़ा लगता है, इसके छोटे बड़े भाई से ब्याह कर लो तुम। मतलब दो सहेलियाँ इनको चिढ़ाती भी थी कि मतलब डिमोटिवेट इनको करती थी इनडायरेक्टली कि पंकज नहीं सही है, इनके अलावा बड़े वाला जो है वो सही है। लेकिन मन में प्यार जो था वो एक कहते ना बहुत सादापन था प्यार में, कोई हाईटेक कुछ नहीं देखना, कोई पढ़ रहा है पढ़ता रहे, प्यार हो गया तो हो गया। आजकल तो प्यार में प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, प्यार होता है बाद में, पहले प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। तो धीरे धीरे इनके प्यार में मतलब जो कहानी है वो करवटें लेने लगी और 1993 से इनका प्यार शुरू हुआ और 2004 में मुकम्मल हुआ। तो काफ़ी लंबा समय इन लोगों ने एक दूसरे को दिया जिससे फाइनली ये लोग एक दूसरे के हुए। और घर वालों को प्रेशर देखिए यूपी बिहार में कैसे होता है, लेकिन उस प्रेशर को ये लोग झेलते गए, लोगों की बातें सुनते गए। इधर मृदुला अलग अलग शादियों को मना कर देती थी, ये भी मना कर देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि इनकी शादी फाइनली तय होने वाली थी लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शादी तो नहीं करूँगा। और मृदुला कहती है कि जब इनकी दाढ़ी नहीं आई थी तब से मैंने इनको प्यार कर लिया था, मतलब ही वॉज लाइक बहुत यंग थे। तो एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे की पसंद को समझना और एक दूसरे को रुमाल देने के बहाने एक दूसरे को देखना, ये प्यार का अलग एहसास था जिस सिलसिले में पंकज और मृदुला दोनों सफल हुए और आज भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं। दोनों अपने प्यार के लिए मतलब एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बाकी हमने तो बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लव स्टोरीज सुनी है जो आज शुरू हुई और कल ख़त्म हो गई। हाँ, रेखा जी का केस अलग है, रेखा जी अमिताभ जी से अभी भी बहुत प्यार करती हैं। आपने सिलसिले मूवी देखी होगी जिसमें इन दोनों के प्यार को एकदम प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि घर वाले तो बहुत कुछ कहते थे कि पंकज ये तुम्हारी बहन है इसका पैर छुओ, लेकिन पंकज हमेशा कहते थे नहीं ये मेरी बहन नहीं है। तो ऐसे ही करके इन्होंने अपने प्यार को मुकाम दिया। फिलहाल आप बताइए कि पंकज त्रिपाठी की लव स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया इनकी कहानी के बारे में जान के। गुड इवनिंग के गुप्ता जी, तिरंगा कॉम्प्लेक्स से कैसे हैं आप, मैं तो एकदम मस्त हूँ। तो चलिए इनके प्यार की कहानी सुन ली और एक गाना भी हम लोग सुन लेते हैं, बहुत प्यारा सा गाना जो आजकल बहुत ही वायरल है। और सच में दीपाली की आवाज़ में इस गाने को सुनना एक कह सकते हैं ना फॉर्चून की तरह है। लेट्स एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

0: तो इतनी मतलब म्यूजिकल इवनिंग को एंजॉय करने के बाद अब फिर से बात होती है वहीं कि क्या सच में ऐसी भी मतलब लव स्टोरीज होती हैं जो इतने पुराने ज़माने से अभी तक मुकम्मल चल रही हों, और यहाँ मतलब आजकल तो प्यार पे कहते ना कि ब्रेकेज या ब्रोकेज का सबसे पहले लेबल लग जाता है, और मैं उसको ब्रेकअप बोल देती हूँ अब फाइनली। चलिए तो अब एक और कहानी जो मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी सी है, जिसको सुन के आप लोग का मन कहेगा कि हाँ कि इसको सुनना चाहिए। ये मैंने कई सालों पहले एक किताब मेरे पास थी उसमें पढ़ी थी, तो सोचा कि एक रियल स्टोरी तो एक रियल स्टोरी भी होनी चाहिए। कहानी का नाम था एक कप चाय और अधूरी का अधूरी मुस्कान। राहुल नेहा एक कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, एक दूसरे से मतलब बहुत सारी मतलब कहते हैं ना कि बातचीत होती थी। और राहुल जो था वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन शर्माता बहुत था। नेहा हमेशा मुस्कुराती थी, हंसती थी एंड हमेशा उसको छेड़ती रहती थी, पढ़ाकू पढ़ाकू पढ़ाकू कह के, चश्मिश कह के उसे चिढ़ाया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि कॉलेज की कैंटीन में नेहा के हाथ से चाय गिर गई। राहुल ने तुरंत अपना रुमाल निकाल के नेहा का हाथ साफ कर दिया। ये देख के उस दिन से सारे लोग कैंटीन में ये कहने लगे कि राहुल जो है वो नेहा को पसंद करता है। पसंद करता है या नहीं करता है नेहा को तो नहीं पता था। नेहा ने तो बस थैंक यू कह दिया और इन लोग की बातों को सुन के बहुत गुस्सा किया, और डायरेक्टली उसने ये कहा कि प्यार वो भी मैं इस राहुल से नेवर कभी नहीं करूँगी, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, ये पढ़ाकू ये चश्मेश। वहीं पे उसने सबके सामने ऐसा कहा। राहुल का तो मॉरल और डाउन हो गया इतना सुनने के बाद, मतलब अगर वो शर्मीला तो पहले से ही था, और इतना सुनने के बाद कहते ना कि उसका और मॉरल जो है वो गिर गया एंड उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कह सके। एंड उस टाइम पे उसका दिल ऐसा टूटा कि जैसे लग रहा था कि किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया। पर क्या करे, जो होता है वो होता ही है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। एंड उसका भी जुबीन वाला हाल हो गया कि जुबीन सोच रहा था कि इसकी दाल गलेगी, पर इसकी दाल गली नहीं। एंड फाइनली थोड़ा बेवफाई की खुशबू आने लगी, क्योंकि वो कुछ ही दिनों बाद एक दूसरे लड़के के साथ घूमने लगी। राहुल का पढ़ाई में इधर मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो दिल से उसे चाहता था और हर वक्त कोई मौका ढूंढता था कि किसी भी तरह मतलब वो अपनी मतलब प्रेमिका से बात करे, उसे मतलब नेहा से कहे कि यार प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। पर क्या करें, नेहा को तो अलग ही धुन सवार थी, उसको डैशिंग लुक वाला एक लड़का चाहिए था। एंड बस जुबीन के गानों के साथ हमारे प्यारे राहुल का जो दिल था वो जी रहा था। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना राहुल के लिए, फिर आगे देखते हैं क्या इनकी कहानी में यू टर्न आएगा या फिर कहानी ऐसी अधूरी रह जाएगी।
1: अदब गुरु जी।
2: अरे गले मिलो यार, कहाँ गायब हो गए थे? अपने गुरु जी को कभी याद ही नहीं किया या याद करने की फुर्सत नहीं मिली?
1: ऐसी कोई बात नहीं है गुरु जी।
3: बस कीजिए अब्बू, आप तो भाई को शर्मिंदा कर रहे हैं।
2: बैठो,
1: आप भी बैठिए
3: जी।
2: और
3: वाह भाई, आपने तो हमारे घर आने का नाम रोशन कर दिया, हमें तो नाज है कि आप हमारे घर आने से ताल्लुक रखते हैं।
2: अरे बस कर यार, कुछ चाय पानी का
3: क्यों
2: इंतजाम
3: नहीं?
2: कर
3: आयत, अरे कुछ चाय शाय लाओ भाई, देखो तो सही कौन आया है।
2: वो भी क्या दिन थे यार, तुम्हें देखकर सारी यादें ताजा हो गई, तुम्हारे गले की खनक और आयत की पायल की छनक, पूरा मोहल्ला गूंज उठता था।

कभी इस ओर कभी उस ओर चले जाते हो। मोहब्बत हमसे वफा गैरों से ये हुनर कहाँ से लाते हो। करवट बदल लेता हूँ मैं आजकल जो कभी मेरे ख्वाबों

और फिलहाल यही हाल था राहुल का भी, और वो भी कॉलेज में सिर्फ यही सोचता था कि यार ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। पर क्या करें, अपनी फैमिली का वो अकेला घर को संभालने वाला था, माँ किसी तरह पढ़ा रही थी, एंड फाइनली उसके दिमाग में आया कि उसे पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। फिर वो पढ़ाई करने लगा और जो देखता उसको इग्नोर कर देता। नेहा भी उससे मतलब प्यार तो करने लगी थी, क्योंकि उसने देखा कि पूरे कॉलेज में उससे बेहतर कोई नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शरीफ है, किसी तरह की कोई गलत आदत नहीं है। इंसान कहता ना कि इंसान को हीरे पन्ने की परख तभी होती है जब उसके हाथ से छूट जाता है। और अभी कॉलेज का थर्ड ईयर था और अब नेहा को ये रियलाइज़ हो गया था कि उसे राहुल को ही सिलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि उसने दो साल में ये देख लिया था कि कॉलेज में उसके लायक कोई नहीं, सब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, सब उसको परेशान कर रहे हैं। एंड फाइनली एक दिन जब फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे तो उसने खुद ही जाके राहुल से कहा, राहुल आई एम सॉरी। राहुल ने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसने कहा चलो कैंटीन में चाय पीते हैं। राहुल ने बोला कि मैं चाय नहीं पीता। उसने कहा प्लीज़ एक कप चाय पी सकते हैं हम। राहुल साथ में गया, उसने चाय पी। बहुत सारी चीज़ें नेहा ने राहुल से कही कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए क्या सोचते हो, उस समय मैं नादान थी, बहुत कुछ कहा। पर राहुल ने कहा कि अभी मेरा करियर बनाने का समय है, मैं इन सब चीज़ों को टाइम नहीं दूंगा, अगर तुम इंतज़ार कर सकती हो तो प्लीज़ करो, क्योंकि अभी मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है और मैं इन सब चीज़ों में अपना करियर ख़राब नहीं कर सकता। कॉलेज ख़त्म हुआ, नेहा के परिवार, क्योंकि नेहा बहुत एवरेज से थी पढ़ने में, उसके परिवार वालों ने कहा कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। धीरे धीरे उसकी शादी देखने लगे, वो रह रह के राहुल से सीधे बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने सबके सामने उसको इंसल्ट किया था। उसने राहुल को एक दिन कॉल किया और कहा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और नेहा बहुत रो रही थी। राहुल ने कहा अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो किस्मत हमें ज़रूर मिलाएगी। समय बीत गया, राहुल भी अपने अच्छे पैकेज के साथ जॉब करने लगा, पुणे शिफ्ट हो गया। जब वो सब कुछ सेटल कर चुका था उसने नेहा को कॉल किया, उधर से जवाब आया कि नेहा तो भी पार्लर गई हुई है। उसने पूछा कि पार्लर, बोला आज उसकी शादी है ना, वो पार्लर गई हुई है। इतना सुनने के बाद जैसे लगा कि राहुल से फिर उसकी दुनिया किसी ने छीन ली हो। वो स्टेशन पे खड़ा था वापस जाने के लिए, जाने से पहले वो एक कॉल करना चाहता था। स्टेशन पे बैठे बैठे उसकी मुलाकात जो मुकम्मल होने वाली थी वहीं हमेशा के लिए रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसने कहा किस्मत पे तो भरोसा था पर इंसान पे नहीं। मुझे तो पता था कि मैं अपने प्यार के पास वापस चला जाऊंगा, पर जिंदगी जो कहती है ना वो ऐसी ही होती है। नेहा एक बार फिर छोड़ के चली गई थी राहुल को, एंड नाउ दे वर अलोन। ये प्यार का रिश्ता टूट गया था। फिलहाल मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि प्यार के मामले में आप लोग का क्या मतलब ओपिनियन है। प्यार जो है वो पहली नज़र वाला ही माना जाता है, या फिर प्यार को हम दूसरा मौका दे सकते हैं, या प्यार जो है वो किसी भी तरह से नापा तोलना चाहिए, मतलब कि सामने वाला किस लायक है कैसा है, कि किसी एक खूबी को देख के हम प्यार नहीं उससे कर सकते। हाँ, खूबी से मुझे याद आया कि हमारे गोंडा शहर के एक बहुत प्रसिद्ध इंसान, जिनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, हमारे गोंडा शहर की जन्म मतलब उनकी जन्मभूमि रही, कर्मभूमि भी थोड़ी बहुत रही, अवध ओझा जी को तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी लव स्टोरी की है। वो एक्चुअली में बचपन से ही मतलब थोड़ा सा एवरेज के नहीं कह सकते कि परिवार में थोड़ा सा अलग रहते थे, थोड़ा जिद्दी टाइप के थे, थोड़ा सा गुस्सैल थे, तो घर में कोई भी मतलब घर में तो उनके लोग पसंद करते, आसपास के लोग इन्हें कम पसंद करते थे। तो इनको भी प्रेम हो गया, इनकी प्रेमिका ने इनका साथ दिखाया। जब सबने कहा कि ये लड़का ख़राब है, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, लेकिन उन्होंने उस समय उनसे शादी कर ली जब इनके पास राशन भरने के घर में पैसे नहीं हुआ करते थे। एंड फाइनली दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया, एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट किया, एक दूसरे का साथ निभाया, धैर्य रखा, एंड फाइनली आज रिजल्ट सबके सामने है। तो हर इंसान की अगर हम उसके अंदर खूबियों को ढूंढने लगेंगे ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान मिलेंगे जिसके अंदर सिर्फ खूबियाँ ही हों। हर इंसान अच्छी और बुरी चीज़ों से बना हुआ है, और मुझे लगता है कि गुड साइड हमें देख के
उसका हर चीज़ भूल जानी चाहिए। और हाँ, उसकी ऐसी चीज़ें जो उसके लिए नुकसानदायक है, उसके आपके रिश्ते के लिए नुकसान है, उसके लिए उसको मतलब समझा सकते हैं, पर उसे जज नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं कि प्यार जजमेंटल होना चाहिए कि नहीं। लेट्स एंजॉय नेक्स्ट सॉन्ग, जो कि अगेन हमें सिखा देगा कि प्यार कैसे होता है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ आर्यांश, क्या दिक्कत है बेटा? आऊँ आऊँ? तुम तो कह रहे थे कि आज जल्दी काम कर लोगे। ये मुझसे बोला कि मम्मा मैं जल्दी काम कर लूँगा तो लेने आ जाओगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी, तुम काम कर लेना, मैम से कॉल करा देना। क्या हुआ? तुम खेलने गए हो, पढ़ने गए हो, दिन भर घर पे क्या किया है ना तुमने? मैं आऊँगी तो दो थप्पड़ खींच के लगाऊंगी और घर लेके नहीं जाऊँगी, याद रखना। और नाना चले गए हैं घर, भेज दी हूँ नाना को घर, समझे? हाँ, अगर चाहते हो कि नाना वापस आ जाए तो वर्क कर लो बैठ के। ये जानती हो निधि, नाना आए हुए हैं तो ये इसको थोड़ा नशा चढ़ा हुआ है, वही नाना का।

आप सभी को पता है कि हम बात कर रहे हैं प्यार मोहब्बत वाली। फिलहाल आप लोगों से जानना चाहती हूँ, मनी, सविता जी, गुड इवनिंग, सारे लोग आ गए हैं। आप लोग बताइए कि क्या प्यार में हमें जजमेंटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी से सोच के बताइए कि अगर आपको कोई प्यार में जज कर रहा है, आपकी मतलब खूबियों को और कमियों को बता रहा है, किस हद तक सही है या नहीं, जल्दी से सोच के बताइए।

इस गाने को सुन के यार कितनों ने दिल हारे थे यार। पुराना गाना है लेकिन मजेदार है। गुड इवनिंग अगेन। और मुकेश कैसे हैं आप? और सविता जी ने बिल्कुल सही कहा कि खूबियां और कमियां बता रहा है प्यार। हाँ, दोनों को एक्सेप्ट करते हुए प्यार को करना चाहिए, खूबियों को और कमियों को, और इसीलिए प्यार खास होता है। एंड सच्ची बताऊँ, इसी को समझना चाहिए हम लोग को, इसीलिए हमको समझना चाहिए दूसरे को। खास तौर पे हम लोग के बीच में भी देखिए रिलेशन है प्यार का, पर जजमेंटल नहीं है। हम लोग एक दूसरे को हर तरह से एक्सेप्ट करते हैं, है ना? यस। एंड प्यार में अगर दोस्ती जैसा हो ना रिलेशन, तो मुझे लगता है कि प्यार बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। दोस्ती मतलब एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। दोस्त क्या करते हैं? दोस्त यही तो करते हैं, हमारे हर सिचुएशन में हमारी बैकबोन बन के हमारे साथ रहते हैं। और दोस्त बन के हम किसी की लाइफ को बहुत फैसिलिटेट कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उसके ऊपर ये दिखाएं कि हम तुम्हारे पार्टनर हैं। सच्ची बता रही हूँ कि दोस्ती वाला प्यार जो होता है उसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए दोस्ती वाला प्यार आप लोग के साथ मेरा बरकरार रहेगा। गुड इवनिंग इम्तियाज, कैसे हैं आप?

तो चलिए, अजब प्रेम की गजब कहानी हम लोगों ने सुन ली, और दो नहीं तीन तीन गजब गजब कहानियाँ सुनी, और दोनों ही गजब कहानियों ने हमें गजब सस्पेंस में डाला कि भाई एक जो ना पूरी होने वाली कहानी थी जो 1993 शुरू हुई वो 2004 में पूरी हो गई, एक वो जो 4-5 साल के गैप में ही मतलब बिखर के रह गई। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जितना ज़्यादा एक दूसरे को समझेंगे उतना ज़्यादा हमारे प्यार की जो ड्यूरेबिलिटी है और वो मतलब उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फन एंड गेम खेल लेते हैं और आप लोगों के साथ एंजॉय कर लेते हैं, एंड कुछ फास्टेस्ट 5 क्वेश्चन पूछूंगी जिनका आंसर आपको देना होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ और गाने के बीच की लाइन सुनाऊंगी, आपको गेस करना है कि ये गाना कौन सा है और किस फिल्म का है, और जो गेस करेगा और बताएगा कि इसमें लव स्टोरी क्या थी कैसी थी, थोड़ी बहुत भी अगर आपको जानकारी है, अदरवाइज मूवी का नाम और गाना गेस कर लेगा तो उसको उसकी पसंद का गाना सुनने को मिलेगा। तो अगर आप रेडी हैं तो फटाफट से सुनने के लिए तैयार हो जाइए, और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ बहुत ही प्यारा सा गाना जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ इसको गेस करना चाहिए। बीच से मैं आपको लाइन सुनाऊंगी।

0: तो चलिए बताइए ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का गाना है। अगर आप गेस कर लेंगे तो आपको अपनी पसंद का गाना सुनने को मिलेगा। यार ये बहुत बड़ी चीज़ है, दोस्त बहुत मस्त होते हैं। यस इम्तियाज़ जी देखिए समझ रहे हैं हम। ठीक है मैम अपना बताइए, हॉरर स्टोरी किस दिन सुनाइए। लव स्टोरी से हट के लव, अच्छा हॉरर लव स्टोरी सुनाऊँ तो कैसा रहेगा। तो चलिए अगले ट्यूज़डे हम एक हॉरर लव स्टोरी सुनेंगे जिसको सुन के आपके दिल का हाल क्या होने वाला है आप बताइएगा। फिलहाल के लिए गाना आप लोगों ने गेस कर लिया तो मुझे जल्दी से बताइए, और जो आंसर दे देगा वो अपनी पसंद का गाना सुन लेगा। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई मतलब आंसर हो नहीं सकता है। मैंने गाने के बीच की लाइन सुनाई है, आपको बस गेस करना है कि ये कौन सा गाना है। तो चलिए मोस्ट ट्रेंडिंग गाना हम लोग भी सुन लेते हैं, मस्कारा लगा लेते हैं और ये गाना एंजॉय करते हैं।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप?
0: इम्तियाज़ जी आपने मूवी का नाम तो सही गेस किया, गाने की जो टाइटल लाइन है वो गेस करिए और फरमाइश कर दीजिए।

तो भाई हमने ये गाना तो सुना ही, लेकिन आपको पता है क्या, इसी की तरह और बहुत सारे गाने हैं जिनको सुन के लगता है कि वो इसी का पार्ट है। मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले इम्तियाज जी की फरमाइश तो सुन ली जाए। इम्तियाज जी, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं जरा जल्दी से बताएं और जल्दी से हमें भेजें, जिससे हमें पता चल सके और आपका हम गाना सुना सकें। इसी की तरह का एक गाना है, आपने सुना होगा जब भी मेट का, कत्तियाँ करूँ कत्तियाँ करूँ तेरा रूँ कत्तियाँ करूँ तेरा रूँ, मतलब वो गाना इस गाने का भाई बहन लगता है, यानी कि मस्कारा वाले गाने का। फिलहाल आप लोग बताइए आपको लगता है कि नहीं, तो चलिए हम भी आगे ऐसे ही आप लोग को एंटरटेन करते रहेंगे। फिलहाल इम्तियाज़ जी की फरमाइश तो मुझे दिख नहीं रही है, जब वो फरमाइश करेंगे तब उनकी फरमाइश हम लोग सुनेंगे। लेकिन अगला गाना मैं आपको सुना देती हूँ, जिससे आप लोग गेस कर सकें कि ये गाना कौन सा है। अब थोड़ा नया पुराना दोनों सुनाऊँगी, जैसे कि आप लोग को मतलब प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप लोग गेस कर सकें। तो चलिए गेस करिए आप लोग।

अब आपको बताना है ये गाना कौन सा है। फिलहाल मैं आपको ये गाना नहीं सुनाने वाली हूँ, आप गेस कर देंगे इसकी मूवी का नाम और इस मूवी का गाना कौन सी मूवी का है, तो आप लोग को ये गाना सुनने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप मेरी पसंद का गाना सुनिए, जिसको एंजॉय करने के बाद आपकी शाम रंगीन तो हो ही जाएगी और साथ ही साथ एंटरटेनिंग भी हो जाएगी। तो फिलहाल आप लोगों ने एकदम अच्छे अच्छे मतलब हर एरा के गाने सुन लिए हैं, और अभी एक और बढ़िया सा गाना है जो सुन के आपको मज़ा आ जाएगा, और ऑफ कोर्स आपकी पसंद मेरी पसंद हमेशा से हमारी प्लेलिस्ट में धुरंधर के कई गाने रहे हैं 2026 में, तो ये गाना कैसे पीछे रह सकता है। लेट्स एंजॉय।

तो इस गाने को सुनने के बाद अब जो जिस गाने को सुनने की बारी है वो है दीवाने हैं वेलकम टू द जंगल लेट्स एंजॉय द फरमाइश ऑफ इम्तियाज। और इसके बाद मैं देखती हूँ किसी ने गाना गेस किया कि नहीं।

0: प्राण प्रिय तुम किसन हो मैं हूँ राधा।
1: तो अब ये संगम क्यों हो आधा? फिलहाल आपने जिस मूवी का गाना बताया वही गाना प्ले किया गया और आपने लिंक भी नहीं भेजा था, तो इसी वजह से वो गाना प्ले हुआ। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो उसी फिल्म का गाना था। एंड चलिए इसी के साथ अब इस शाम को यहीं विराम लगाते हैं और हम लेते हैं आप लोगों से विदा। और आप सभी को इस शाम के साथ अब विदा करने का टाइम आ गया है। और जैसे कि आप सभी ने आज सुना कि हाँ प्यार क्या है, प्यार के बिना क्या होना चाहिए और प्यार के साथ क्या होता है, प्यार अगर सच्चा हो तो क्या होता है, प्यार सच्चा ना हो तो क्या होता है, तो हर सिचुएशन को हमने समझा। तो कल हम आपके साथ शुरू करते हैं शाम की नई रंगीन कहानी, क्योंकि कल हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, कल आप लोग एक दूसरे के साथ जुगलबंदी करेंगे। तो कल लड़के और लड़कियों की टीम बिल्कुल लाइव रहना आप लोग, क्योंकि हम कल आप लोग के साथ सुनेंगे एक प्यारा सा मतलब अंताक्षरी का प्रोग्राम, जिसमें दोनों ही टीमें अपनी अपनी जो कहते हैं ना टैलेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो तब तक के लिए बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन कैंस 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, ये है आपका शो गोंडा मैसेज मसाला आरजू बीना वाला विद योर आरजू बीना।

0: सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: नहीं बताया?
1: You know you've been my best buddy since forever, right?
2: मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं।
3: So very very good evening and welcome in your show for my Shivi Dwar, just simple who is not so simple. Stay tuned everyone, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धुन।

0: लगी।
1: सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हमेशा की तरह जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। जो आपका गीत, आपके जज्बात, आपके नाम, आपका और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी बात और जज्बात मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनिल वर्मा जी सैदापुर से, लवली सिंह, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, केके गुप्ता तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, इट्स कुमार एमपी रीवा से, नवीन राजपूत एमपी से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो दोस्तों क्या कह रहे हैं आप सब, चलें क्या हमारे आज की पहली फरमाइश की तरफ, चलते हैं बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, मींस जग्गू दादा। और उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि नवीन राजपूत जी, राधे राधे, आपको मैंने बहुत दिनों बाद देखा है, तो कैसे हैं, सब बढ़िया है ना, सही सलामत, ऑल इज गुड नो। सो चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताना अपना हाल चाल। फिलहाल इंजॉय करते हैं ये पहला वाला गाना। और हमारे पास में पहली फरमाइश है दोस्तों अनिल वर्मा जी की सैदापुर से। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। सो इंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में प्यासा सावन का ये सुपर डुपर हिट नगमा हमारे अनिल वर्मा जी की फरमाइश पे जो की है सैदापुर से। और ऐसे ही अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की तरफ।

तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है और अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। लता जी की आवाज में प्यासा सावन का ये नगमा हमने एंजॉय किया है दोस्तों, अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है सैदापुर से। बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले अनिल वर्मा जी ने एक छोटा सा मैसेज भी दिया है। इनका कहना है कि रावण का घमंड पल भर में मिट्टी में मिला दिया, अपनी एक पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। कोई क्या मुकाबला करेगा मेरे महावीर की शक्ति का, जिन्होंने अपनी छाती चीर कर श्री राम को दिखा दिया। सभी को बड़े मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सो आपको भी हम सभी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले दिल से आपका भी स्वागत है के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। सो एंजॉय कर लेते हैं अब अगली फरमाइश। लवली सिंह को सुनना है गाना ये दोस्ती तेरे दम से है। सो एंजॉय करते हैं ये फ्रेंड्स फॉरएवर वाला सुपर डुपर डुपर हिट नगमा उदित नारायण की आवाज में हमारे लवली सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुमताज अंसारी जी गोंडा से।

ये दोस्ती तेरे दम से है, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेंडशिप फॉरएवर वाला नगमा, किसकी फरमाइश पर? लवली सिंह की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। उनको सुनना है मेला मूवी का गाना, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा हमारे सुरेंद्र जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड, आई लव दिस सॉन्ग।

व्हाट अ लवली सॉन्ग नो. कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं ना दोस्तों कि मन होता है नहीं कि कितना भी लंबा गाना हो लेकिन सुनना तो पूरा है, ऐसा मन ही नहीं होता कि स्टॉप लगा ही दिया जाए, है ना. सो हमने एंजॉय किया ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा मेला मूवी का, किसकी फरमाइश पर, सुरेंद्र जी की फरमाइश पर, जो कि है गौरा चौकी से. नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश.

हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी? अगली फरमाइश हमारे पास में है केके गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। और केके गुप्ता जी को तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से दिल से सुनना है गाना बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। तो कुमार सानू, अलका याग्निक और कविता जी की आवाज में इंजॉय करते हैं संग्राम का ये नगमा केके गुप्ता जी की फरमाइश पर।

और बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हमने एंजॉय किया कुमार सानू अलका याग्निक कविता जी की आवाज में संग्राम का ये नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की एमपी रीवा से। इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है खिलाड़ी 786 का गाना लॉन्ग ड्राइव पे चल। सो एंजॉय करते हैं ये अक्की का गाना हमारे इट्स कुमार की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अरमान पटेल नगर गोंडा से और विजयपाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से आपका भी स्वागत है। सो स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

लॉन्ग ड्राइव पे चल मेरे नाल सोड़िए, हमने एंजॉय किया मीका सिंह का ये वाला गाना, हिमेश रेशमिया का गाना इट्स कुमार की फरमाइश पर जो की है एमपी देवासी। नाउ लेट्स गो टू अगली वाली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है नवीन राजपूत जी की एमपी से, और बहुत दिनों बाद ग्रेट ऑपरेटर नवीन राजपूत जी को, जो कि हैं ग्राम बासला तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से, और उनको सुनना है नगमा फिल्म छुपा रुस्तम का टाइटल ट्रैक तो निकला छुपा रुस्तम। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा अलका याग्निक जी की आवाज में हमारे ग्रेट ऑपरेटर नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो अलका याग्निक जी की आवाज में हमने इंजॉय किया है ये मेलोडियस नगमा नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर जो की है ग्रेट ऑपरेटर एमपी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अरमान की पटेल नगर गोंडा से, और अरमान को पटेल नगर गोंडा से सुनना है लैला मजनू मूवी का सुपर डुपर हिट नगमा जो कि है मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। तो लता जी की और मोहम्मद रफी जी की आवाज में इंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा अरमान की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

एंजॉय किया है इन नंगमा अरमान की फरमाइश पे जो की है पटेल नगर गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगली वाली फरमाइश की तरफ और फटाफट से बिना किसी देरी के बढ़ते हैं दोस्तों हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है जग्गू दादा की मींस जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना घूंघट की आड़ से दिलबर का। सो एंजॉय करते हैं हम है राही प्यार के मूवी का कुमार सानुअल का याग्निक की आवाज में ये 90s का सुपर डुपर हिट नगमा। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़, आपका स्वागत है, स्टे ट्यून्ड।

जब तक ना पड़े आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। हमने एंजॉय किया है कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये 90s का सुपर डुपर हिट नगमा हम है राही प्यार के मूवी का जग्गू दादा की फरमाइश पर। और इस नगमे को सुन के तो मुझे बस कुछ याद आ रहा है दोस्तों, कहना है कि रात को रात का तोहफा नहीं देते, रात को रात का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते। हम तो तुम्हें चांद भी दे देते मगर, हम तो तुम्हें चांद भी दे देते मगर, चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना तुझे देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी खता है। सो एंजॉय करते हैं रंग मूवी का ये खूबसूरत सा नगमा अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में, थोड़ा सा दर्द भरा, थोड़ा सा प्यार वाला, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। हमने एंजॉय किया है ये 90s का थोड़ा सा सैड वाला और बहुत सारा लव वाला सॉन्ग कुमार सानुअल का यानी की आवाज में। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। उनको सुनना है गाना कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। एंजॉय करते हैं ये नगमा और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी के न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो मिलते हैं सीधे 9 बजे, कहीं मत जाइएगा, यही बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। पेट पूजा करके आइएगा अगर अभी तक पेट पूजा नहीं किया है, क्योंकि कहना है बड़े लोगों का कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मिलते हैं सीधे 9 बजे, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।

0: मुख्य समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, जोर मानसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
4: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
4: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
4: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की और बढ़ना चाहिए।
5: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चलूं।
1: सो एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल आपके अपने शो फरमाइशी में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो ब्रेक के बाद आप लोग आ चुके हैं, मैं भी आ चुकी हूँ, और आई एम श्योर कि आप सभी ने पेट पूजा कर लिया होगा फाइनली। अब सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, सुकून, और फिर इसके बाद में सोने का ही वक्त होगा, है ना? सही कहा ना मैंने? सो अगर पेट पूजा हो चुका है और दुनिया भर के जो भी थे थोड़े बहुत देश दुनिया के खबर उसको भी हमने सुन लिया है और फिर से हम एंटरटेनमेंट की महफिल में आ चुके हैं, तो क्यों ना चले हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। हाँ, सो अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सबीहा की, और सबीहा को सुनना है प्रिंस मूवी का गाना तेरे लिए। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा एक बार फिर से, लेकिन इस बार सबीहा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया है प्रिंस का ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा आतिफ असलम और श्रेया जी की आवाज में। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, चलेंगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड। अगली फरमाइश तो हमारे पास में है चांदनी की, एंजॉय करेंगे चांदनी की फरमाइश, लेकिन हमारे एक लिसनर का क्या खूब कहना है, इनका कहना है कि ये चांद तारों की बातें चांद तक ही रहने दो, अब ये प्यार मोहब्बत की बातें ख्यालों में ही रहने दो, बहुत रोक लिया हमने आपको हाथ थाम कर, अब तो हमारे मिलने की बात अब हमारे किस्मत पर ही रहने दो। सो मैं इसका कुछ जवाब देना चाहूँगी, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आपने जो किस्मत की बात की है, चांद तो बहुत हो गया, चांद तारों की बात की है, इस पर बस यही कहना चाहूँगी कि किस्मत की लकीरों में क्या लिखा है ये तो खुदा जाने, किस्मत की लकीरों में क्या लिखा है ये तो खुदा जाने, पर हाथ थामा है आपने तो फैसला भी हम मिलकर ही करेंगे। और ये जो मिलने बिछड़ने की बातें कर रहे हैं साहब, ये तो बस बहाना है, हम तो आपके ख्यालों में ही रहकर मुकम्मल रहेंगे। सो एंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में चांदनी की, उनको सुनना है गाना नित खैर मंगा। सो रेड मूवी का ये सुपर डुपर हिट नगमा, एंजॉय करते हैं चांदनी की फरमाइश पर, स्टे ट्यून्ड।

बहुत ही खूबसूरत सा नगमा नित खैर मंगा सोनिए मैं तेरी दुआनी कोई होर मंगला। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश को एंजॉय करने के लिए? वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मनीष शर्मा फ्रॉम कोरासा गोंडा। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मैंने प्यार क्यों किया मूवी के गाने की, और उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाज़ में हम इंजॉय करते हैं ये बहुत ही प्यारा सा नगमा साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में। और ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई है दोस्तों तानिया की तरफ से जो कि हैं गोंडा से, माधोपुर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

या कलाई में हमने एंजॉय किया है मैंने प्यार क्यों किया मूवी का ये गाना और इतना आ रहा है अलका याग्निक की आवाज में। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और जानते हैं अगली फरमाइश किसकी है। अगली फरमाइश है संतोष कुमार जी की गिलौली से, और गिलौली से संतोष कुमार जी को सुनना है गाना क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तो हम भी आप सभी को बहुत प्यार करते हैं और आई नो आप भी हमको बहुत प्यार करते हैं, सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। आई लव दिस सॉन्ग।

सो हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवे नगर गोंडा से, और मोहित को मालवे नगर गोंडा से सुनना है गाना सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे और एक दूसरे को हम सोने ना दे। स्टे ट्यून्ड।

बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों कृष्णा वर्मा की, और कृष्णा वर्मा को सुनना है गाना मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा, इसी के साथ में लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मिलते हैं कल।

0: आग नफरत की हमारे शहर में लग न जाए, आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में 500 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
12: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
13: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
14: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
13: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
15: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
16: मतलब?
15: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
17: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
18: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
19: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
20: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
19: सच में? क्या खास है वहाँ?
20: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
19: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
20: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
19: और फोटोग्राफी वगैरह?
20: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
19: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
20: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
19: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, यह है गोड़ा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे गज़ल और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, आज के इस मुबारक मौके पर, बहुत ही शानदार दिन है, बात करेंगे शायरी की। वास्तव में कविता ने जन्म कैसे लिया, शायरी कैसे आई, गज़ल कैसे आई, सबके अलग अलग तरीके हैं। सब शायरों का अपना अलग अलग मत है कि शायरी के लिए क्या होना चाहिए। और इसकी शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि जो दिख रहा है उसी के अंदर, जो दिख रहा है उसी के अंदर, जो अनदिखा है वो शायरी है। जो दिख रहा है उसी के अंदर, जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है, तो क्या लिखूं मैं। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है, तो क्या लिखूं मैं। वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं, तो क्या अजब है। अगर दरिया समंदर में गिरते हैं तो क्या अजब है, कोई खास बात नहीं। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं, तो क्या अजब है। वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है, वो शायरी है। जी हाँ, शायरी मतलब कुछ ऐसा जो अनदिखा हो, कुछ ऐसा जो जिसको स्पर्श न किया गया हो, कुछ ऐसा जो दुनिया की भीड़ से अलग हो, वो कविता है, वो गज़ल है, वो शायरी है। जी हाँ, आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता अनिल शास्त्री जी, दादा चरण स्पर्श आपको जुड़ चुके हैं। मुकेश यादव जी अपने पुराने अंदाज के साथ, गुड इवनिंग सर, लव यू, आई टू लव यू। मुकेश यादव जी कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और सविता शास्त्री जी हैं, शुभ संध्या संध्या जी, चरण स्पर्श आपको। चलिए अब सुनाते हैं आपको एक प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। मुकेश लिखते हैं वेरी ब्यूटीफुल गजल, और कायनात जी आ चुकी हैं। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। क्या बात है भाई, याद बहुत प्यारी चीज़ है और आनी भी चाहिए। माई मोस्ट सरल गजल, चांदी जैसा रूप है तेरा। जी ब्यूटीफुल गजल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। और क्या बात है चरणस्पर्श शिल्पी जी, मतलब इस प्रकार से आप महीने में अगर एक बार दर्शन देती रहेंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे, अब आप बताइए कैसे हैं आप। जी हाँ, परमात्मा जैसा रखे और श्रोताओं की जैसी कृपा हो, बस वैसे ही हैं। उम्मीद है कि कल आपकी आवाज़ नहीं मतलब खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिलेगी। जी आशीर्वाद है आपका, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छी होंगी। बात कभी कभी हम करते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया, और कभी कभी इंसान सोचता है कि अगर हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो फिर कुछ छूटा भी। आज हम 21वीं सदी में हैं और बहुत आगे बढ़ाए अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर हम अपनी पिछली ज़िंदगी को उठाकर देखें तो इस समय जो लोग 40-45 के आसपास हैं, उन्होंने टीवी देखी होगी जिसमें DD1 आता रहा होगा, वो ऊपर एंटीना लगाना, टेलीफोन देखा होगा जिससे नंबर मिलाया जाता है, मतलब लाइन से लेकर के और आज सेलफोन तक कि हम सामने वीडियो कॉल कर रहे हैं। एक ऐसी लगता है कि मतलब एक युग बदला, एक एरा बदल गया। लेकिन अगर हमने कभी कुछ खोया भी तो कुछ पाया भी। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हम ना पा सकें। आपने कभी एक प्रचार सुना होगा सर्फ एक्सल का, ढूंढते रह जाओगे, वहां से ये कविता है, ढूंढते रह जाओगे। क्या चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। अब क्या क्या हम ढूंढते रह जाएंगे, जरा देखिएगा। यह आपके और हमारे आसपास का दृश्य है, इसे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप हमारी बात से सहमत या असहमत हों, और आपकी जैसी प्रतिक्रिया हो जरूर बताइएगा। आँखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के दो पल, हर नल में जल, संतों की बानी, कण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा, और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे। कितने बच्चे हैं आज कुछ जो दादी जिनको कहानियां सुनाती हैं, लोरियां सुनाती हैं। हो सकता है मैं, हमको तो याद है हमारे पिताजी, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, सो जा तू भी सो गई रंग भरी शाम। वो एक दौर देखा है कि मतलब लोरियां सुनाती थी मैं। आजकल तो बच्चों को जो है वो फोन दे दिया जाता है, और ये बड़ी खराब चीज़ है। पेरेंट्स बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, चॉकलेट ले आओ, वो ये ले आओ, पापा आइसक्रीम ले आना, वो लेकर चले आते हैं। लेकिन कभी अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो वो डांटते भी हैं, और कहीं कहीं तो हल्की सी चपत भी लगा देते हैं। अब बच्चे ने फ़ोन देखा, मज़ा भी आ रहा है उसको, और फ़ोन की एक ख़ास बात है, वो डांटता भी नहीं है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा लगाव रखने लगते हैं मोबाइल से, सेलफोन से। कभी इसको कभी आप, मैंने ऑब्जर्व किया है जो आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो फोन है, वो डांटेगा नहीं।
चलो अब खाना खा लो, चलो अब दूध लो, सब बहुत हो गया, बहुत देख लिया, फ़ोन नहीं कहेगा कि आपने बहुत देख लिया, पेरेंट्स कहेंगे दादी की कहानियाँ ख़त्म हो गई साहब। गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के घर जाना, वो 10 रुपये 20 रुपये पाना, उसका एक अलग क्रेज़ था। घर में मेहमान आजकल समय ही नहीं है किसी के पास, आए एक रात रुके दो रात, इसके पश्चात कहाँ, सब अपने आप में व्यस्त हैं। तो आँखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के दो पल, हर नल में जल, संतों की बानी, कण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे और क्या नहीं मिलेगा, भरत सा भाई, एक बिस्से जमीन के लिए दो भाई लड़ पड़ते हैं। और एक वो जिसने कहा कि 14 वर्ष के भीतर अगर आप अंदर नहीं आ गए तो उसी दिन आत्मदाह करूंगा। आपके पास ठीक है, आप नहीं लौट रहे, जाइए, लेकिन अगर 14 वर्ष बीते और आप नहीं आए तो जलती हुई चिता में जान दे दूंगा। आता है प्रसंग कि बीते अवध जो जाई हैं, वो मिलत जियत न पई हो वीर। तो भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में सहनाई, बस्ती थी अगर आपको याद होगा तो, शादी में सहनाई, बुरे में बुराई, सच में सच्चाई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे, समय नहीं है किसी के पास साहब। आगे, अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, चैट जीपीटी के जमाने में स्टूडेंट इज मोर ब्रिलियंट देन टीचर, विद्यार्थी अध्यापक से ज़्यादा होशियार है। अब बुरा ना मानिएगा, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके घर में 15-20 साल के बच्चे हैं तो आप ये जानिए कि वो फ़ोन के बारे में आपसे ज़्यादा जानते होंगे, जहाँ तक मैंने अनुभव किया, पेरेंट्स उतना नहीं जानते हैं। तो वो अध्यापक, मतलब आपने कुछ बोला तो वो पहले गूगल पर चेक करेंगे कि टीचर सही बता रहा है कि नहीं। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत न खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो बेटे को समझाए, और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओगे। नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष जैसी हिम्मत। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने कह दिया, ये तुम देश को आज़ाद वगैरह कराने में इसलिए लगे हुए क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए तुम पढ़ाई से भाग रहे हो। सुभाष चंद्र बोस उस व्यक्तित्व का नाम है जिनका मानना यह था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उसमें भारतवर्ष की सबसे कठिन परीक्षा होती थी ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। सुभाष चंद्र बोस की ऑल ओवर इंडिया में 3री रैंक आई थी, इंटरव्यू में टॉप किया था और इसके पश्चात त्यागपत्र दे दिया। अपने पिताजी को ये बताया कि मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर ये देश गुलाम है तो इस गुलाम देश में पढ़ाई नहीं करूँगा। नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष जैसी हिम्मत, ICS की नौकरी छोड़ देना, सोचिया, सुभाष जैसी हिम्मत, पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे साधे, जिन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान, आप सप्ताह में एक दिन का व्रत रखिए, और स्वयं 2 दिन का व्रत रखा। अकाल पड़ा तो उन्होंने अपने बच्चे का, जो उनका बेटा था वो मैथ्स में कमजोर था, टीचर को हटा दिया, कहा नहीं भाई, महजन को हटा दिया, कहा भाई बर्तन हम लोग मांझ लेंगे, देश पर इसमें संकट है, शास्त्री सीधे साधे, क्या बात। पन्ना धाय का त्याग,
जिसने देश के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। पन्ना धाय का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का वैराग्य। कलिंग का युद्ध जीतने के बाद जब उन्होंने देखा चारों लाशें ही लाशें, उन्होंने कहा ना ना ना ना, एक सम्राट बनने के लिए अगर इतनी लाशों पर खड़ा होना पड़े तो लानत है, छोड़ दिया। फिर बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए, अहिंसा की ओर मुड़े। अशोक का वैराग्य, तानसेन का राग। अरे साहब, कहा जाता है कि राग मल्हार गा दिया था तानसेन ने और पानी बरसने लगता था। प्रकृति संगीत से इतनी प्रभावित होती है मित्रों कि बादल झूम कर बरस जाए। अकबर के दरबार में पड़ा था एक बार, मतलब राज्य में अकाल, तानसेन ने राग मल्हार गाकर बारिश करा दी थी। नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन जले हुए दीपक, बुझे हुए दीपक जल गए थे, वो कोई राग तानसेन ने गाया था, एक बात हुई थी। तो ठीक है, मैं गाता हूँ। चिराग जितने थे वो बुझे हुए, ये आंखों देखी बात है, ऐसा नहीं कि ये दंत कथा है या सो कॉल्ड है, नहीं, ये फैक्ट है। अशोक का वैराग्य, हाँ दीपक राग नाम याद मुझको याद है। अशोक का वैराग्य, तानसेन का राग, चाणक्य का नीति ज्ञान, विवेकानंद का स्वाभिमान, इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड, और प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी जैसा गोल्ड। ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलती है साहब वो चीज़ें, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, ये चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा सा मिस करेंगे आने वाले समय में, मुझको लगता है कि ये मिस होने वाली हैं। सर, क्या आपने कभी कभी भुट्टा खाया है? भुट्टे के साथ कौन सी चटनी खाई है? जी मैंने भुट्टा खाया है, लेकिन भुट्टे के ऊपर नींबू मिला करके और काला नमक जो होता है उसको मिला के खाया है। अब हो सकता है आपने कुछ और खाया हो। जी हाँ मुकेश यादव जी भी, आप जैसे महान सर जी। अरे नहीं, अभी हम कुछ दिन रहने वाले हैं मुकेश जी, क्या बात है, वाह क्या बात है। विजय पाल यादव जी, मनुष्य जी को मैं सादर प्रणाम। जी इस दुनिया में शायद भारत देश जैसा कोई दर है, जीते हूँ किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो अपने देश को माँ कह दे सिवाय भारतवर्ष के? और आपको एक बात और बताऊँ, भारतवर्ष ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। आक्रमण हो गया तो कोई बात नहीं। जी सर, तानसेन में राग दीपक गाया था, जैसे आग लगी थी और उससे और उनका बदन तपने लगा था, तब उनकी बेटी, जी बिल्कुल सही बात है, सरस्वती ने राग में गाकर उस आग को शांत कराया था, तभी सेवा अवस्त और उनके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। अब वो बात कहाँ, मतलब अब लगता है कि तानसेन एक कायनात गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी के बाद, तो मतलब सब अच्छे हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है वो तो उसके जैसा कोई नहीं होता। जी हाँ, तो मुझको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हम ढूंढते ही रह जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं प्यारा सा नगमा और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गन स्लेट 9.6 FM, यह है कोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी

जी भाई, जितना ही प्यारा नगमा उतना ही प्यारा फिल्मांकन, क्या बात है। और अगर आपने गीत ही सुना याद आ रही है तो खैरियत है, कहीं अगर वीडियो देख लेंगे तो याद बहुत तो ज़बरदस्त तलवे आ जाएगी। अनिल भैया है हमारे साथ। मनु भाई क्या बात है, आपने कितना प्यारा गाना सुना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुकेश यादव जी हमारे साथ जी। और अब चलते हैं, जब याद की बात आ गई तो मुझे याद आया कि वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। याद पर बात आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कायनात जी। शायद अगर आपने ये नगमे की फरमाइश न की होती तो ये मेरा दिमाग वहाँ तक जाता नहीं। बहुत ही प्यारी सी गज़ल है। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं, वो हैं पास और याद आने लगे हैं। कविता देखिएगा किस तरीके से बात करती है, वो है पास यानी पास में है और याद आ रहे हैं, वो है पास और याद आने लगे हैं, मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं। सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। अगर आप किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हैं मतलब आप उसको याद कर रहे हैं। अगर कोई कहता है कि मैंने उसको भुला दिया, इसका मतलब अभी भी तो आपने उसको याद किया, कैसे भुला दिया आपने। अगर कोई व्यक्ति हम ये कहें कि मैंने उनको भुला दिया तो मतलब मैंने अभी अभी याद किया उनको, तो कहाँ भूल गए। सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं।